सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 58 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातः कालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे प्रभु, तुम में ही तो ये जीवन है। अगर तुम नहीं तो ये जीवन कैसा? बिना शिव के तो सब शव है। आप तो जीवन का मूलाधार हैं प्रभु। भक्तों पे बस इतनी कृपा बनाए रखिए प्रभु कि वो ये जो संसार का जो सागर है, यहाँ बस ये भव सागर से पार उतार दो प्रभु। बस

0: आप सुन रहे थे अभी चिंतन संवेद सुरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक सुरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे पंडित जसराज और साथी, हरिहरन और साथी और अनुराधा पौडवाल के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है अमृत संबंधी विचार, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का, स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का है।
1: संसार में रहते हुए बहुत से व्यक्तियों की ये चाहना होती है कि वे सदैव स्वस्थ बने रहें, लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, यश कीर्ति और समृद्धि प्राप्त करें। एक सम्राट के मन में इससे भी अधिक पाने की चाह जागृत हुई। उसने मन में सोचा कि मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, मेरे हजारों सैनिक और सेवक हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, चल अचल संपत्ति है। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो इस सब का क्या होगा? कितने युद्ध लड़कर, कितनों को पराजित कर ये सब अर्जित हुआ है, और इतना अर्जित कर लेने के बाद भी क्या मुझे मरना होगा? सम्राट ने कहा कि वह मरना नहीं चाहता है और इसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। सम्राट ने इसके लिए अपने सामंतों से परामर्श लिया और उनसे कहा कि वे कोई उपाय उसे बताएं जिससे मनुष्य के स्थान पर अमृत, मृत्यु के स्थान पर उसे अमृत प्राप्त हो। सामंतों ने सम्राट की इस असंभव इच्छा को सुनकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज तक कोई काल का ग्रास बनने से नहीं बचा है, जिसने भी जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मरने के बाद केवल वही व्यक्ति यश और कीर्ति का सही हकदार रहता है जिसने अच्छे कार्य किए हों, जिसने लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो। सम्राट ने तो नरसंहार के द्वारा चल अचल संपत्ति अर्जित की है और फिर भी वो इस प्रकार की चाहना कर रहे हैं। जब सामंतगण कोई उपाय नहीं सुझा सके तो सम्राट के महामंत्री ने कहा कि वह मृत्यु पर विजय का कोई उपाय उन्हें बताए, और यदि एक माह में ऐसा नहीं किया तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सम्राट का ये निर्णय सुनकर मंत्री महामंत्री पशुपेश में पड़ गए। उन्होंने अपने मित्रों तथा परिवारजनों को ये बताया तो वे भी सम्राट की इस अनुचित इच्छा को जानकर दुखी हुए। अंततः महामंत्री सम्राट को मृत्यु से बचाने का उपाय सोचने लगे, और इसे सोचने के लिए, इसे खोजने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर भी गए, किंतु जब कहीं से उन्हें मृत्यु से बचने का उपाय की जानकारी नहीं मिली तब निराश होकर जब वे लौट रहे थे तो एक संत से उनकी भेंट हुई। उनकी समस्या सुनकर संत ने कहा कि अमरताल का जल पीकर मृत्यु से बचा जा सकता है। महामृत्यु महामंत्री सम्राट को वहां ले गए। सम्राट ने जैसे ही अमरताल का जल पीना चाहा कि ताल में रहने वाले जीव जंतुओं ने कराहते हुए सम्राट को बताया कि वह जल पीकर अमर तो हो जाएंगे, किंतु उनकी उम्र बढ़ती जाएगी और वो वृद्ध से वृद्ध हो जाएंगे, और संसार की किसी भी वस्तु का उपभोग करने की स्थिति से वंचित हो जाएंगे। सम्राट ये सुनकर लौट आए और उन्होंने महामंत्री को यह आदेश दिया कि वो ऐसा उपाय खोजें जिससे अमरता के साथ साथ वे सदैव तरुण बने रहें। महामंत्री पुनः उसी संत की शरण में गए और संत ने महामंत्री को एक उद्यान का पता बताया जिसके अमर फल खाकर मनुष्य सदैव तरुण बना रह सकता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती। महामंत्री सम्राट को लेकर उद्यान पर पहुंचे और जैसे ही वो फल खाना चाहते थे कि उन्हें भयंकर शोर सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि वहां पर बाबा, बाबा, पिता, पुत्र, पौत्र आदि सभी

0: और यह प्रकृति के नियम के अनुसार जरूरी भी है। व्यक्ति को समाज अथवा राष्ट्र के लिए किए जाने वाले अपने कार्य से स्वयं को अमर बनाना चाहिए, न कि शरीर से।
1: अमृत संबंधी विचार अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु के अंतर्गत, आलेख मोहन स्वरूप भाटिया का और स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी का था। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर सुरेश वाडेकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस कान से आज की प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर सुरेश वाडेकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप दिन में 1:15 पर सुनेंगे कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम यानी हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल, और इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ। दोपहर 2:30 का समय रहेगा NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। युवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में वीवी गिरी जयंती और सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, इस विषय से संबंधित चर्चा, और रेखा रानी की स्वरचित कहानी प्रसारित की जाएगी। शीर्षक होगा चांदनी रात की यादें। संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत कोमल प्रसाद शर्मा की वार्ता वैरिन बरसात। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 6:50 पर कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, विषय होगा पशु पोषण में खनिज लवण और खेतों में वर्षा जल संरक्षण विषय से संबंधित। इसी कार्यक्रम में आप सुनिएगा गोपाल सिंह की भेंट वार्ता। इस कार्यक्रम में विषय होगा घर तथा फार्म पर कैसे बनाएं गोबर गैस प्लांट। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी का प्रसारण समय रहेगा वही शाम 7:31 का। और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे गीत बात एसएमएस के अंतर्गत 12:00।

सुबह 9:30 का समय रहेगा ब्रज दर्पण कार्यक्रम का। 10 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन कृमि मुक्ति दिवस। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम में डॉक्टर पारुल से बातचीत करेंगे देवराज कृष्ण दीक्षित। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुनिएगा पूर्वाह्न 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम ब्रज लोकगीत कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे। आज कलाकार होंगी रेखा माहौर। इस कार्यक्रम में इनके स्वर में आप सुनेंगे मल्हार गायन। प्रातः 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कवि मुखसों क्रम में कवि नेत्रपाल सिंह राघव का काव्य पाठ। सुबह 9 का समय रहेगा हिंदी वार्ता का। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय होगा ब्रज के जनमानस में श्री राधा। कार्यक्रम आवो हवा सुनिएगा सुबह 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीजा श्रीवास्तव बताएंगी पर्यावरण संरक्षण हेतु कचरा प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी। और पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र खेती की बातें। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में आज विजय सिंह नौलखा से जानकारी। विषय है कैसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट।
1: किसान भाइयों, आज हम वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले 6 से 8 फुट की ऊंचाई का छप्पर तैयार कर छाया की व्यवस्था करें, ताकि उपयुक्त तापक्रम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड व छाया बनाई रखी जा सके। वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्यारी का आकार लंबाई में 20 से 40 फुट और चौड़ाई में 3 फुट रखा जाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट के लिए क्यारी में मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना का अवशेष अथवा सूखी घास या केले के पत्तों के कटे हुए टुकड़ों की 2 इंच मोटी तह के रूप में सबसे पहले बिछावें। इसके बाद इसके ऊपर अब 2 इंच की मोटाई की तह में सूखा हुआ गोबर या कंपोस्ट की खाद बिछाकर पानी का छिड़काव कर गीला कर दें। इस गीली तह पर 1 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट की परत, जिसमें केंचुए भी मिले होते हैं, डाली जाती है अथवा वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। केंचुओं की संख्या 50 केंचुआ प्रति घन मीटर रखी जाती है। इस तीसरी परत पर अथवा केंचुओं की परत पर 4 से 5 दिन पुराना गोबर का खाद या गोबर के साथ पशुओं के नीचे की कड़बी या कुट्टी आदि, जिसे घास फूस पत्तियां आदि मिली हो, उसकी 3 इंच मोटी तह के रूप में बिछा देवें तथा पानी का छिड़काव कर दें। अंत में इस परत पर 12 से 14 इंच मोटाई में गोबर के साथ घास फूस पत्तियों के टुकड़े आदि का कचरा बिछा दिया जाता है, जिससे कि निचली सतह से ऊपरी सतह की ऊंचाई लगभग 1.5 से 2 फीट हो जाए। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी का छिड़काव किया जाता है। अब इसके ऊपर बोरी या टाट या पुरानी बोरियां बिछाकर ढक देवे तथा नमी बनाए रखने हेतु 2-3 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें, ताकि 40% से अधिक नमी बनी रहे। 2 माह के अंदर ही गोबर या कूड़ा करकट व वनस्पति अवशेष आदि वर्मी कंपोस्ट में बदल जाएगा। केंचुए कार्बनिक पदार्थ को खाना जारी रखेंगे व वर्मी कंपोस्ट का रंग काला होता जाएगा। चाय की पत्ती जैसी वर्मी कंपोस्ट बोरियों के नीचे तैयार हो जाएगी। पूरा वर्मी कंपोस्ट तैयार होने पर केंचुए ढेर की ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ढेर का काला रंग होना, चाय की पत्ती के रूप में बदलना व केंचुओं का ऊपरी सतह पर आना वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का सूचक। 120 घन फुट के ढेर से प्रथम 2 माह में 10 क्विंटल यानी 1 टन वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट से केचुए अलग करने के लिए 3-4 फीट अथवा इससे अधिक ऊंचा वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएं तथा पानी छिड़कना बंद कर दें और बोरियां भी हटा लें। जो जो ढेर सूखा होता जाएगा, केचुए नमी की तरफ नीचे की सतह में चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद अधिकांश केचुए नीचे चले जाएंगे और ऊपर वर्मी कंपोस्ट रह जाएगा। इसे ऊपर से इकट्ठा कर लेवे। नीचे की सतह पर वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए रह जाएंगे, जिन्हें पुनः वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में लें। वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए नहीं जाने देवे, अन्यथा खेत में डालने पर वो मर जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट से केंचुआ अलग करते समय ढेर के नीचे के 1/10 भाग को बचाकर केचुए सहित वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने वाले जीवांश पदार्थ पर डालें। इसमें कोकून व अंडे आदि भी रहते हैं। 8 नंबर की जाली का बड़ा छल्ला लगाकर भी केचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग किया जा सकता है। अलग की गई वर्मी कंपोस्ट व केचुओं को बची कंपोस्ट बनाने में पुनः उपयोग करें। तैयार वर्मी कंपोस्ट को अलग इकट्ठा करें व आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करें।
0: कैसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट, इस कार्यक्रम को अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे विजय सिंह नौलखा।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे।

आप अभी सुन रहे थे खुर्शीद बानो की आवाज़ में फिल्म बेटी का ये गीत लिखा था, ज्ञान दत्त ने, म्यूज़िक ज्ञान दत्त का था और गीत डीएन मधु ने। इससे पहले आपने सुना था मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में बाजार फिल्म के गीत को, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

बंधन फिल्म में इस गीत को आवाज़ें दी थीं कवि और गीतकार प्रदीप और साथियों ने। संगीत पहली महिला संगीतकार सरस्वती देवी का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का, और आइए अब सुनते हैं इसी क्रम में ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं समीर ललता दिवलकर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म शहीद का ये गीत लिखा है हसर जयपुरी ने और गुलाम हैदर का संगीत। साथियों आज का ये कार्यक्रम अब इसी गीत के साथ यहीं पर संपन्न होता है। 7:18 होने को कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार।

देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं और कलाकारों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
2: हमारा एक तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आह्वान किया कि हम सभी अपने गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर महानगर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हम

0: हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज अंडरस्कोर GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
1: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है।
0: मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के दूसरे सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती की गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर, बाराबंकी के लोधेश्वरनाथ मंदिर, कानपुर के नागेश्वर बाबा मंदिर और सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में बोल बम के जयकारों के बीच शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है।
3: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है प्रयागराज से लेकर के यहाँ का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर सुरक्षित तरीके से यहाँ पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।
0: कांवड़ यात्रा के चलते संभल में आज सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। बस्ती, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, वाराणसी, प्रयागराज, संभल, हापुड़ और बाराबंकी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आज कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से

0: थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: साथियों, कहे हैं ना कि आनंद जो है बाकी माध्यम जो है वह अलग अलग है सके हैं। सबके अपने अपने आनंद प्राप्ति के साधन और रास्ते अलग हुए हैं, लेकिन हर प्राणी को जो है वो उद्देश्य यही होवे है कि परम आनंद। और जो साहित्य प्रेमी हैं, है ना, तो इन्हें तो चाहे वो गद्य हो या काव्य हो, कहानी, नाटक, उपन्यास, रूपक, संस्मरण, यात्रावृत्त, कछु कोई विधा हो, लेकिन पढ़ के और वाको सुन के महसूस हुए है तो पाठक हो चाहे श्रोता हो, वह सीधे वह दुनिया से सरोकार वाको जुड़ जाए है और फिर आनंद की शुरुआत हो जाए है। आप समझ रहे हैं कि ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आज, जैसे कि हम सब जाने हैं कि आज सोमवार है और आज कवि मुखसो क्रम में हम आपके ताई जो है काव्य पाठ तो लेके आवे ही आवे हैं। तो आज या कार्यक्रम में यानी कवि मुखसो क्रम में हमारे जो कवि हैं आज के, नेत्रपाल सिंह राघव। तो फिर कहा देर बात, का बात की देर है, बिल्कुल आओ सुने और छटपट से चलें काव्य जगत में और आनंद लें काव्य रस को।
1: जय

श्री राधे। ब्रज रज जनमो भाग सो देवन दूबर होय, ब्रज भाषा बोलन मिली सुमो सो धन नहीं कोय। सभी को प्रणाम करते हुए पवित्र श्रावण मास में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। सुनिएगा, एक ब्रजभाषा मलार है। मेरी बहना

ब्रजभाषा के कुछ छंद माया के ऊपर कि थोरो सो कमायो धन ऐठ बढ़ जाए तेरी, फूलो फूलो डोले तो ये चढ़ जाए चाबरे, मिल जाए तो ये पद मद ना रुके गो तेरो, निज संगी साथी निकु देवे लगो घाबरे। माया के पुजारी माया चंचला रही है सदा, माया संग करनी को राखियो हिसाब रे, राम नाम धन बिन जीवन गमायो तेने, काहे को गुमान करे चोरे नर बाबरे, काहे को गुमान करे चोरे नर बाबरे। काया कंचन कामनी काम क्रोध कलिकाल, कुटिल कुमत को कृत्य कर कनक कमाए कुचाल, कनक कमाए कुचाल कोठरी कारे धन की, बन गए लक्ष्मी चंद हाय ले ले निर्धन की। कह राघव कबीराय कृष्ण की अद्भुत माया, थोतो करे गुमान देख के कंचन काया। काया माटी में मिले माया यहीं रह जाए, चाल चलन बेढंग ते जन्म बुराई पाए, जन्म बुराई पाए दान करते ना कीनो, जिहवा है जाए नष्ट नाम ना हरि को लीनो। कह राघव कबीराय कर्म की रहती छाया, मूरख करे गुमान देख के कंचन काया, मूरख करे गुमान देख के कंचन काया। और इसी के साथ अपने मन को समझामते भई एक गीत ब्रजभाषा को। ओ मेरे मन तीर्थ कर ले,

छड़क बोलो बोला फूट जावे, फिर पानी ही पानी है।

परंतु कितनों मान लियो जाए, फिरो जी मन की भूख ना मिट पावे। मन में जो माया की भूख है वह ना मिटा पावे। तब एक पद लिखो मैंने सुने कि तृष्णा मिटे न कबहू मन की, तृष्णा

0: मन की।
1: वाह, कहा बात कही देखो, है ना एन कवि महोदय ने, कि तृष्णा कहू न मिटी मन की। अजय बात सही है। तो अभी आप जो है आनंद ले रहे थे काव्य पाठ को, और कवि मुख सक्रम में आज के कवि थे नेत्रपाल सिंह राघव। अब कार्यक्रम ब्रज माधुरी होए और आनंद ना आवे ये तो है ही ना, ऐसा के है। एक तो देखो भाषा कितनी बढ़िया मीठी मीठी, और उस पर अब लोकगीत, आह कहा कही वो महीना सावन को चल रहे हो है ना ब्रज में, और अनोखो ही यहाँ को जो है वातावरण हुए है ब्रज के मंदिरन में, जहाँ या समय ठाकुर जी जो हैं भक्तन को तरिया तरिया के हिडोलन घटाउन में किर में जो है दर्शन दिए हैं। और या समय तो देखो अभी हिडोलन की खूब रंग बिरंगे रंगों से जो है सजीव है, और स्वर्ण जड़ित चांदी की जड़ित हिडोलन में ठाकुर जी जो है बामे विराजित है के, और भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। तो फिर भक्तों जो है बहुत ही रस्य सराबो रह रहे हैं, आनंद ही आनंद अपने देखो ब्रज में है। मौसम चाहे को हो तभी तो कहे हैं कि जैसो रस अपने यहाँ ब्रज में बरसे, ऐसा तो कहूँ ना बरसे, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। अब वैसे तो अभी अजब अपनी बहार छाई रही है सावन की, या फिलहाल तो या समय अपने ब्रज में, तो अपने लोकगीत जो है हम आपके ताई जो लेके आए हैं, तो सबसे पहले आओ सुने जय लोकगीत।

झूलन आज पधारो, बरसाने वाली झूलन आज पधारो। तो अभी जो है आपने इस लोकगीत को सुना है तो, और या को स्वर दे रही हती राधिका गौड़ और विंकी सखियाँ। अब

अभी जो है आप सुन रहे थे नंद किशोर सैनी की आवाज़ में इस लोकगीत को, और आज को ये ब्रजमादरी कार्यक्रम यही भी शामिल है। तो आप सब उनको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमादरी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
2: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60

0: प्रतिशत से अधिक है। एक रिपोर्ट।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण

0: आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुखपृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेट्रो को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। India crosses 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ जी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी पार्टी मेरी।

आपने अभी इस सुना इस खूबसूरत से गीत को, आवाज़ थी किशोर कुमार की और फिल्म थी शर्मिली। शब्दों में इस गीत को ढाला था कवि गीतकार नीरज ने और संगीत से इस गीत को संवारा था SD बरमंदा ने। अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना आसपास फिल्म के गीत को, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, अभी आपने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ज्योति बने ज्वाला फिल्म के गीत को। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम बनिता लोक में हेलो सहेली फोन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का विषय होगा मौसम में, बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप टेलीफोन नंबर 25 135 पर अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि सर्दी जुकाम है, बुखार है, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या अगर है तो समाधान के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा से आप अपने प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का समय ध्यान रखें, आज दोपहर 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और अब ये कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म थी शक्ति। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। आज दिन में वनितावलोक कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे फोन नंबर 25 30 135 पर संपर्क करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा से। मथुरा से बाहर के जो श्रोता हैं वो स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565 यदि आप 25 30 135 पर फोन करते हैं तो। और समय कृपया ध्यान रखें आज दिन में 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सनम रे फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में मिथुन और अनिरुद्ध भुल्ला। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल।

0: Noida International Airport, where dreams take off.
1: साथियों, हिंदी वार्ता क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक की ये वार्ता। विषय है ब्रज के जनमानस में श्री राधा।
2: ब्रज भारतीय संस्कृति का मूल आधार है और इसका आध्यात्मिक पक्ष आज संपूर्ण विश्व को आकर्षण केंद्र बन गया है। ब्रज जनमानस ब्रज ही नहीं अपितु संसार की सीमा तक प्रतिच्छायित हो गया। प्राचीन काल में आचार्य शंकर का विशुद्ध ज्ञानात्मक आध्यात्मिक विवेचन तथा उसका अद्वैत सिद्धांत मानस पटल पर अत्यंत बोझिल और नीरस हो गया था। उसको सहज सरल बोधगम्य बनाने के लिए वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने भक्ति की अजस्र रसधार प्रवाहित करना प्रारंभ कर दिया। वेद पुराणों से निश्रित यह भक्ति की रसधारा मानस को अखंड सुख शांति प्रदान करने लगी। सगुण भक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के विविध रूप भारतीय संस्कृति में अत्यंत आकर्षक रूप में चित्रित हैं। श्री कृष्ण की साकार सगुण लीला ब्रज बिंदा विपिन में माधुर्य भाव से विकीर्ण हुई। माधुर्य मंडित प्रेम भक्त और भगवान के अभिन्नत्व परपाक के लिए सर्वाधिक योग कारक माना गया। यह अभिन्न प्रेम सखियों के माध्यम से श्री राधा कृष्ण को एक बना गया। ब्रज की माधुर्य उपासना में राधा कृष्ण का स्वरूप एक प्राण दो देह के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। वृंदावन लीला में श्री कृष्ण के प्रति सखा दास बात्सल और गोपियों का माधुर श्रृंगार मुखरित हुआ है। सखा भाव में ऐश्वर्य, दास भाव में महिमा, वात्सल्य में श्री कृष्ण का विराट रूप उनको एक भिन्न कोट में बना गया। लेकिन माधुर्योपासना ही प्रेम की अभिन्नत्व की आत्मीयता के परिपाक के लिए सर्वाधिक योगकारक मानी गई। इसका लीला वर्णन गोपियों के माध्यम से श्री राधा को परम ब्रह्म श्री कृष्ण से अभिन्न बना गया। श्रीमद्भागवत ब्रह्म वैवर्त पद्म गर्ग 12 आदि पुराणों में प्रतिपादित भक्ति की श्री राधा कृष्ण के स्वरूप को लेकर ही आगे बढ़ी। कृष्ण भक्त शाखा के प्रत्येक वैष्णव संप्रदाय में राधा की स्वीकृति किसी न किसी रूप में मिलती ही है। उसका स्वरूप और शक्ति अपनी अपनी मान्यता के अनुसार विविध भले ही हो, लेकिन श्री कृष्ण की भांति अनादि और अनंत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, जन्म खंड में श्री राधा का वर्णन इतना विस्तृत है कि मूल कथा से भी व्यापक हो गया। राधा शब्द की व्युत्पत्ति में इसके महात्म प्रतिपादन में बताया गया कि राधा शब्द का उच्चारण कोटिक जन्म के शुभाशुभ कर्म फलों को दोषों से मुक्त करता हुआ गर्भवास मृत्यु और रोगों से छुड़ाने वाला है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है कि रा शब्द कुर्वत स्वस्थो ददामि भक्त मुत्ततम, धा शब्द कुर्वत पश्चायाम श्रवण लोभता, अर्थात रा शब्द के उच्चारण मात्र से श्री कृष्ण उत्तम भक्ति प्रदान कर धा शब्द के उच्चारण श्रवण के लोभ से उच्चारणकर्ता के पीछे चलने लगते हैं। इसी पुराण के ब्रह्म खंड के पंचम अध्याय में राधा उत्पत्ति कथा प्रसंग में गोलोक में राधा रासपरायण श्री कृष्ण के पार्श्व में एक षोडशी कन्या का प्राकट हुआ। इसका कोई बाह्य कारण न होने पर भी श्री कृष्ण के प्राणों से प्रकटित होना माना गया। उत्पन्न होते ही अपने अप्रतिम सौंदर्य की छटा से चराचर को विमोहित और आकर्षित करने वाली इन श्री राधा के रोम कूपों से उनके समान ही असंख्य गोपिकाएं और श्री कृष्ण से उद्भूत गौ गोप रासलीला में प्रवृत्त हो गए। यह समस्त सृष्टि गोलोक में रासलीला के समय संपन्न हुई, इस कारण ही इसको दिव्य और नित्य माना गया है। भक्तजनों के आनंद हेतु यह सृष्टि लौकिक वृंदावन धाम में अवतीर्ण हुई। रमण की इच्छा से राधा श्री कृष्ण की ओर रास में धावन करती हैं, इस कारण इनका नाम भी राधा पड़ा है। 12 कल्प में राधा को गोकुल के गोप वृषभान की कन्या बताया गया है और इनका विवाह रायण नामक गोप से हुआ था। यह भी कथित है कि श्री राधा सदैव श्री कृष्ण के साथ ही रहती थी तथा उनकी छाया रायण के साथ। राधिकोपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण ही एक परम देव हैं जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त, प्रकृति से सनातन और नित्य हैं। वृंदावन के अधीश्वर श्री कृष्ण अपनी परम आराधनी शक्ति से राधा से आराधित हैं और उनके ही नित्य आराधक। वैष्णव भक्त संप्रदायों में

कि राधा का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुरुष सूक्त के अनुसार परम पुरुष ब्रह्म की श्री और लक्ष्मी दो पत्नियां हैं। परम पुरुष नारायण स्वरूप में रुक्मणी आदि लक्ष्मी के साथ जहां दर्शित हैं, वहीं श्री कृष्ण स्वरूप में ऐश्वर्य मंडित श्री स्वरूपा श्री राधा ही सुशोभित होती हैं। उनका यह स्वरूप ऐश्वर्य मंडित न होकर माधुर मंडित ही स्वीकारा गया। वैसे तो वैष्णव भक्ति के संप्रदायों के अतिरिक्त शैव शाक्त आदि मतों में भी श्री राधा का वर्णन है, लेकिन निम्बार्क बल्लभ चैतन्य राधा वल्लभ आदि संप्रदाय प्रमुखतः श्री राधा से ही संबंधित हैं। श्री कृष्ण भक्त की रसमयी उपासना का प्राचीन वैष्णव संप्रदायों में निम्बार्क संप्रदाय का नाम प्रमुख है। इस संप्रदाय में नान्यागत श्री कृष्ण पदारविंदात के अनुसार उनके इष्ट भले ही श्री कृष्ण हों, लेकिन सहस्त्रों सतियों से परसेवित अनुरूप सौभगा और उनकी परम आलादनी शक्ति श्री राधा की कृपा कटाक्ष के बिना श्री कृष्ण की कृपा तो क्या उस उपासना के क्षेत्र में प्रवेश भी असंभव हो गया है। इस माधुर्य उपासना के परम गोप सुख में निकटतम स्थान प्राप्त करने वाली सौभाग्य केवल सहचरी मात्र को मिल सकता है। संप्रदाय में वर्णित श्री राधा का स्वरूप माधुर्य व्यक्ति के अनुरूप ही है। श्री राधिका जी संपूर्ण मंगल की प्रदात्री हैं। आप अपने दिव्य तथा अलौकिक सौंदर्य सहित श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति हैं। श्री कृष्ण की निकुंज लीला का आश्रय श्रीधाम वृंदावन है। संपूर्ण ऐश्वर्य संयुक्त वृंदावन की निकुंज लीला में स्वयं श्री कृष्ण उनके अधीन है। तभी तो महाकवि बिहारी जैसे असंख्य कवि भक्त गा उठते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई परत श्याम हरत दुत होय। ब्रज वृंदावन राधिका रानी का परिक्षेत्र है तथा अखंड शांति का साम्राज्य। इस प्राकृतिक परिवेश में ही माधुरी उपासना पुष्पित और पल्लवित हुई। इस अखंड आनंद का मर्म कौन जान सकता है। तभी तो कहा गया है कि वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, यहाँ डार डार और पात पात पे राधे राधे होए। बल्लभ संप्रदाय के अनुरूप श्री राधा कृष्ण के आनंद की पूर्ण सिद्ध शक्ति है। श्री कृष्ण धर्म है तो राधा धर्मी, दोनों अभिन्न तथा चंद्रमा और उसकी विकीर्ण होती हुई रश्मियों जैसा संबंध है। आचार्य बल्लभ ने श्री कृष्ण की बहिरंग और अंतरंग शक्तियों का वर्णन किया है। बहिरंग शक्ति जहां माया बताई गई, वहीं श्री राधा को अंतरंग आलादनी शक्ति बताया गया है। अष्टछाप के कवियों ने श्री राधा का वर्णन ब्रह्म विवर्त पुराण के अनुसार ही किया। उन्होंने राधा को प्रकृति एवं कृष्ण को पुरुष मानते हुए अभेद रूप से अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया। इसका वर्णनातीत आनंद भाव है जिसमें निमग्न होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। महाकवि सूर ने भी यही कहा है कि रास रस रीत नहीं वर्ण आवे, भाव सो भजे बिन भाव में ये नहीं, भाव ही माहि ध्यान में बसावे। ब्रज के जनमानस में मधु गौड़ी संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित है। इस संप्रदाय का विश्वव्यापी संकीर्तन हरि ओर गुंजायमान होने लगा है। इस संप्रदाय में राधा का वर्णन परकिया कांता भाव से किया गया है। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित उज्जवल नीलमणि और हरमक्त रसामत सिंधु में वर्णित श्री राधा को परकिया भाव अतिशय उल्लास के आधार पर ही वर्णित किया गया है। सिद्धांततः पूर्णात्मा श्री कृष्ण और राधा उनका ऐसा अंश मात्र जो भक्ति द्वारा स्वयं उस पूर्णात्मा में लीन होने की साधना करती है। तात्विक रूप से इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय ने श्री राधा का महत्व और भी परिवर्धित कर दिया है। यहाँ उनका अनादि और नित्य रूप स्वीकारा गया। श्री राधा ही सर्वशक्ति संपन्न और श्री कृष्ण की उपास्य तथा आराध्या है। उनकी नित्य प्रेम लीला ब्रजजन के आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण के निमित्त है। राधा स्वयं में परात्पर तत्व तथा उनकी उपासना सर्व आनंद की प्रदाती है। कविवर बिहारी के उपास श्री कृष्ण की छवि मोर मुकुट कट काछनी कर मुरली उरमाल, यह बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल की भले ही हो, लेकिन महाकवि रसखान ने तो बहुत खोजने पर ब्रज वृंदावन में उनको कुंज कुटीर में राधा की सेवा करते हुए पाया है। उन्होंने कहा भी है कि देखो द्रो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रज जनमानस में प्रतिस्थापित श्री राधा की यही छवि वंदनीय है और तभी यहाँ राधे राधे उद्घोषित ही होता रहता है।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।
1: भदोही जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनीश सिंह का।
3: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय KGBB अथरौली अलीगढ़ की छात्राओं के लिए 5 अगस्त का दिन अविस्मरणीय रहा। शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंची छात्राओं ने लोकतंत्र के इस मंदिर का भ्रमण कर न केवल इसकी गरिमा को निकट में महसूस किया बल्कि यह भी जाना कि प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती है। इस दौरान उन्होंने समझा कि जनहित से जुड़े विषयों पर विधानसभा में किस प्रकार चर्चा होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भ्रमण के दौरान छात्राओं ने विधानसभा भवन के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन किया तथा इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक महत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी की। उन्हें सदन की कार्यवाही, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और विधाओं प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी भेंट की। उन्होंने छात्राओं से संवाद करते हुए शिक्षा के महत्व, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र निर्माण के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का प्रेरक संदेश भी दिया। भ्रमण के दौरान अतरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने छात्राओं का उत्साह वर्धन करते हुए उनके साथ यादगार पल साझा किए। उन्होंने छात्राओं को पूरे मनोयोग से अध्ययन करने और जीवन में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया तथा उनके साथ स्मृति स्वरूप फोटो भी खिंचवाए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से ग्रामीण पृष्ठभूमि की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बेटियां देश का उज्जवल भविष्य हैं और इस प्रकार के शैक्षणिक एवं व्यवहारिक भ्रमण में बालिकाओं में सुशासन, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति व्यवहारिक समझ विकसित होगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ द्वारा गौरव इंटर कॉलेज अलीगढ़ में नशा मुक्त भारत व विकसित भारत जी राम जी कानून कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनी सिंह बघेल, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अलीगढ़ ने कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार गारंटी, नए ढांचे, जी राम जी कानून 2025 के आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं की जानकारी दी। बताया कि अब ग्रामीणों को 100 दिन के स्थान पर 25 दिन का रोजगार मिलेगा। डॉक्टर SL सिसोदिया, अध्यक्ष वेलफेयर कोचिंग सेंटर अलीगढ़ ने बताया कि युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को जन जन

0: तक पहुंचाने के लिए जिले में व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बैठक कर तिरंगा झंडों के निर्माण एवं अन्य कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। बैठक का संचालन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों का 2,86,000 एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूहों को 2,88,000 राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने का लक्ष्य सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 144 सिलाई केंद्रों पर अब तक 44,000 से अधिक झंडे बन गए हैं। निर्धारित समय विधि में कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर निगम सहित जिले के सभी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं पंचायत उनकी आवश्यकता के अनुसार तिरंगों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बताया कि नगर निगम को सर्वाधिक 2,18,000 तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे। नगरी क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग्स के प्रभावी प्रबंधन एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा के सतत प्रयासों से नगर निगम ने लगभग 19 लाख की लागत से 2 आधुनिक डॉग कैचर वाहनों का क्रय किया है। इन वाहनों को महापौर एवं नगर निगम नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
1: पूरे शहर को जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, खासतौर से स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनसे राहत दिलाने की दिशा में 2 नए डॉग कैचर हम लोगों ने प्रोक्योर करके उनको ऑपरेशनलाइज किया है। और इसका यही उद्देश्य है, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जो हमारे पब्लिक एरियाज हैं वहां से हम खासतौर से डॉग्स को हटाकर वहां पे जो डॉग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर अब बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर शहर में, साथ ही साथ वहां पर उनको प्रॉपर मेडिकेशन हो सके, उनका रखरखाव हो सके, तो लोगों को भी बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, डॉग बाइट्स के इंसिडेंट हो जाते हैं, बच्चों के साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उससे मुझे लगता है काफी राहत इसमें मिलेगी और जो एनिमल्स हैं उनकी भी केयरिंग और उनका रखरखाव हम लोग अच्छे से कर पाएंगे।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय सिंह का।
3: भदोही परिषदीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कंपोजिट विद्यालयों में अध्ययनरत 1,40,000 नौनिहालों को भाषा और अंक गणित की गणना में दक्ष बनाया जाएगा। बच्चों में भाषा व अंक की गणना की बेहतर समझ विकसित हो इसको लेकर पहले ही शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर आसान ढंग से समझाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात वो बच्चों को दक्ष बनाएंगे। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिले में 35 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं। शीघ्र ही जिले के 885 विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो जाएगा। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हासिल हो इसको लेकर तमाम शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना में रसोई में छोटी छोटी व्यवस्था सामग्री की खरीद को शासन ने 6,20,000 रुपए का बजट जारी किया है। बीएसएस सुरेंद्र पांडे ने बताया कि जिले के सभी विद्यालयों में 700 रुपए की दर से धनराशि भेजी गई है। इससे रसोई में एप्रेन, तेल, मसाला, अन्य खास सामग्री रखने के लिए डब्बा, कलछुल, चम्मच जैसी चीजें क्रय की जा सकती हैं। भदोही जिले का 5वीं बार नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले का नाम भदोही से शब्द हटाते हुए संत रविदास नगर कर दिया। 30 जून 1994 को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने काशी नरेश विभूति नारायण की मौजूदगी में जीआईसी मैदान में भदोही को 65वां जिला बनाया था। लंबे समय से जिला बनाने की मांग लोगों की पूरी हो गई थी, लेकिन 4 दिसंबर 1997 को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जौनपुर जिले से भदोही में जोड़ी गई बरसठी तहसील को भदोही जिले से हटाकर जौनपुर में शामिल करते हुए भदोही का नाम संत रविदास नगर कर दिया था। भदोही का नाम हटने से फिर लंबा आंदोलन चला। 1998 में प्रदेश में भाजपा सरकार बनी और पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता ने 12 नवंबर 1999 को संत रविदास नगर के साथ भदोही जोड़ दिया गया था। आंदोलन थम गया, लेकिन सपा की अखिलेश सरकार ने 6 दिसंबर 2014 को फिर से इसे भदोही कर दिया गया, लेकिन कागजों में संत रविदास नगर के नाम से चलता रहा। 29 जुलाई 2026 को संत रविदास नगर हो गया। इससे जिले की सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष के लोग इसे बेहतर विपरीत से कोरी राजनीति बता रहे हैं। जिले से गुजरने वाले विंध्य एक्सप्रेसवे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा की ओर से तहसीलवार गाँव की भूमि के अभिलेख की जाँच इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से होते भदोही, ज्ञानपुर और राय तहसील के 52 गांवों के 35 किमी क्षेत्र से होकर मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ेगा। सर्वे मिट्टी की जांच हो चुकी है। 333 किमी लंबा एक्सप्रेस वे 4 राज्यों की सीमाओं को जोड़ रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों तहसील में 6 लेन के हिसाब से जमीनों का नक्शा, खतौनी, कितनी सरकारी जमीन है, कितनी भूमि दे रहे, कितने किसान इसकी जद में आ रहे हैं, इन सबकी रिपोर्ट तैयार होने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस परियोजना के तैयार होने से पूरी यूपी में व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक को नई रफ्तार मिलेगी। भदोही सब्जी मसाले की खेती और किसान की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार पैसा देगी। किसान कद्दू, वर्गीय सब्जियों को लेकर प्याज की खेती करेंगे और शासन की ओर से उन्हें भारी भरकम अनुदान मिलेगा। खेती के लिए लक्ष्य तय कर दिया गया। तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में लक्ष्य के लिए उद्यान विभाग ने किसानों के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है।

0: संकट, साग भाजी में 10 मसाला क्षेत्र का विस्तार कार्यक्रम में 63 हेक्टेयर प्याज की खेती कराने का लक्ष्य मिला है। जिला उद्यान अधिकारी ममता सिंह यादव ने बताया कि संकर साग भाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के तहत 10 हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य तय है। इसमें प्रति हेक्टेयर आने वाले कुल लागत 60,000 में 40% 24,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। काशी नरेश विश्वविद्यालय परिसर में महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक अंतक यात्रा पर आयोजित संगोष्ठी मुख्य अतिथि सांसद विनोद बिंद ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय की पहचान वहाँ के शोध और नवाचार से होती है। उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति परंपरा के साथ सकारात्मक सोच अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। तब विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने बताया कि 15 अप्रैल 2026 को स्थापित काशी नरेश विश्वविद्यालय के पहले वर्ष BCA, BSc एग्रीकल्चर, BGMC माइक्रोबायोलॉजी सहित 9 पाठ्यक्रम शुरू करने जा रही है। उन्होंने छात्राओं के लिए छात्रावास और कौशल विकास कार्यक्रम के लिए विस्तार में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। भदोही लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद विनोद कुमार बिंद ने लोकसभा में नियम 377 कर भदोही में एक आधुनिक कारपेट म्यूजियम स्थापित करने की मांग की। उनका मानना है कि इस म्यूजियम से कालीन उद्योग की वैश्विक पहचान मौजूद होगी और साथ ही क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सांसद विनोद कुमार बिंद ने सदन में कहा कि भदोही कालीन बुनाई सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। हजारों कारीगर उद्यमी उस पारंपरिक कला से जुड़े हैं। हालांकि भदोही में ऐसा कोई संस्थान नहीं जो कालीन उद्योग इतिहास परंपरा के विकास को व्यवस्थित प्रदर्शित।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। आप हमारे कार्यक्रम DTH और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी डॉ. नीजा श्रीवास्तव से। विषय है पर्यावरण संरक्षण हेतु कचरा प्रबंधन।
4: अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आप जिस स्थान पे रह रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या इस तरह के जहां बच्चे रह रहे हैं मैस है, तो आप पाएंगे कि वहां कचरा निश्चित रूप से पहले की तुलना में ज्यादा हुआ है। क्योंकि ये जो कचरा निकल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकता पूर्ति है, तो कागज भी काम में आ रहे हैं, खाना भी काम में आ रहा है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो कचरा निकल रहा है वो सीधा गलियों में डाला जा रहा है। तो कचरा तो बड़ा है, लेकिन इस कचरे का प्रबंधन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। और जब प्रबंधन पूरी तरह से नहीं हो रहा है तो वो सड़ा गला कचरा पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। अब इतनी सारी जनसंख्या है तो कचरा भी अलग अलग तरीके का है। जब कचरा श्रोताओं अलग अलग तरीके का है तो उसका निस्तारण भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो पहले तो हमें श्रोताओं ये जानना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय के बारे में हम बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। हम पर्यावरण में वायु प्रदूषण की बात करते हैं, जल प्रदूषण की बात करते हैं, मृदा प्रदूषण की बात करते हैं, लेकिन कचरे से प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में हमारी जानकारी अभी बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम पहले ये जाने कि कचरा हो रहा है इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो सूखा कचरा जो कि कागज फाड़ रहे हैं फेंक रहे हैं उससे हो रहा है, या पेंसिल काम में ली फेंका, मतलब इस तरह से जो कचरा उत्पन्न हो रहा है सूखा कचरा जिसे हम कहते हैं, इस कचरे का उपयोग कबाड़ी कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर नाली में फेंकने की बजाय किसी कबाड़ी को दे दें तो वो इसका शायद पुनर्चक्रण करके उपयोग कर लेगा। दूसरा कचरा जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यह है गीला कचरा। गीला कचरा मतलब रसोइयों से निकलने वाली सब्जी का कचरा, सब्जी छिलके हमने करे, या जो भी कुछ खान पान की सामग्री से जो कचरा निकल रहा है, जो कि मुख्य रूप से घरों से निकल रहा है, मैस से निकल रहा है, होटल से निकल रहा है और हॉस्टल से निकल रहा है। तो ये कचरा क्या होता है, जब सड़ता गलता है, आपने अगर कभी गौर किया हो, आप श्रोताओं कभी ऐसे स्थान से गुजरे हो जहाँ मैस है, तो बाहर आप निकलेंगे तो अजीब सी गंध दुर्गंध आएगी। आप कारण क्या है कि वो जो गीला कचरा है उसमें जीवाणु बहुत जल्दी पनप रहे हैं। जब जीवाणु बहुत जल्दी पनप रहे हैं तो वो रोग का कारण पैदा कर रहे हैं, और रोग का कारण पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। तीसरा कचरा है संक्रमित करने वाला कचरा। ये जो संक्रमित करने वाला कचरा है ये बहुत ज्यादा नुकसान हमारे समाज के लिए है। कैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास, क्योंकि जरूरतें बढ़ी है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ी है। जब श्रोता हूँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बढ़ने का मतलब है हॉस्पिटल्स का खुलना, डिस्पेंसरी का खुलना। तो जब इन हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी से जो कचरा निकलता है, कौन सा कचरा, डिस्पोजेबल सिरिंज का, रक्त का, रक्त संबंधी उनके जो अपशिष्ट थैली बैग वगैरह निकलते हैं, वो उनसे जो मानव ऊतक मानव अंग निकलते हैं वो सब इस कचरे में आते हैं। तो ये कचरा बहुत बीमारियों को पैदा करता है और एक संक्रामक रोगों का कारण बनता है। तो इसके प्रबंधन की भी

बहुत आवश्यकता है। इसके बाद जो चौथा कचरा, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनकी आवास संबंधी पूर्ति हेतु भी निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। तो निर्माण कार्यों में जो चीजें काम में आती हैं और बच जाती हैं, जगह जगह मलबे के ढेर लग जाते हैं, लोहे के ढेर लग जाते हैं, या जो कुछ भी निर्माण कार्यों में चीजें प्रयुक्त हो रही है, बाहर उनको डाल दिया जाता है। तो जब इनको डाल दिया जाता है तो ये कचरा भी जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इस कचरे का पुनर्चक्रण करके हम इसको काम में लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं हो पाता, लेकिन जो गीला कचरा और डिस्पेंसरी से निकलने वाला कचरा है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इन कचरों के निस्तारण की उचित व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी और हमें आसपास लोगों में ये संदेश पहुंचाना होगा कि जो गीला कचरा है इसका निस्तारण सही तरीके से करें। इसके लिए हम जो अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं वो ये, आसपास की जो कॉलोनी है वहां पर अगर कोई मैस है या हॉस्टल है तो वो मिलकर एक जगह उस कचरे को डालें और उस कचरे का उपयोग हम जैविक खाद या वर्मी कंपोस्टिंग में कर सकते हैं, ताकि कचरे का निस्तारण भी सही तरीके से हो जाए और साथ में उससे जो है जो हमें खाद मिलेगी वो भी पर्यावरण के हित में ही होगी। तो दोनों हमारे जो है इसके उद्देश्य सार्थक हो जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमें जो है सफाई या कचरा निस्तारण की समस्या जो होगी वो भी सही ढंग से पूर्ति हो सकेगी उसकी भी। इसी प्रकार जो कागज या प्लास्टिक जो निकल रहा है, मुख्य रूप से कागज की अगर हम बात करें, आप और हम जो है बहुत कागज बर्बाद करते हैं, तो उस कागज के निस्तारण के लिए उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं, उसकी हम वापस उसको गलाकर उसको वापस कागज बनाया जा सकता है, पुनर्चक्रण उसका किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रयास हम करें और कचरे का वर्गीकरण करें कचरा निस्तारण की वजह से, उनमें आसपास के लोगों को जागरूक करें, थोड़ा सा हम संवेदनशील बने अपने प्रति, अपने वातावरण के प्रति, तो ये जो कचरा प्रबंधन है इसको किया जा सकेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण हेतु कचरा प्रबंधन विषय पर जानकारी डॉक्टर नेजा श्रीवास्तव से। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज का ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह। संयोजक हैं कार्यक्रम के ओपी सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, कहते हैं कि दिन की शुरुआत जिस सोच के साथ होती है उसका असर हमारे पूरे दिन पर दिखाई देता है। इसलिए आज की भाग दौड़ शुरू करने से पहले हम कुछ पल अपने मन मस्तिष्क को अच्छे विचारों के साथ, सकारात्मक बातों के साथ जुड़ें। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे विचार के साथ जो हमें कुछ अच्छा समझने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। मित्रों, आज का हमारा सुविचार है कि सफलता का पहला कदम है खुद पर विश्वास। क्योंकि जिंदगी में हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा, अगर मैं

सफल हो गया तो और असफल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ऐसे ही कुछ सवाल हमारे जहन में हमारे मन में चलते हैं। यही सवाल कई बार हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोक देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी क्षमताओं पर कौन विश्वास करेगा? आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हम हर काम कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ और मुश्किल आने पर दोबारा प्रयास कर सकता हूँ। हर सफल व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल या ऐसे क्षण आए हैं जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, उसका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद खुद पर विश्वास बनाए रखा। जीवन में परिस्थितियाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे अनुकूल हों। कभी हमें असफलता मिलती है, कभी आलोचना सुननी पड़ती है और कभी ऐसा लगता है कि हम ये काम शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे समय में अगर हम खुद पर विश्वास बनाए रखें तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। हो सकता है आज आपको लगे कि आपकी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन याद रखिए, मंजिल कितनी दूर है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हमारा विश्वास कितना पक्का है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर व्यक्ति की अपनी गति, अपनी क्षमता और उसकी अपनी एक यात्रा होती है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मित्रों, आज खुद से एक वादा कीजिए कि मैं अपनी कमियों से घबराऊंगा नहीं, गलतियों से सीखूंगा, असफलता से निराश नहीं होऊंगा और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा। क्योंकि कई बार सफलता हमसे केवल एक कदम दूर होती है और वो कदम होता है हमारा विश्वास, यानी हमारा खुद पर विश्वास। दुनिया आपका साथ दे या ना दे, अगर आपका विश्वास आपके साथ है तो आप हर मुश्किल रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज दिनांक 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को एल्बेंडाजॉल की कृमि नाशक दवा दी जाती है। इस दिवस को मनाए जाने का क्या उद्देश्य है और ये दवा खिलाना बच्चों को कितना महत्वपूर्ण है, आज इस बारे में हमें जानकारी दे रही हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मथुरा से जिला सामुदायिक कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर पारुल शर्मा।
1: सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्ष में दो बार हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं, एक फरवरी माह में और एक अगस्त में। और इसका विशेष उद्देश्य होता है कि जितने भी हमारे स्कूल गोइंग या नॉन स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो 19 साल तक के किशोर किशोरियां हैं, बच्चे हैं, उन सभी का जो है वो कृमि मुक्ति की जा सके, जिसके लिए इनको दवा दी जाती है जो एल्बेंडाजोल की गोली है। और प्रत्येक 6 माह में ये गोली सभी को दी जानी आवश्यक है, जिससे कि किसी भी तरीके से यदि बच्चों के पेट में या बच्चे क्या सभी बड़े लोग हम लोगों के भी पेट में यदि किसी भी तरीके से कृमि के अंडे वगैरह चले जाते हैं, गंदगी चली जाती है, तो उससे जो कीटाणु कीड़े हमारे पेट में पनप जाते हैं उनको मारने के लिए ये अभियान चलाया जाता है। और ये अभियान इसलिए चलाया जाता है क्योंकि जो पेट में कीड़े होते हैं उनसे सबसे ज्यादा जो है वो ब्लड की कमी, खून की कमी हो जाती है और बच्चों का विकास रुक जाता है, मानसिक विकास भी और शारीरिक विकास भी। तो इसलिए ये साल में दो बार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और सभी विद्यालयों में, चाहे वो निजी विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी और ये खिलाई विद्यालय और आंगनवाड़ी के माध्यम से जाएगी। जो बच्चे किसी कारण से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन सभी की संबंधित क्षेत्र की आशा द्वारा सूची बना के और अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर ले जाकर ये दवा जो है वो उन बच्चों को भी दिलवाई जाएगी। तो एक बड़ा अभियान है जिसमें एक साथ पूरे जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और इसमें सभी 19 साल तक के बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। हम मथुरा में करीबन 12,79,000 बच्चे हैं जो हमारा इस बार का लक्ष्य है, जिन्हें हमें कवर करना है।
0: जो आपने बताया ये कीड़े जो पेट में चले जाते हैं, इसके क्या कारण रहते हैं और इसको लेकर जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं उनके क्या कुछ आंकड़े हैं?
1: ये जो बच्चों के पेट में या हमारे पेट में कीड़े चले जाते हैं, उनके अंडे चले जाते हैं, इसका मुख्य कारण होता है कि दूषित जो जल है उसके माध्यम से चले जाते हैं। इसके अलावा जो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह रहती हैं उसके माध्यम से भी अगर हम उन्हें अच्छे से धोकर नहीं खाते हैं तो उनके माध्यम से भी हमारे पेट में चले जाते हैं। इसके अलावा भी जब हम सांस लेते हैं तो मुंह के माध्यम से जो धूल के कण होते हैं उसमें भी इसके अंडे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, वो हमारी हाथों में श्वास के माध्यम से चले जाते हैं और नलियों में जाके चिपक जाते हैं और वहां पे फिर वो सक्रिय हो जाते हैं और एक ही अंडा जो है वो हजारों लाखों की उसमें परिवर्तित होके और कीटाणुओं को जन्म दे देता है। तो वो उतने सारे कीड़े जो हैं वो पेट में होते हैं और बच्चों की ग्रोथ को रोक देते हैं, जितना भी पोषक तत्व खाते हैं वो सभी उसको चूस लेते हैं और उनका विकास जो है मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास प्रभावित हो जाता है।
0: इसको लेकर जो समस्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहती है या शहरी क्षेत्रों में?
1: इस तरीके का कोई आंकड़ा तो नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि ग्रामीण में ज्यादा है या शहरी में ज्यादा है, बल्कि

0: दोनों ही जगह इसको बराबर से देखना होगा। इसमें क्या है कि चाहे गांव हो, वहां पे भी बच्चे, पता चला खुले में पानी रखा हुआ है, खुला पानी है, दूषित जगह से कहीं से पानी आ रहा है, वो पानी बच्चे बिना फिल्टर किए पी रहे हैं, बिना उबाले पी रहे हैं, या फिर बिना धोए हाथ खाना बनाया जा रहा है, सब्जियों को अच्छी प्रकार से धोया नहीं जा रहा है। और यही शहरी क्षेत्र में भी है। शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा हाथ धोने की प्रक्रिया जो है वो घरों में ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, परंतु फिर भी आजकल के बच्चे बाहरी खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जिस वजह से चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्रामीण, हर जगह इस तरीके की संभावना बढ़ जाती है कि बच्चों के पेट में कीड़े पनप जाएंगे। और इसका एक और चीज है जो महत्वपूर्ण है कि इसकी रेगुलर जो है वो डिवॉर्मिंग होना जरूरी है। अगर एक बार जैसे हम दवा देते हैं तो जरूरी नहीं है कि बच्चे के पेट में से पूरे कीड़े या पूरे अंडे जो है वो निकल जाएं, तो वो निष्क्रिय होकर आंतों में चिपके रहते हैं। और जब वो दवा का प्रभाव शरीर पे कम हो जाता है और कुछ समय बाद अगर हम फिर से उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो वो अंडे सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए ये हर 6 महीने में दवा दी जाती है, जिससे कि यदि निष्क्रिय अंडे हैं तो वो के माध्यम से निकल जाए। हम सब लोगों को इसकी दवा 6 महीने में रेगुलर लेनी ही चाहिए।
1: छोटे बच्चों को लगभग कितनी आयु से देनी चाहिए?
0: ये जो हमारी गोली आती है वो 400 mg की आती है, और उसमें 1 से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको आधी गोली पीस के चूरा करके दी जाती है, और 2 साल से ऊपर के जितने 19 साल तक के बच्चे हैं उन सबको वो 4 mg की एल्बेंडाजोल जो हमारे यहाँ टेबलेट सप्लाई में आती है वो पूरी की पूरी दी जाती है, जिस चबा के अच्छे से सादा पानी के साथ खाया जाना।
1: क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है बच्चों में?
0: नहीं, अभी तक तो मेरे ख्याल से कई साल हो गए हैं, लगातार साल में 2 बार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मथुरा में बहुत अच्छा आयोजन होता है, करीबन हम 94 से 98% तक बच्चों को कवर कर लेते हैं, तो इस तरीके की समस्या नहीं आती है। हाँ, लेकिन इसके जो प्रतिकूल प्रबंधन के लिए हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें ये जरूर बताया जाता है कि यदि किसी बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा कीड़े हैं तो हो सकता है कि उसको दवा पेट में जाते ही जो है वो असर करे और उसे कुछ उल्टी जैसा फील होना या घबराहट होनी, ये सब हो जाए। इसके अलावा कोई बड़ा ऐसा कोई नुकसान किसी बच्चे का आज तक नहीं हुआ है, और ये इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है, बल्कि ये दवा तो इतनी WHO ने एफिलेटेड कर रखी है कि इसको खाली पेट भी खाया जाता है। पर जैसा कि हमारे पिछलन में है तो हम ये कहते हैं कि बच्चा कुछ खा ले उसके करीबन 15-20 मिनट बाद इस दवा को सादा पानी से चबा के अच्छी प्रकार से, जितना ज्यादा चबा के खाएगा उतनी ज्यादा ये दवा असर करेगी, तो चबा के वो इस दवा को ले सकते हैं।
1: ये कार्यक्रम केवल 10 अगस्त को ही मनाया जाता है या साल में समय समय पर चलता रहता है?
0: कार्यक्रम के रूप में तो ये 10 अगस्त को ही मनाया जाता है, 10 अगस्त को और 10 फरवरी को। पर अगर कभी भी जैसे स्कूलों में तो इन्हीं दिनों में खिलाई जाएगी दवा, पर अगर कोई भी व्यक्ति हमारे चिकित्सालय से ये दवा लेना चाहे, अगर उनके पेट में दर्द है और उनको लगता है, तो वो वहां से ये दवा प्राप्त कर सकते हैं, वहां हमेशा ये दवा उपलब्ध रहती है। इसके अलावा 14 तारीख को इसका मॉपअप डे होता है। मॉपअप डे इसलिए है कि यदि कोई बच्चा किसी कारण से नहीं आ पाया, बीमार है या कोई और कारण से एबसेंट है, तो वो 14 तारीख को जब स्कूल में आएगा तो उस बच्चे को भी दवा खिला दी जाएगी, और जिसमें एक बार में सारे बच्चे आच्छादित हो जाएंगे, जिससे कि अगर उनके अंदर इसके अंडे हैं तो वो सभी के निष्क्रिय हो जाएंगे।
1: क्या कहना चाहेंगी हमारे सभी श्रोताओं से?
0: सभी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, इसके पहले भी हमने आपके माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाया है कि वो अधिक से अधिक संख्या में और जरूर अपने बच्चों का डिवॉर्मिंग कराएं, और वो स्वयं भी इस दवा को ले सकते हैं। हमारे संबंधित आसपास के कोई भी सरकारी चिकित्सालय है वहाँ ये दवा उपलब्ध रहती है, तो वहां से ये खुद अपने लिए भी ले सकते हैं, और जरूर अपने बच्चों को स्कूल भेजें, जिससे कि वो सभी एक आयोजन के रूप में इस चीज को सीख भी सकें और उनका डिवॉर्मिंग भी हो सके और स्कूल के माध्यम से या आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको उस दिन दवा खिलाई जा सके। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एडेड स्कूल, जितने भी स्कूल हैं हर तरीके के स्कूलों में खिलाई जाएगी, और सारे आंगनवाड़ी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में जरूर जाते हैं तो आंगनवाड़ी केंद्रों में खिला सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने कहा जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे ने किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया, वैसे तो बहुत कम है, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है भी तो आशा के माध्यम से उनकी सूची बना के उस दिन उनको वहां ले जाके आंगनवाड़ी सेंटर पे दवा खिलाई जाती है। आपके माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जो किसी के संपर्क में नहीं आ पाया है तो वो स्वयं भी सीधे जाके किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर या किसी भी चिकित्सालय में इस दवा को लेके अपने बच्चे को वो दवा डॉक्टर की देखरेख में खिला सकते।
1: तो श्रोताओं, जैसा कि आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जो कृमि की दवा है एल्बेंडाजोल, इसको लेना काफी आवश्यक है, क्योंकि हमारे पेट में कृमि रहती है तो वो हमारे शरीर को पोषित नहीं होने देते, जिससे कि बच्चों में उनकी जो बढ़वार है वो भी रुक जाती है। इसलिए आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर इस दवा को अपने बच्चों को जरूर खिलाएं, जिससे कि उनको आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आपने हमारे श्रोताओं को आज इस विशेष दवा के बारे में और इस दिवस के बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से एक साथ बहुत सारे लोगों तक हमारा मैसेज जाता है, और अच्छे से हम इस कार्यक्रम को आज आयोजित करेंगे, यही शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, श्रावण मास का हमारे ब्रज में काफी महत्व है। सावन के महीने में यहाँ ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन होते हैं और ब्रज के विभिन्न मंदिरों में ठाकुर जी के विभिन्न तरह के मनोरथों का अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आयोजन किया जाता है। और ये दर्शन, ये परंपराएं अपने आप में विशेष होती हैं, अलौकिक होती हैं और जिनके दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। हम बात करें यहाँ मथुरा के सुप्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर की, यहाँ ठाकुर जी के उत्सवों की एक अपनी ही परंपरा है और श्रावण मास में यहाँ ठाकुर जी के हिंडोला उत्सव के अंतर्गत ठाकुर जी के आकर्षक और सुंदर हिंडोलों का यहाँ आयोजन किया जाता है। 10 अगस्त से यहाँ घटाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस बारे में हम जानते हैं यहाँ मंदिर के मीडिया प्रभारी श्री राकेश तिवारी जी से। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
1: ब्रज दर्पण के सभी श्रोताओं को ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज की आशीर्वाद और सभी को इस श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रज में सावन का बहुत ही महत्व है और मैं तो ये कहता हूँ ब्रज में चतुर्मांस्या का बहुत महत्व है। सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, ये चार महीने ब्रज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें सभी त्यौहार आते हैं। मान्यता ये भी है कि जब भगवान कृष्ण से यशोदा माँ और नंद बाबा ने तीर्थ करने की इच्छा जाहिर की तो भगवान कृष्ण के द्वारा

0: सभी तीर्थों का आह्वान करके ब्रज में बुलाया गया और इसीलिए ब्रज 84 कोस की यात्रा जो इस चतुर्मांस्या में होती है उसका महत्व इसलिए है कि सभी तीर्थ इसमें वास करती हैं। रही बात पुष्टि मारक संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश की, तो मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज, जो तृतीय पीठाधीश्वर कांकरौली नरेश हैं, उनके द्वारा किया जाता है और पूरे श्रावण मास से लेकर जन्माष्टमी तक के सभी कार्यक्रम का निर्धारण हो चुका है और उसी के तहत 30 तारीख से ठाकुर जी के स्वर्ण और रजत हिडोले जो वर्ष में एक बार निकलते हैं वो निकले और ठाकुर जी उसमें विराजमान हुए और उस दिन से प्रतिदिन ठाकुर जी विभिन्न हिडोलों में विराजमान हो रहे हैं। कभी मखमल का हिडोला, कभी केले का हिडोला, कभी फूलों का हिडोला, ये सभी चल रहे हैं। उसके बाद 10 अगस्त से प्रारंभ होंगी घटाएँ। हमारे मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश में 9 घटाएँ होती हैं, जिसमें सबसे पहले हरी घटा होगी। हरी घटा, सोसनी घटा, लाल घटा, गुलाबी घटा और सबसे प्रसिद्ध होती है श्याम घटा, जैसे काली घटा कहते हैं। फिर लहरिया घटा 9 हिडोलों की होती है। इस प्रकार से हिडोलों की घटाओं का कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना। इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इस श्रावण मास के सभी हिडोले और घटाओं के कार्यक्रम का आप सभी लोग आनंद लें और ठाकुर जी के दर्शन करें।
1: ये जो घटाएं होती हैं इनका कैसे कैसे इनका क्रम रहता है और घटाओं में मंदिर का जो है दृश्य किस तरह का रहता है?
0: देखिए, घटाओं में मंदिर का जो दृश्य है बड़ा मनोहारी दृश्य होता है और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप की सेवा है और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। पूरे मंदिर प्रांगण को, जगमोहन को इस प्रकार से सजाया जाता है कि आज बाहर का मौसम गुलाबी है तो गुलाबी घटा का आयोजन है। एक दिन छोड़ के एक दिन घटाओं के आयोजन होते हैं और लगभग 9 घटाएं होती हैं। इस प्रकार से घटाओं के कार्यक्रम होते हैं।
1: कैसे इनकी गुलाबी कैसे इनकी साज सज्जा और वो सब तैयारियां की जाती हैं?
0: साज सज्जा तो दर्शक आके जब देखेंगे जब पता लगेगा। साज सज्जा से मैंने आपको बताया जगमोहन में ठाकुर जी को उसी प्रकार से सजाया जाता है जिस प्रकार की घटा होती है।
1: यहाँ की जो सुप्रसिद्ध घटा है श्याम घटा, तो इसके बारे में बताएं कि श्याम घटा की अपनी क्या विशेषता रहती है?
0: देखिए, श्याम घटा को जो ब्रज भाषा में लोग काली घटा कहते हैं, काली घटा से हमारा तात्पर्य यह है कि बाहर का मौसम जैसे बादल काले हो रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं, गरज रहे हैं, चिड़ियाओं की चहचहाट होती है, उन सब चीजों का प्रदर्शन ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में किया जाता है।
1: ठाकुर जी को वैसी अनुभूति इसमें कराई जाती है। हिंडोलों और घटाओं में ठाकुर जी के जो दर्शन का जो समय है, इन घटाओं का दर्शन, हिंडोलों का दर्शन
0: का समय 5:10 से 5:40 है और घटाओं का समय है सायंकाल 7 बजे से 8 बजे। लेकिन जिस दिन घटा होगी उस दिन उत्थापन के दर्शन 4 बजे की बजाय 5 बजे खुलेंगे।
1: और क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी श्रोतागणों से?
0: यही कहना चाहेंगे ठाकुर जी की आराधना करें, दर्शन करें, सावन में अपने घर में झूला झूलें, अपनी बहनों को, बहुओं को, सबको झूला झुलाएं।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे श्री द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी और जैसा कि बताया कि पारंपरिक रूप से यहाँ मंदिर श्री द्वारकाधीश में किस तरह से ठाकुर जी के आकर्षक हिंडोलों और घटाओं का आयोजन किया जाता है, जो कि यहाँ की अपनी एक विशेष परंपरा है और इन अद्भुत दर्शनों के लिए यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। तो सावन के महीने का आनंद लें और ठाकुर जी के इन विशेष दर्शनों का आनंद लें।
2: जी हाँ मित्रों, श्रावण मास चल रहा है और इस समय हमारी ब्रजभूमि मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि श्रावण मास का अपना विशेष महत्व है। ये महीना ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव का प्रतीक है और क्योंकि ब्रजभूमि हम मथुरा विश्व पटल पर हमारी धार्मिक आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहाँ श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा भाव से आते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी इस ब्रजभूमि को हरा भरा, साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा प्रयास। अगर हम कुछ बातों को अपनी आदतों में अपनाएं तो हम साफ सफाई के काम में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें तो इससे काफ़ी हद तक साफ सफाई में सहूलियत होगी और हमारी जो धरती है वो भी हरी भरी और सुंदर दिखाई देगी, क्योंकि जहाँ पॉलीथीन का लोग अक्सर उपयोग करते हैं और वही पॉलीथीन को हम इधर उधर फेंक देते हैं तो वो नालों में, नालियों में चली

0: जाती है और जिसकी वजह से नाली नालियाँ चौक हो जाते हैं और जल भराव की समस्याएं आती हैं। और जब आसपास पॉलीथीन का कचरा बिखरा हुआ होता है तो काफ़ी भद्दा और बुरा महसूस होता है। दोस्तों, पॉलीथीन हमारी सुविधा जहाँ एक ओर बढ़ाती है, लेकिन वहीं ये हमारी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बाजार से सामान लेने के लिए अक्सर हम पॉलीथीन की थैली ले लेते हैं और उपयोग के बाद उसे इधर उधर यदा कदा फेंक देते हैं। यही छोटी सी लापरवाही हमारे पर्यावरण को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि पॉलीथीन पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, इसे नष्ट होने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। इस दौरान ये मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देती है, नालियों को जाम करती है और जल भराव जैसी समस्याएं पैदा करती है। और अगर जीव जंतु आसपास जो अगर गाय हैं या अन्य पशु हैं इसको खा जाएं तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बस ये ध्यान रखें कि आप घर से जाएं तो एक थैला अपने साथ में रखें और पॉलीथीन का जहाँ तक संभव हो इसका उपयोग नहीं करें। अब एक नज़र आज की खास खबरों पर डाल लेते हैं। आज की खास खबरों में है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान 2026 को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सभी 75 जिलों के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है, जिससे कि घर घर तिरंगा पहुंच सके। और इसी के साथ और भी खबरें हैं। परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सप्ताह में एक दिन 30 मिनट का विशेष पुस्तक पठन सत्र आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रदर्शन तेज हुए और कानपुर, पटना, वाराणसी और इलाहाबाद में हड़तालों और जुलूसों को निकाला गया और लोगों ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना की। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आज ही के दिन 10 अगस्त 1942 को देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए थे और भूमिगत आंदोलन और गुप्त संचार व्यवस्था ने स्वतंत्रता आंदोलनों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल नेताओं के संघर्ष से नहीं बल्कि आम जनता की। तो मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की और संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत है आज, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। विषय है नेशनल हेल्थ मिशन कृमि मुक्ति दिवस। डॉक्टर पारुल शर्मा से भेंट कर रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
2: नेशनल हेल्थ मिशन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कृमि मुक्ति यानी डीवर्मिंग पर स्कूली बच्चों के साथ। इस कार्यक्रम में हम कृमि नाशक दवा, बच्चों के पेट में कीड़े और बहुत सी उससे होने वाली अन्य बीमारियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल शर्मा, जो स्वास्थ्य विभाग में डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर हैं। तो हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी आज आए हुए हैं, स्कूली बच्चे हैं, इनके मन में भी जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं। ये अपने साथ कई तरह के प्रश्न लेकर के आए हैं, इनको भी हम शांत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार।
2: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं, तो ये जो दिवस है इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है?
3: देखिए, कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में 2 बार हम मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो हमारा पूरा वातावरण है पॉल्यूटेड है, और इसमें तमाम तरह के कीड़े और उनके अंडे हवा में, खाने पीने की चीजों में, इसमें सब में मिलते रहते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारी आंतों में

0: पक जाते हैं
1: जी
0: और फिर ये उसमें रहकर तो बढ़ते रहते हैं और एक से असंख्य संख्या में होते रहते हैं। साथ ही ये जितने भी हमारे पौषक तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं, जो भी हम अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, उसके जो पौषक तत्व हैं उन सबको चूसते रहते हैं
1: जी।
0: और कहीं ना कहीं हमारे विकास में, मानसिक विकास में और शारीरिक विकास दोनों तरह के विकास में अवरोध पैदा करते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का कृमि मुक्ति के लिए डिवॉर्मिंग की जाए, उसको दवा खिलाई जाए और ये दवा प्रत्येक 6 महीने में हर किसी को जरूर लेनी चाहिए
1: जी। जैसा डॉक्टर साहब आपने बताया कि प्रतिवर्ष 10 फरवरी और 10 अगस्त को ये दिवस हम मनाते हैं और ये जो पेट में कीड़े हमारे उपस्थित होते हैं ये हमारे शरीर के पोषक तत्वों को ग्रहण कर जाते हैं और जो शरीर को लगना चाहिए वो शरीर में नहीं पहुंच पाता है, तो ये क्या सभी के साथ होता है या खासतौर से किसी एक उम्र विशेष के बच्चों के साथ होता है?
0: ये कृमि मुक्ति दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है, ये एक्चुअली सभी के संग है, आप हम जो भी किसी भी उम्र में हो उन सभी के साथ ये दिक्कत है। क्योंकि जो आजकल हम खाना खा रहे हैं, आजकल भी और पहले भी जो खाना खा रहे हैं, तो जो धूल मिट्टी के साथ कीटाणु जाते हैं, कीड़े जाते हैं, तो वो आप भी इनहेल कर रहे हैं। अगर स्वच्छता का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं या बाहर की चीजें खा रहे हैं, खुली चीजें खा रहे हैं, कटे हुए फल खा रहे हैं बाजार के, तो उसमें ये जा रहे हैं, तो ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। परंतु ये जो कृमि मुक्ति कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को विशेष फोकस करके प्लान किया जाता है और सभी 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए दवा खिलाई जाती है। ये दवा आप भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं और हमको लेनी भी चाहिए नियमित रूप से हर 6 महीने में, क्योंकि जो विकास है या जो शरीर के अंदर कीटाणु पनप रहे हैं वो आपके भी उतने ही है, उतने बच्चों के भी। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा बच्चों में हो या हम में कम हो, पर चूंकि ये ग्रोइंग एज होती है
1: जी।
0: और कहीं ना कहीं उस एज में अगर इनको इनका विकास सही नहीं होता है तो पूरी तमाम उम्र जो है तमाम तरीके की दिक्कतें इनको फिर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और दिक्कतें आती हैं
1: जी जी।
0: तो इसलिए फोकस ये किया जाता है सरकार के द्वारा कि 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चे इस दवा का सेवन अवश्य करें।
1: यानी 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को इसमें कवर किया जाता है, यानी स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले इन बच्चों को ये कृमिनाशक दवा पिलाई जाती है। अगर मान लिया जाए कि कोई एक बच्चा है, स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो कृमि होने पर यानी पेट में कीड़े हैं या नहीं है इस बच्चे के, तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं बच्चे के अंदर ताकि ये जान सकें कि इस बच्चे के पेट में कीड़े उपस्थित हैं?
0: सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कीड़े जो हैं अगर अंदर पहुंच जाएं और आंतों में रह जाते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। इसलिए जो मैंने आपको पहले बताया कि हर 6 महीने में डिवॉर्मिंग करना जरूरी है
1: जी।
0: दूसरा ये है कि ये हमारे खून को चूस लेते हैं, पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, तो जो मानसिक विकास है इस उम्र के बच्चों का वो बहुत प्रभावित होता है।
1: अच्छा।
0: साथ ही शारीरिक विकास भी बहुत प्रभावित होता है, वो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया का शिकार हो जाएगा, बार बार खून की कमी के कारण उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी और जिस कारण से वो तमाम तरह की बीमारियां जो है वो बार बार उनसे ग्रसित होगा और बार बार बीमार पड़ेगा।
1: यानी पेट में कीड़े होना अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है, यानी पेट में अगर कीड़े हैं किसी बच्चे के तो वो अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो सकता है, तो मुख्यतः कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बच्चा ग्रसित हो सकता है?
0: अगर बच्चे को किसी भी तरीके की बीमारी तो सभी लग सकती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो रही है
1: जी।
0: और जो बच्चों में खासतौर से देखा जाता है कि थकान हो रही है खून की कमी की वजह से, और उसके अलावा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा क्योंकि बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो वो अच्छे से अपना कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसके अलावा डायरिया वगैरह है, इन सारी चीज जितनी भी ये हमारी बीमारियां जर्नल जो चलती है वो सभी से बच्चा बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। मौसम का जो परिवर्तन होता है उसके परिवर्तन के जैसे ठंड हुई या ज्यादा गर्मी हुई तो बच्चा वो भी नहीं झेल पाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है
1: जी जी। तो जैसा आपने बताया ये कृमि मुक्ति दिवस के दिन अभियान चलाए जाते हैं, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो ग्रामीण स्थानों पर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको किस तरह से दवाई पिलाई जाती है, या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं भी जाते हैं तो उन तक कैसे पहुंच की जाती है, क्या व्यवस्था रहती है, क्या कार्यक्रम रहते हैं?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, क्योंकि जितनी भी सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस उम्र वर्ग के लिए वो योजना चलाई जा रही है वो सभी को उसका लाभ हो, और खास तौर से ग्रामीण अंचल में या दूरस्थ जो बच्चे या दूरस्थ जो लोग रह रहे हैं उन तक सेवाएं जरूर पहुंचे। तो मैं आपको इसके लिए बताना चाहती हूं कि ये कार्यक्रम जो है वो हमारे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर और सभी विद्यालय में विद्यालय में कोई प्राइवेट विद्यालय है वो भी मान्यता प्राप्त है, वो भी किसी भी तरीके का कोई विद्यालय है, उन सभी में ये चलाया जाता है। तो वहां जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो तो उसमें कवर हो जाते हैं, आंगनवाड़ी में जो बच्चे पंजीकृत हैं वहां पे आ रहे हैं वो वहां पे कवर हो जाते हैं। पर आपका बिल्कुल सही कहना है कि बहुत सारे बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, जो स्कूल जाना छोड़ देते हैं।

0: तो उनके लिए विशेष एक उसमें अभियान चलाया जाता है कि कार्यक्रम के कुछ दिन पहले से हम उनकी सूची बनवाते हैं। हमारी आशा वर्कर होती है, हर गांव में एक आशा वर्कर होती है, वो अपने क्षेत्र के स्कूल ना जाने वाले नॉन स्कूल गोइंग जो बच्चे कहलाते हैं उनकी एक सूची बनाती है और उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि इतनी तारीख को आपको इस स्थल पर जो नजदीकी उसका आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर दवाई खिलाई जाएगी। और फिर उस दिन जो दिवस हम आयोजित कर रहे हैं उस दिन वो आशा उन बच्चों को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र पर उनको दवा खिलाती है। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि नॉन स्कूल गोइंग बच्चे उनको भी पूरे पूरा इसका लाभ मिले और उनका भी डिवॉर्मिंग समय पे हो सके।
1: जी, तो इस वर्ष क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए?
0: इस वर्ष भी बिल्कुल हर बार की तरह है।
1: जी डॉक्टर साहब, इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर जो बच्चे रह जाते हैं दवा खाने से या उन तक दवा नहीं पहुंच पाती है, तो इसके लिए भी क्या कोई व्यवस्था चल रही है या कार्यक्रम चलाया जा रहा है?
0: जी जी बिल्कुल, या कोई बच्चा ऐसा हो जो बीमार चल रहा हो, अगर कोई बच्चा ज्यादा बीमार चल रहा है और उसकी कोई दवा चल रही है तो हम उसको दवा खिलाने से मना करते हैं कि उस समय नहीं खिला के जब वो थोड़ा ठीक हो जाए तब दवा खिलाई जाए। तो उस बच्चे को कैसे खिलाएंगे? तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक VHND ग्राम स्थल पे आयोजित किया जाता है हर महीने, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, जिसमें जो है इसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पोषण दिवस कहते हैं और शहरी क्षेत्र में शहरी पोषण दिवस। तो ये सभी गांवों में महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। इसमें हमारी ANM NG वहां पर पहुंचती हैं और उनके पास टीकाकरण इसमें सारे बच्चों का, सारी गर्भवती महिलाओं का किया जाता है। तो उनके पास एल्बेंडाजोल की टैबलेट होती है जो कि हम कृमि मुक्ति के लिए देते हैं। ये टैबलेट वहां से भी लेके हम अपने बच्चों को, अगर कोई छूट गए हैं, पर सत्र पे ही खिलाएं अगर कोई छूट गया है तो, घर ले जाने के लिए टैबलेट नहीं है कि आप घर ले जाके खाएंगे। और इसके अलावा जो और अगर शहरी क्षेत्र में है या कोई ऐसा परिवार है जो सरकारी क्षेत्र में दवा नहीं खिलाना चाहता है, तो वो अगर प्राइवेट से लेके भी खिला रहा हो तो वो बाजार से लेके खिला सकता है, और जिससे कि सभी बच्चों का डिवॉर्मिंग हो सके, तो ये व्यवस्था है। और इसके अलावा अस्पतालों पे भी हमारे यहाँ हमेशा ये दवा उपलब्ध रहती है।
1: जी, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष में दो बार इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो वर्ष के जो अन्य दिन हैं उनमें भी क्या कोई दवा पिलाने की व्यवस्था रहती है?
0: ये कृमि मुक्ति जो है इसको आयोजित इस तरीके से किया जाता है कि हमको 6 माह में एक बार इस दवा का सेवन करना है।
1: यानी ये तो, जो दवा एक बार बच्चा सेवन करता है तो क्या 6 महीने तक प्रभावी रहती है?
0: जी, 6 महीने तक वो उसको वो करती है, और उसके बाद बल्कि ये आगे भी करती है, पर एक ड्यूरेशन इसलिए रखा गया कि जिससे कि दवा का प्रभाव खत्म होने के पहले। और उसमें देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये दवा का ये होता है कि बच्चा जब दवा खाता है और किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं, अंडे हैं, तो वो उसके मल के साथ निकल जाते हैं दवा खाने से। लेकिन जो अंडे होते हैं वो आंतों में चिपके रहते हैं या कुछ कीड़े चिपके रह जाते हैं, तो वो धीरे धीरे करके जब वो दवा रहती है तो वो निकलते रहते हैं। और अगर कोई निष्क्रिय अंडा पड़ा है तो 6 महीने बाद जब हम दोबारा उसको डिवॉर्मिंग करते हैं तो वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये निरंतर कराते रहना चाहिए डिवॉर्मिंग बच्चों की, जिससे कि उनके पेट में अगर कोई अंडे रह भी जाते हैं तो वो अगले वाले चरण तक दवा खाने से पूरी तरीके से खत्म हो जाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारी इतनी चर्चा हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं और बच्चों के मन में भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे, तो आज हमारे बीच में RV मॉडर्न पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, तो एक एक करके इनके जो प्रश्न हैं हम उनको लेते हैं और डॉक्टर साहब आप इन बच्चों के जो प्रश्न हैं उनका समाधान आप करेंगे, तो आप अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम जानवी सोलंकी है, मैं कक्षा 8A की छात्रा हूँ। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि ये जो एल्बेंडाजोल टेबलेट है इससे आपके पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, इसमें तो कई प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं।
0: जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया बिटिया रानी ने। हमारे इसमें जो है वो 3 तरह के वर्म्स होते हैं, इनको हुक वर्म, विप वर्म और राउंड वर्म बोलते हैं, और ये सभी पे प्रभावी है। और इस दवा का सेवन से ये तीनों प्रकार के कीड़े जो हमारी आंत में पनपते हैं, जो खून चूसते हैं, हमारे पोषण को प्रभावित करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, उसको नष्ट करते हैं ये कीड़े।
1: और आप कुछ पूछना चाहती हैं?
3: मेरा नाम शिवा है, मैं कक्षा 8A की छात्रा हूँ। मेरा यह सवाल है कि आखिरकार ये कीड़े जो होते हैं हमारी बॉडी में प्रवेश कैसे करते हैं?
0: बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये सभी के मन में होगा कि ये कीड़े घुस कैसे जाते हैं हमारे अंदर। तो बिल्कुल सही है, जैसे हम बेटा बाहर का जो भी खाना खाते हैं या बिना हाथ धोए खाना खाते हैं या खाने पीने की चीजों में, और खाते समय तो चलिए हम ध्यान रखते हैं कि हाथ धो लें साबुन से, सभी को सिखाया जाता है, स्कूलों में भी सिखाया जाता है, पर कई बार होता है हम बातचीत करते में मुंह में हाथ डाल लेते हैं, कोई चीज सामान मुंह में डाल लेते हैं, या बाजार से कोई फल लिया उसको नहीं वॉश किया और ऐसे ही लेके खाना शुरू कर दिया खाने पीने की चीजों से। इसके अलावा हवा में भी, एक्चुअली पहले मैं ये बताना चाहूंगी ये कीड़े आते कहां से हैं। ये पेट में जब हमारे कीड़े हैं और जो भी जिस भी व्यक्ति के पेट में कीड़े हैं अगर वो सोच जाएगा तो वो सोच के

0: माध्यम से निकलते हैं। तो अब खुले में शौच तो बंद है, नहीं होता है कहीं भी, परंतु उसके बावजूद भी ड्रेनेज है जो नालियों में है या और भी तमाम तरीके के तरीके से जो है वो जा रहा है, वो सारे मिट्टी के साथ और खेतों में और जो हमारे खाने पीने की चीजों में, उसमें हवा के द्वारा जाके उस पे जम जाते हैं और जब हम उनका सेवन करते हैं तो वो हमारे पेट में चले जाते हैं। आप लोगों को शायद पढ़ाई में बताया भी गया होगा, पत्ता गोभी एक खाते हैं आप, पत्ता गोभी के लिए कहते हैं उसको खूब अच्छे से पका के खाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो है इसके अंडे आ जाते हैं। जो भी खेत में हमारी सब्जियां होती हैं, सारी सब्जियों को सारे फलों को धोके बहुत अच्छे से पका के और फिर खाने के लिए बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि उसमें बहुत इतने सूक्ष्म अंडे होते हैं कि हम अपनी इन आंखों से तो देख ही नहीं सकते, और अगर उसे अच्छे से नहीं पकाया तो वो हमारे पेट में चले जाएंगे और पेट में जाने के बाद वो आंतों से चिपक जाते हैं और फिर वो वहीं पे रह जाते हैं, पनप जाते हैं, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके संख्या उनकी बढ़ने लगती है और वो जो है वो हमारा पोषक तत्व खून इन सबको चूसते रहते हैं और हमारे को प्रभावित करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से और आसान शब्दों में बच्चों को समझाया, और एक बच्ची बहुत देर से इशारा कर रही है अपनी बारी का, तो आप पूछें अपना सवाल।
2: मेरा नाम वंशिका है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है वंशिका। ये दवाई WHO, सुना है आप लोगों ने बच्चों?
3: यस मैम।
0: हाँ, तो ये WHO के द्वारा सर्टिफाइड है, ये दवा एकदम सेफ है, सुरक्षित है, और ये दवा कोई भी खा सकता है, हम आप बड़े बूढ़े सभी लोग। और कुछ क्षेत्रों में जो तराई वाले नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे तो ये कार्यक्रम सभी के लिए चलाया जाता है, हर उम्र के लोगों के लिए, जब तक हम जीवन पर्यंत जो है वो हर 6 महीने में इसको खाएं, तो ये दवा बिल्कुल सुरक्षित है। और आपके लिए विशेष रूप से बताना चाहेंगे कि ये जो दवा है वो चबा के खानी है और इसमें फ्लेवर है, ये टॉफी की तरह लगती है, क्योंकि इस दवा को जितना ज्यादा चबा के खाएंगे उतना ज्यादा ये प्रभावी होती है। तो इसमें फ्लेवर ये डाला गया है कि बच्चे इसको खुश होके चबा के अच्छे से खा लें, और सादा पानी के साथ ये दवा खानी है, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, यदि किसी बच्चे के पेट में बहुत ज्यादा कीड़े हैं और हम जनरली नहीं जान पा रहे हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं, और वो अगर इसका सेवन करता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ी घबराहट हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं, कहीं से शिकायत आती है, हम कई सालों से ये कार्यक्रम चला रहे हैं तो ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। और यहां तक कि हमारे यहाँ जो गर्भवती माताएं होती हैं, जिन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको भी हम ये, उनके लिए तो कई सारी दवाएं होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये नहीं देनी है, वो नहीं देनी है, पर उनको भी हम उनके प्रेग्नेंसी काल में, गर्भ काल में उनको ये दवा खिलाते हैं, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट और कुछ भी नहीं है।
1: जी, और अब एक छात्र प्रश्न पूछना चाहता है, आप प्रश्न पूछिए।
4: मेरा नाम निशान चौधरी है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम इस दवा को लेते हैं, ये दवा असर नहीं करती है, तो हम कितने समय बाद इस दवा को दोबारा ले सकते हैं?
0: बहुत अच्छा, दवा असर नहीं करती है, अच्छे से इस दवा का अगर आप सेवन करेंगे तो ये दवा अंदर जाके बिल्कुल असर करेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जरूरी नहीं हमारे पेट में कीड़े हों ही, तो ये कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये असर बिल्कुल करेगी और 6 महीने बाद ही इसको फिर दोबारा से लेना है। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है कि दवा ने असर नहीं किया तो हम 2 गोली खा लें या 3 खा लें, तो 1 गोली लेनी है, 400 mg की एक गोली है, ये लेनी है और इसको 6 महीने बाद दोबारा लेना है। ये कुछ बच्चों में होता है कि पेट के बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत करते हैं और फिर पेरेंट्स उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वहां जो डॉक्टर दवा देता है वो बच्चों के डॉक्टर होते हैं और फिर वो उस हिसाब से दवा देते हैं कि हो सकता है इसके पेट में जो दर्द है वो कीड़ों की वजह से हो, तो वो उनका डोज उनकी देखरेख में होता है। पर हमारे कार्यक्रम में जो है वो ये दवा एक दी जाती है, ये बिल्कुल 6 महीने में एक बार ही सफिशियंट है आपके लिए। इसमें एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगी, यहाँ तो सारे बच्चे अपने बड़े हैं, इस दवा को, ये 400 mg की दवा होती है, टैबलेट है, टैबलेट के रूप में है ये, और इसको जो 1 से 2 साल तक के बच्चे जो आंगनबाड़ी पे होते हैं, अभी आप तो सब बच्चे बड़े हैं, बड़े क्लास के हैं, 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये दवा आधी दी जाती है और तोड़ के और चम्मच के बीच रख के इसको चूरा करके पीस के और सादा पानी से देनी है, न गर्म पानी न ठंडा पानी, दूध इन सबके साथ नहीं देनी है। और इसको खाने के बाद, अगर एक बच्ची ने प्रश्न किया था कि कुछ अगर दिक्कत होती है, अगर हमको लगता है कि थोड़ी बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि वो दवा से नहीं होती है, वो हम दवा के नाम से जो डरते हैं ना उससे होती है, तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम, अगर ऐसा लगता है कि दवा खाने के बाद, तो आराम से आप छाए में बैठिए, अगर गर्मी का टाइम है तो अपने कपड़े थोड़ा लूज कर दीजिए जिससे अच्छे से आप ब्रीथ कर सके, और वहां पे आप नॉर्मल बैठिए, थोड़ी देर बाद अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा और इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और 2 साल से लेके 19 वर्ष तक के बच्चे को पूरी टैबलेट खानी है और अच्छे से चबा के खानी है, चूरा कर। ये जितनी ज्यादा हम चबा के दवा खाएंगे उतना ज्यादा हमारे लिए

0: सब कारक होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बताया आपने। 1 से 2 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आधी टैबलेट दी जाती है, और उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं उनको पूरी टैबलेट दी जाती है। 400 mg की ये टैबलेट होती है और इसको चबा कर खाया जाता है। अभी हमारे बीच में कुछ और बच्चे उपस्थित हैं, उनके मन में भी प्रश्न होगा, आप अपना प्रश्न पूछें।
2: जी, मेरा नाम दिव्या है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा कि छोटे बच्चों के लिए हम टैबलेट को पीस के देते हैं, तो मतलब बड़ी एज वालों को टैबलेट पूरी देंगे, तो 19 से जो ऊपर वाली एज है उसको किस तरीके से उसको देंगे टैबलेट को?
3: बहुत सही बेटा, 2 साल से ऊपर जो भी एज है, 19 तक के बच्चों को तो हम कवर कर रहे हैं अपने यहाँ, इसलिए मैं आपको 19 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रही हूँ। हम में से कोई भी, अगर मैं भी टैबलेट लेती हूँ तो पूरी एक टैबलेट मेरे लिए सफिशियंट है, तो एक ही टैबलेट हमको लेनी है।
2: मैम, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि इसके पेट में दर्द जो होता है उसके कारण से, पेट में कीड़े का होने का कारण पेट में दर्द है एग्जैक्टली, तो क्या पेट में कीड़े होते हैं तो सिर्फ दर्द ही होता है या फिर कुछ और लक्षण भी होते हैं उसके?
3: पेट में दर्द है अगर तो जरूरी नहीं है कि कीड़े ही हों, हो सकता है कि कीड़े ही हों, क्योंकि फिर तो वो डायग्नोस करके देख के जांच करके फिर पता। लेकिन इसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं ना कि आपको अत्यधिक थकान महसूस हो रही हो, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बुखार आपको बहुत जल्दी लग जाता है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा जल्दी होता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है ना वो कमजोर है, और वो कमजोर क्यों है? क्योंकि हम जो भी पौष्टिक चीजें खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लग ही नहीं रही है, वो तो कोई और है अंदर बैठा हुआ है आंतों में, जैसे कुछ अच्छा जाता है वो चूस लेता है, तो जो हमारा ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं है, तो आप हर तरीके के सर्दी जुकाम, जैसे जरा सा तेज हवा चली तो आप बीमार हो गए, वो इम्यूनिटी पावर से, तो यही है। दूसरा एक खास तौर से है क्योंकि ये खून चूसता है ये कीड़ा, तो आप देखिएगा अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा थकान होती है, वो जल्दी थक जाते हैं, खेलने में नहीं खेल पा रहे हैं और बच्चों की तरह, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि उस बच्चे के पेट में कीड़े हों, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम कंसंट्रेट किसी चीज पे कर पाएंगे, तो ये सारे इसके लक्षण हैं जिनसे हम सोच सकते हैं कि शायद इसको पेट में कीड़े भी हो सकते हैं।
2: जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि कीड़े जो पेट में होते हैं उसके लक्षण होते हैं, लेकिन हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पेट में कीड़े नहीं हो या फिर उससे बचाव हो सकता है?
3: बहुत दवाई
2: टैबलेट के भी अलावा भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं उनके लिए?
3: बिल्कुल, देखो बेटा टैबलेट तो हमने बताई है कि वो हमें इसलिए खानी है कि जो पेट के अंदर है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेट में जा ही नहीं तो ज्यादा सही है, दवा खा रहे हैं वो तो हम ठीक है प्रोटेक्शन ले रहे हैं। इसके लिए आपको स्वच्छता का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, आपके यहाँ मैसेज भी दिया जाता होगा, बताया जाता है कि जब भी आप खाना खाएं साबुन से हाथ धोएं, हमेशा साफ सुथरे रहें, सब्जियां जो लेके आए जो मैंने अभी पहले बताया कि उनको अच्छे से वॉश करके, फल को वॉश करके अच्छे से धो के साफ पानी से, और फिर उसके बाद सब्जियां पका के फिर खाएं। और इसके अलावा अगर हम शौच जाते हैं, शौच के बाद आने के बाद जरूर साबुन से हाथ धोएं, अगर किसी के घर में कोई छोटा बेबी है और अगर वो उसको टच कर रहा है, छू रहा है, तो उसके पहले साबुन से हाथ धोएं, और अगर वो बच्चा पॉटी करता है, मम्मा साफ करती है या कोई और हम लोग टच कर लेते हैं तो जरूर साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि एक हमारे हाथ ही एक है माध्यम जो मुंह तक जाता है हर चीज लेके, और हाथ में अगर किसी भी तरीके से कोई जर्म्स लग गए, हमने धूल मिट्टी छुई, उस धूल मिट्टी में उड़ के कहीं से आ गए कीड़े, अंडे आ गए, वो हमारे नाखूनों में चले गए, हमने अपने नाखून साफ नहीं रखे और खाना खाया और कुछ उससे उठा के खाया, तो वो मुंह के माध्यम से हमारे पेट में चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि दवा तो लें, ठीक है, इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखें, सब्जियां फल ये कटे जो बाहर के होते हैं ये नहीं खाएं, साफ हाथों से खाएं, हाथ धो के खाएं, और सब चीजों को ढक के रखें, घर में भी कहते हैं ना कि खुला ना रखें और बाजार का खुला हुआ खाएं ना।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि स्वच्छता तो हमें रखनी ही है और पौष्टिक भोजन बच्चों को लेना ही चाहिए, कटे फल हैं ये उपयोग में नहीं लेना चाहिए, यानी धोने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चे कई बार मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी में खेलने जाते हैं, तो क्या मिट्टी के संपर्क में आने से या सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा अगर मिट्टी के कण पेट में चले जाते हैं तो क्या वो भी कीड़ों का कारण बन सकता है?
3: जी जी बिल्कुल बन सकता है, और जो मैं आपको भी पहले बता रही थी कि हमें सब्जियां वगैरह, उसके साथ में एक ये चीज है कि हमें धूल मिट्टी में नंगे पैर नहीं जाना है।
1: जी,
3: नंगे पैर नहीं रहना है, आपको हमेशा स्लीपर्स पहन के जाइए, और स्पेशली कहीं अगर ऐसा दिखाई दे रहा है गंदगी वगैरह है तो वहां पे कोशिश करिए, अगर बाय चांस जा रहे हैं निकल रहे हैं तो आने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ पैर धो लीजिए, क्योंकि ये जो कीड़े होते हैं, ये जो हमारे पैरों के उंगलियां होती हैं, उंगली के बीच जो नम एकदम मुलायम स्किन होती है, ये उससे भी चले जाते हैं, मुंह से तो जाते ही हैं, अगर आपके पैरों में कहीं पे आप गए और वहां पे अगर

0: कीड़े हैं तो वो आपके जो पैरों और हाथों के बीच की जो नर्म त्वचा होती है उससे भी वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप स्लीपर पहन के रखिए। और इसके अलावा आप जो धूल मिट्टी की बात आप कर रहे हैं कि धूल मिट्टी में भी अंडे हैं वो उड़ के, इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीजें धो के खानी है, और फिर अगर अनकॉन्शियसली कुछ हमारे चला जा रहा है तो उसी के लिए फिर हम ये टैबलेट दे के डिवॉर्मिंग बच्चों की करा रहे हैं।
1: और अभी एक छात्र और है हमारे बीच में, उत्सुक है कुछ पूछने के लिए, तो बेटे आप भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
2: मेरा नाम रवि है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि इस दवा को खाने से पहले कोई नियम है कि खाली पेट ही खाना है या फिर कुछ खा के उसके बाद ये टेबलेट लेनी है?
0: इस दवा को खाने के पहले ऐसे नियम कुछ नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बेटा बताया कि WHO ने इसे सर्टिफाइड किया है। ये दवा हम WHO ने अपना पूरा रिसर्च में ये बताया कि ये दवा हम खाली पेट भी खा सकते हैं।
1: जी
0: पर जिस तरीके की हमारा, हम अपना दवा खाने के पहले, हमारे यहाँ एक वो है ना कि खाली पेट दवा नहीं खाना, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, तो अगर आप उस चीज को भी फॉलो कर रहे हैं तो दवा को आप अगर कुछ खा रहे हैं तो उससे कम से कम 15 से 20 मिनट बाद खाइए। सादा पानी से खाइए, अच्छे से चबा के खाइए। दूध के साथ आपको नहीं लेना है, गर्म पानी, ज्यादा ठंडा पानी इसके साथ नहीं लेनी है, सादा पानी के साथ लीजिए। और खाना खाने के थोड़ी देर बाद का, अगर आपने तुरंत खाना खाया है तो तुरंत दवा मत खाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने या हमने भी खाना खाया और अच्छा खूब सारा पानी पी लिया, और ढेर सारा खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद फिर दवा खा ली, तो दवा के नाम पे वैसे भी दिमाग में वो चलने लगता है कि दवा है। जैसे इंजेक्शन से डर लगता है वैसे ही फिर अगर इंजेक्शन नहीं लग रहा हो तो दवा से भी डर लगने लगता है कि दवा है। तो हमने वो पता चला दवा खाई, और चूंकि हमने खाना खाया था अभी, और डकार जो खाना खाने के बाद हवा निकलती है पेट से वो नहीं निकली, और हमने तभी टैबलेट भी खा ली, और उसके बाद हमने पता चला डकार ली और डकार में वो टैबलेट जो खाई है वो पता चला वो आ रही है या उसका असर आ रहा है, तो हम घबराने लगते हैं कि दवा का कुछ साइड इफेक्ट है या कोई दिक्कत हो रही है। तो इसलिए खाना खाने के थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि हाँ अभी ठीक है, 15-20 मिनट हो गए, तो आप सादा पानी से इस दवा को खा सकते हैं, और कुछ भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसके लिए।
1: तो श्रोताओं, कृमि मुक्ति दिवस यानी डीवर्मिंग पर आज हमने स्कूली बच्चों के साथ चर्चा की, और चर्चा में आज हमारे साथ रही डॉक्टर पारुल शर्मा, जो जिला सामुदायिक प्रक्रिया प्रबंधक हैं स्वास्थ्य विभाग में, और कृमि पर बहुत सारी शंकाएं बच्चों की थी, उन शंकाओं का समाधान हुआ, बहुत सारे प्रश्न बच्चों ने पूछे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बच्चों के द्वारा पूछे गए। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आपने कृमि पर, कृमि मुक्ति दिवस पर आधारित जो जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और बच्चों के साथ जो जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: आप अभी सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पारुल शर्मा से ली गई भेंट वार्ता। विषय था नेशनल हेल्थ मिशन कृमि मुक्ति दिवस, और इस विषय पर इनसे बातचीत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे दो कलियां फिल्म के गीत को। आवाज़ें थी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा था साहिल लुधियानवी ने और संगीत दिया था संगीतकार रवि कुमार शर्मा ने। और अब साथियों, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

चुपके चुपके। आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत SD वर्मन का था। साथियों आइए सुनते हैं अभी ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में हमसाया फिल्म के इस गीत को। शहवान रिज़वी की इस रचना को धुन से संवारा था संगीतकार ओपी नैयर ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में दोपहर 1:15 से वनितावलोक कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण किया जाएगा। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फ़ोन करके, यदि आप इस पर फ़ोन करते हैं तो 0 कोड अवश्य लगाएं यहाँ का। और अथवा मोबाइल नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर नोट कर लें 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल, ये विषय कृपया ध्यान रखें और इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का समय कृपया ध्यान रखें दोपहर 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना भी लता मंगेशकर की आवाज़ में साजन फिल्म के गीत को। और साथियों, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। आज दोपहर 12:15 से कार्यक्रम वनता लोक में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में साथ होंगी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारा टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर

कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और बरसात के मौसम में होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बच्चों की उचित देखभाल के विषय में आप विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ के जवाब ले सकते हैं। और जैसे कि बरसात के मौसम में होने वाली जो सामान्य बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए आप पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। कार्यक्रम का समय कृपया ध्यान रखें 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। और साथियों अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे नितिन मुकेश की आवाज़ में फिल्म दरिया दिल के इस गीत को। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: गुलामी फिल्म में अभी आपने सुना था। इस गीत को लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की आवाज़ में लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं देवराज कृष्ण दीक्षित।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी,
3: प्यार है, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका।
3: जी हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका

0: बाय ओम।
1: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हम विपिन कुमार बोल रहे गाँव छोड़ी से।
0: विपिन जी, कार्यक्रम में स्वागत आपका।
1: और आप कैसे हैं सर?
0: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे। कार्यक्रम में कॉल लगा रहे, कई दिनों बाद लगी है आज कॉल।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी,
0: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी।
1: स्वागत है नेत्रपाल जी। कैसे हैं?
0: सर बिल्कुल सही हूँ।
1: बढ़िया। मौसम कैसा है?
0: मौसम सुहावना हो रहा है, बरसात आ जाती है कभी चली जाती है।
1: जी। और ठंडी हवाएं चल रही हैं।
0: हाँ सर, बिल्कुल ठंडी हवाएं बिल्कुल इस समय। तो
1: बताइए, आज ऐसे मौसम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है मेरा देश मेरा गांव।
1: जी
0: अटरिया में कोई चोर आया, भाभी दीपक जला।
1: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रपाल जी।
0: राधे राधे।
1: राधे।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: जी दीक्षित साहब बोल रहे हैं।
0: नमस्कार
1: राजगढ़ का प्यार भरा मीठा मीठा नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है। अपना परिचय दे
1: और
0: दीजिए।
1: जी आपका रेडियो मित्र सुभाषगर्ग आपसे बातें कर रहे हैं।
0: कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके कैसे मिजाज चल रहे हैं?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, मौसम तो बड़ा सुहावना है
0: जी
1: जी। देखिए एक बात कही जाती है ऐसी कि मैं उसके घर नहीं जाता और वो मेरे घर नहीं आता,
0: जी
1: इन बातों से कभी रिश्ता मर नहीं जाता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: देखिए दो भाई हैं तो दो भाई कहे जाएंगे, ये दो भाई हैं, लेकिन आना नहीं जाना अलग बात है।
0: जी
1: इंसान को हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। फरमाइश क्या रहेगी?
1: जी बात खुशरत गाना सुनने की तमन्ना लेकर आए हैं।
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं?
1: इनका नाम है आकाशदीप।
0: जी
1: दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, और सोए नगमे जाग उठे छोटो की सहनाई में।
0: लीजिए सुनवाते हैं गर्ग साहब आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साधुवाद देते हैं, प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे देवराज कृष्ण दीक्षित। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर, और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की युगल आवाजों में आदमी खिलौना है फिल्म का ये गीत। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से सवारा था नदीम श्रवण ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओ, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी आज 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी आज 10 अगस्त 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर और हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और आइए सुनिएगा कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल को फिल्म पद्मावत में, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। उदित नारायण की आवाज़ है, फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस बार सोमवार यानी आज 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी आज 10 अगस्त 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

आप सुन रहे थे उदित नारायण को फिल्म वीर ज़ारा में। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, वनिता लोक

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और उदित नारायण को फिल्म नो एंट्री में। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था अन्नू मलिक ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS।

कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश और शांत रहेंगे। इसी शुभ संदेश के साथ मैं दुर्गेश भास्कर करती हूँ सभी श्रोताओं का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। श्रोताओं, आपके संदेश हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहला संदेश हमें मिला है बटिंडा रोड से, मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लक्की तानिया का। और कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़ चुके हैं, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, गोविंदपुरा अहमदनगर से, जुनेद मुजाबर, सबीहा, मिखाइल और जैनेब का संदेश मिला। दीवाना रेडियो लिसनर क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति गमरिया जमशेदपुर से लिख रहे हैं, विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नाहपकर, नारायण इंग्ले, सोपान, आशीष, बसंतराज। कार्यक्रम में एक और श्रोता जुड़े हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयबीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हमें संदेश मिला है सुपचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा का। आप हैं हरसा रोमकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रोमकार, रुचिकर, राहटगांव कैंप, अमरावती महाराष्ट्र से। खंडवा से हमें संदेश लिखा है ममता बमारकंडे, संजय बेबी किट्टू ने। कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन, मयंक का संदेश मिला। छत्तीसगढ़ से नितेश, दुर्गा प्रसाद, पारल, पराग, पूनाराम, कृष्णा देवांगन। अगले संदेश करता है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल मोहम्मद, उमर, राजेंद्र कटारे। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकल, रतनमाला, आराध्या कुमकुम। हीरामणी वर्मा, पारसमणी, पुष्पेंद्र ने उखेलाल छत्तीसगढ़ से, बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख, डॉक्टर दवीरुल हसन गंज डुंडवारा यूपी से, अजय देव तामुरिया, तुषार डॉली, बेबी पूजा, राधिका प्रभा तामुरिया हमें संदेश लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश करता है झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता कीशु, अर्णव सत्यम, बोहड़ा काशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल देवांशी उत्तर प्रदेश।

0: बुंदेलखंड से सप्तरंग श्रोता परिवार कुम्हारगली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत ऋषिकेश जीविका सानिका पुनावली पुणे से हमें संदेश लिखा है अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा ने और आइए अब आपको सुनवा देते हैं आप सभी की फरमाइश का कार्यक्रम का ये पहला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म ईश्वर से नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं शब्द रचना अनजान की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: चार सप्तक मंदिर सप्तक

0: ही दुख है ओ मितवारे,
1: आगे सुख है।

इस गीत को सुनना चाहा था रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना और हर्षित ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा गौरव गरिमा ने। कार्यक्रम में अगले संदेश करता है रमेश आनंद, श्यामला प्रकाश त्रिपुतई कर्नाटक स्टेट से। अगले संदेश करता है कमल बालूजा मधु बालूजा सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक टिल्ला से। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश मेंडी, सौरभ साइना और निवान का संदेश मिला। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, रानी, मेनका पासवान, श्वेता, स्वाति, सुशांत, गोदावरी देवी, क्रांति सिंह, प्रदीप कुमार, राज बहादुर, शंभू साह, करिया गुप्ता, मधुबनी बिहार से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिसानी और निमित आहूजा का संदेश मिला। छत्तीसगढ़ चूड़ी वाली लाइन मुंगेली से मोहम्मद इफ्ताक खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कोसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल। आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन, अमन पाराशर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। नरेंद्र नादेड़ महाराष्ट्र से नारायण हागे, दयानंद ओमकार गायबकड़, साई गायबकड़। शेख नजमा बेगम, मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा, माहिरा शेख, नोमान सुलेमान शेख मोहम्मद हमें संदेश लिख रहे हैं सोपारा मुंबई से। जजर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक का संदेश मिला। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है लोकेश जोशी, पायल, बेबी बेदेही, हंसिका, अंकिता जोशी, हरमिंद।

इंदर सिंह चावला, भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सौंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से, फनेश कुमार सावित्री, मोहित देविका गजेंद्र, हिमांश कुमार चंदन, खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर गौरव का संदेश मिला। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की, फिल्म का नाम है संतोष, शब्द रचना संतोष आनंद की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत की फरमाइश हमसे लिख भेजी थी अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, असद अरहाम और समस्त हाशमी परिवार ने। इसी गीत को

सुनना चाहा था जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया आदर्श सार्थक आलौकिक ने। समस्ती बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षक और जयश्री। कार्यक्रम में अगला संदेश कर्मा चौक लोहरी डीह से यशवंत साहू रमेशिया हर्ष और अंश। अगले संदेश करता है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशाद सबस्ती मोहम्मद नसीब पलक लुमना और यश मंसूरी। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार अविका सानू अर्चना कोयस्ते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने करिश्मा अविका और सायशा। कार्यक्रम में अगला संदेश महाराष्ट्र से संतोष खंडसे और विनोद खंडसे ने भेजा है। एक और श्रोता हमसे जुड़े जैन मंदिर वाली कुरावली गली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ। अगले संदेश करता है लाल चलुत्रा सुनीता शम्मी रजनी आकाशदीप अनहद पोत्रा गुरशद तारन पंजाब से प्रवीण सोनी पूजा पायल जगदीश गुजरात गांधीग्राम से। संजय ढींगिया नमन और अपार का संदेश मिला है बागपत उत्तर प्रदेश से। अगले संदेश करता है दादा बाबू गिरीढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान साइमा हसन बाबू मिफ्रा बेबी चाहत और सादिया। बाइटफील्ड बेंगलुरु से हमें संदेश लिख रहे हैं भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से। संदेश लिखा है महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल ने। रज्जक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान इफरान खान हमें संदेश लिख रहे हैं राजस्थान से। एक और श्रोता हमसे जुड़े हैं कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित कुमार हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। आप हैं शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल शंभु प्रसाद अर्णव राखी दुर्गेश्वरी तृप्ति एताला महाराष्ट्र से। गुलमोहर रेडियो श्रोता संघ संत गाड़वे नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से अनीता रमेश राव चिरंजीव लोकेश कुमार गोठोड़े का संदेश मिला। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल ईसान और पूजा परिहार। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लोफर से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की शब्द रचना आनंद बख्शी की संगीत से संवारा है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत को सुनना चाहा था उत्तम कुमार बघेल रुखमली साहिल भारती लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। इसी गीत की हमसे फरमाइश लिख भेजी थी प्रकाश जैन लातूर से, नादेड़ से, संगीता जैन सूरज पीआर जैन ने। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें लिख भेजा है सेक्टर 5 सूर्य नगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित बेबी और हिमांश ने। अगले संदेश करता है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठर से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल बेबी सी या जालना शहर से, सोमनाथ, गीता जाधव, सोम प्रकाश, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता। मधुबनी एक्सटेंशन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्रा भाई रुद्रा, स्वर्णिम श्वेता श्रीटी, चुलबुल रंगीली, विजय सागर, फूलो रानी रागनी, घनश्याम राजा बाबू और अजय राणा। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सौभाग्यवती उषा पाटिल का संदेश मिला। पंडरिया छत्तीसगढ़ से हमें संदेश लिख रहे हैं चांदी चौक से पवन कुमार, प्रभा, लक्की, बिक्की, नानू, रविंद्र, रोनक, बंडिंग खेड़ा पंजाब से मिट्टू, टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। और आइए आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत सुरेश बाड़ेकर और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं रेखा माहौर।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या?
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: हम आकाशवाणी के मथुरा।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। ब्रज लोक गीत आपको सुनवाएंगे, उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी आज 10 अगस्त 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बरसात के

मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके या हमारे मोबाइल नंबर 9412-2255-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। श्रोताओं, यदि आप बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम, वायरल बुखार, फीवर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पेट का संक्रमण, स्तनपान में सावधानी, कान में संक्रमण आदि समस्या का समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी आज 10 अगस्त 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोक गीतों का। आज की कलाकार है रेखा माहौर, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का अगला ब्रज लोक गीत।

इसी ब्रजलोकगीत के साथ ब्रजलोकगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे ब्रजलोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार थी रेखा माहौर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान

0: केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज का विषय होगा बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम। फिल्म संगीत सुना जा सकेगा अपराह्न 1:45 पर। NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर।

0: युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी सुना जा सकेगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा वीवी गिरी जयंती विषय पर। इसके अलावा आज की बात होगी सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वरचित कहानी चांदनी रात की यादें। कहानीकार होंगी रेखा रानी चौधरी। युवा साथी इसी कार्यक्रम में फिल्म संगीत का आनंद भी ले सकेंगे। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम ब्रजवार्ता बेरिन बरसात आप सुनेंगे संध्या 6:15 पर। वार्ताकार होंगे कोमल प्रसाद शर्मा। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा पशु पोषण में खनिज लवण। इसके अलावा चर्चा होगी खेतों में वर्षा जल संरक्षण विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता घर तथा फार्म पर कैसे बनाए गोबर गैस प्लांट। वार्ताकार होंगे गोपाल सिंह। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुना जा सकेगा संध्या 7:31 पर। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8:00 जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा का समय रहेगा रात्रि 8:20 पर। ये कार्यक्रम हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुना जा सकेगा रात्रि 8:30। कार्यक्रम न्यूज एट 9 आप सुनेंगे रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। पब्लिक स्पीक सुना जा सकेगा रात्रि 9:30 पर जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 10:00 जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम?

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
1: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम है फोन इन हेलो सहेली। आज का विषय है बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा।

0: हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम। हम बागों की हरियाली हैं, चिड़ियों के चहकारे हम। हम नदियों की कलकल छलछल, नई सुबह के तारे हम। हम में है फूलों की खुशबू, झरनों का मधुमय संगीत। हम में रंग भरे तितली के, हम प्रकृति के हैं नवगीत। नमस्कार साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ आशु रावत, और मेरे साथ है मेरी दोस्त, मेरी सखी सहेली
1: दुर्गेश भास्कर।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: बहनों, बच्चों के ही सहारे घर आंगन सब महकता सा रहता है हमारा। अगर बच्चे ना हो घर में तो एक मायूसी सी, एक शांति सी घर में बनी रहती है। हालांकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत उधम भी मचाते हैं, बहुत उर्दंगी होते हैं, उत्पात मचाते हैं, और कभी कभी लगता है कि अगर थोड़ी देर के लिए स्कूल चले जाएं या कहीं बाहर चले जाएं तो शांति हो जाए, लेकिन वो शांति भी फिर अच्छी नहीं लगती। और क्योंकि बच्चों से ही घर महकता है, बच्चों से ही हमारे घर के दुनिया भर के काम होते हैं जो हमारे लिए हमें बिजी रखते हैं, लेकिन जब वही बच्चे किसी परेशानी में पड़ जाते हैं या कोई उनको बीमारी लग जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है शरीर में, और वो जब कुछ कह नहीं पाते तब ज़्यादा परेशानी होती है। बड़े जो होते हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाते, और छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता तो वो बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से कुछ ज़्यादा कह नहीं पाते, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, वो समझ लेती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ साथियों ऐसी होती हैं कि हम उनको नहीं समझ पाते हैं, खासकर इस तरह के मौसम में, यानी कि बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में क्या होता है कि सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां बच्चों को लगी रहती हैं, खासकर बच्चों की जो नोज़ से पानी बहना और हर समय शरीर में एक गर्माहट रहना, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जो बच्चों को एक इरिटेट सा, एक उलझा हुआ सा, परेशान सा, चिड़चिड़ाहट सा रखता है। तो ऐसे में कैसे उनकी देखभाल करी जाए, बारिश के मौसम में उनका कैसे उचित रखरखाव करा जाए, इसी के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो आप सभी डॉक्टर साहब से अपने बच्चों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं या उनकी उचित देखभाल कैसे करी जाए, क्योंकि खासकर जो हमारी नई माएँ होती हैं, पहले पहले बच्चे के बारे में उन्हें समझ नहीं आता, तो उनकी कैसे देखभाल करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ये क्योंकि फ़ोन इन कार्यक्रम है और हमारे फ़ोन नंबर हैं जिनको कि आप फ़ोन करके हमसे, हमारे डॉक्टर साहब से अपनी बातें कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2523135 और मोबाइल नंबर है 9412225575। और जो श्रोता हमारे बाहर से सुन रहे हैं, मथुरा से,

0: वो कोड लगा सकते हैं 0565। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी दुर्गेश।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर देखने और सुनने में आता है कि बच्चों को सर्दियों में बचाना चाहिए या बच्चों की देखभाल हमें गर्मियों में करनी चाहिए। बात तो एकदम सही है, लेकिन आप ये बताइए, इस मौसम में, जो ये मौसम चल रहा है बरसात का, इस मौसम में बच्चे जल्दी बीमार क्यों पड़ जाते हैं? क्या हवा में नमी बढ़ना इसका मुख्य कारण है?
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। इस समय हवा में नमी बढ़ जाती है, मौसम एकदम ठंडा होने लगता है, मौसम में बदलाव होता है। इस वजह से हर जगह हमारे वातावरण में, हवा में, जल में, सॉइल में कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं।
1: जी
2: और हमारे बच्चे ना तो गर्मी में हम बच के रहते हैं, सर्दी में भी हम बच के रहते हैं। इस मौसम में जब चेंजेस हो रहे हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते, ना बच्चे समझ पाते, और हम बहुत जल्दी उन इन्फेक्शंस को कैच कर लेते हैं।
1: ये कारण है इसका।
2: जी मैम जी।
0: तो डॉक्टर साहब, इनकी, जैसे आपने बताया कि इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो इसकी इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
2: मैम इसके लिए होलसम मैं आपको चार पांच कैटेगरीज में उपाय बताऊंगी।
0: जी
2: सुनिएगा माताएं बहनें, सबसे पहले हमें कपड़ों का सही चयन करना चाहिए।
0: जी
2: पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं बच्चों को, ताकि वो सर्दी गर्मी के फ्लक्चुएशन का शिकार ना हो। सूती और ढीले कपड़े हों, ताकि पसीना आए तो वो सूख जाए एंड कोई फंगल इन्फेक्शन उनमें ना हो। कपड़े अगर गीले हो गए हैं तो तुरंत हमें उनको बदलना है। एंड कपड़ों को अभी धूप निकले तो ज़रूर सुखाना है, और नहीं सूख पाए तो प्रेस के ज़रिए उनको ड्राई करके, डिसइन्फेक्ट करके बच्चे को पहनाना है। दूसरी चीज़ आती है घर और आसपास की सफाई।
0: जी
2: कहीं भी पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ठहरे हुए पानी में ही डेंगू के मच्छर
1: मच्छर
2: पनपते
1: पनपते
2: हैं।
1: हैं। जी बिल्कुल।
2: कमरों में वेंटिलेशन, आजकल एसी के प्रयोग के साथ और छोटे छोटे कमरों के साथ हम वेंटिलेशन वाली चीज़ को बिल्कुल भूल गए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो सीलन और वेंटिलेशन से हमारे बच्चों को एस्थमा, डस्ट माइट एलर्जी, जैसे कहते हैं ना, हल्की सी सर्दी हुई और बच्चे की पसली चलने लग गई, आवाज़, सांस, छाती से साए साए की आवाज़ आ रही है, तो इसका एक कारण है कि जो इन्फेक्शन है वो ट्रिगर हो जाता है हमारे डस्ट माइट से।
1: जी
2: तो हमें रोज़ दिन के समय खिड़कियों को खुला
1: खोलना
2: रख के,
1: जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी चीज़ है कीटनाशक। हम शाम के समय और सुबह भी कपूर का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस हम एक अच्छा मॉस्किटो लिक्विड रिफिल ले सकते हैं।
0: मतलब डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं कपूर जला के, कि मतलब रख दें कहीं ऐसे?
2: बिल्कुल, बहुत सारे ना इन्फ्यूजन्स आते हैं, उसमें
0: जी
2: आप भीमसेनी कपूर और कोई अपना पसंदीदा एसेंशियल ऑयल डाल के यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी
1: जला के,
2: इफेक्टिव।
0: पूरे घर में दे दें
2: जलाना भी
0: उसको,
2: नहीं है उसको, आप
1: रख लें।
2: इलेक्ट्रिक में रिफिल की तरह लगा दीजिए।
0: जी
2: जी
0: जी
2: जी
0: बिल्कुल।
2: कपूर एकदम से सबलाइम होगा और हमारे को अच्छा इफेक्ट देगा। बच्चों की जो त्वचा है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो उस पर हमें डायरेक्टली कोई क्रीम नहीं लगानी चाहिए। अगर लगा भी रहे हैं तो फिर डॉक्टर से हमें राय लेनी ज़रूरी है।
1: जी
2: अच्छा,
1: जी
2: तीसरी चीज़ आती है हमारा खान पान और पोषण। पहली बात तो बहुत सिंपल, इस समय हमें प्यास नहीं लगती, लेकिन हमारा बॉडी जो 60% से ज़्यादा पानी से बना
1: बना
2: हुआ है,
1: हुआ है।
2: इसको
1: जी
2: बहुत पानी चाहिए।
1: जी
2: तो
1: जी
2: आप बार बार जब भी किचन में जाएं, थोड़ा सा पानी अपने नन्हे
1: बच्चों
2: मुन्ने के
1: को
2: लिए
1: पिलाते
2: ज़रूर
1: रहें।
2: लाएं। हाँ, पानी से याद आया।
1: हाँ, पानी मैं पूछना
2: हाँ
1: चाहूंगी, पानी
2: जी
1: कैसा पानी दें बच्चों को?
2: बिल्कुल। देखिए, आरओ वाटर भी अगर है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, नीचे जो पृथ्वी के नीचे की जो पाइपलाइंस है ना, वो भी आपस में लीकेज की
1: जी
2: वजह से
1: जी
2: कंटामिनेट हो जाती हैं। तो हमें आरओ वाटर को भी 10 to 20 मिनट्स तक बॉईल करके फिर हमें यूज़ करना चाहिए,
1: बॉईल करके,
2: ताकि
1: ठंडा करके रख लें,
2: जी
1: फिर वो बच्चों
2: जिद्दी,
1: को देते
2: हाँ
1: रहें।
2: जिद्दी कीटाणु भी उससे ख़त्म हो जाते हैं।
1: जी।
2: दूसरी चीज़, बाहर का खाना, चाट पकौड़ी, जूस, ये
1: हाँ,
2: सब,
1: खुलेगा तो इस समय
2: क्योंकि
1: बिल्कुल ही ना लिया
2: हाँ
1: जाए तो ज्यादा
2: कीटाणुओं को
1: बेहतर
2: भी ये
1: है।
2: पसंद है। एंड साथ में
1: एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर
2: जी
1: साहब।
2: जी
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल
1: दुर्गेश।
2: बिल्कुल
1: हेलो।
2: जी।
0: हेलो सहेली
1: हेलो
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी,
2: राधे राधे जी।
1: नाम बता दीजिए।
2: मैं बिसावर से विजय कुमार कश्यप बोल रहा हूँ। राधे
1: जी प्रश्न पूछिए अपना।
2: को, हमारे घर में बच्चे हैं, एक तो 5 साल का, एक 6 साल का बच्चा है मेरे घर में।
1: अच्छा, क्या
2: तो
1: परेशानी है उन्हें?
2: परेशानी ये है कि देखो, बारिश में वो भीगते हैं, सर्दी जुकाम नहीं जाता उनका।
1: जी
2: आप बताओ दवा हमें।
0: अच्छा, आप डॉक्टर साहब से बातें करिए, बात करिए, अपना
1: जी
0: सवाल
1: डॉक्टर साहब ये
0: पूछिए।
1: जानना चाह रहे हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है इनके बच्चे जब बारिश में भीगते हैं तो?
2: जी विजय कक्कर जी, आपके जो दोनों 5 और 6 वर्ष के बच्चे हैं, जब भी बारिश में खेल के आए, तो उसके बाद उनको तुरंत सादा साफ पानी से नहला दें। उनके सर अच्छा और पूरे शरीर को अच्छे से साफ तौलिया से पोंछ के पूरी बाजू के सूती कपड़े पहनाएं, चाहे तो मोजे और हल्का सा टोपा भी डाल सकते हैं। एंड अच्छा

0: हाँ, और साथ में उनके सर और हाथों को अच्छी तरह से पोंछ दें। फिर उसके बाद आप थोड़ा गुनगुना पानी, लौंग, होम रेमेडीज, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। जो नाक बहती
1: अच्छा
0: रहती है उसके लिए आप सुबह शाम सादा पानी की भाप दे सकते हैं बच्चे को, साथ में।
1: नहीं,
0: हाँ
1: ऐसा डॉक्टर साहब,
0: हाँ हाँ
1: बच्चों की नाक नहीं बहती है, जुकाम हो जाता है बस।
0: हाँ तो उसमें भी सादा पानी की भाप और नमक के गरारे, ठीक है? इतना करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा भाई साहब।
1: अच्छा, चलो
0: आपने प्रश्न किया,
1: ठीक है,
0: आपका बहुत बहुत
1: जी जी
0: धन्यवाद। जी,
1: राधे राधे।
0: राधे राधे। जी डॉक्टर साहब, जी बताएं, इस बरसात के मौसम में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां आम हो जाती हैं?
2: देखिए, इस मौसम में सबसे पहले तो हमको सर्दी जुकाम, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, कक्कर साहब ने, सर्दी जुकाम, हर सर्दी जुकाम निमोनिया नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पेट से जुड़ी परेशानियाँ, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, पीलिया,
0: जी
2: टाइफॉइड। फिर होता है हमको इन्फेक्शंस, कभी
0: जी
2: कभी
0: जी
2: हमको यही जो कीटाणु होते हैं, ये हमारी ब्रेन इन्फेक्शन, बॉडी एक, फिर हमारी कीड़ों से जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया,
0: जी
2: चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां होती हैं।
0: मैडम, एक फोन ले लेते
2: जी
0: हैं।
2: बिल्कुल।
0: हेलो,
3: लगता है हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है उनसे। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आप बता रही थी कि इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, तो घरेलू कोई ऐसा नुस्खा है कि उस इन्फेक्शन से बचा जा सके? मतलब जैसे गर्म पानी वगैरह तो आपने बताया बॉईल करके पीना चाहिए,
2: हाँ,
3: लेकिन इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे होते हैं नहीं कुछ ज़्यादा कह पाते, और कभी कभी ऐसा होता है ना चिड़चिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो पेट दर्द की भी शिकायत जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वो बताते हैं, तो ऐसे में कैसे समझें कि उनको दिक्कत क्या है? और
2: ज्यादातर बच्चा रोता है, कई बार हमें लगता है कि पेट तना हुआ है, पेट छूने पे दिक्कत हो रही है,
3: जी
2: बच्चे को प्रॉपर मोशन नहीं हो रहा है, बच्चे का उल्टियाँ, उल्टियों की वजह से बच्चे का मुंह सूख रहा है।
3: जी
2: ऐसी स्थिति में हमें बच्चे को गुनगुना खाना देना चाहिए जो आराम से पच जाए, तरल पदार्थ जैसे पतली खिचड़ी, मूंग की दाल का पानी,
3: जी
2: और कुछ दवाइयाँ जो डॉक्टर की सलाह से हम दे सकते हैं।
3: बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले लेते हैं। हाँ
2: जी
3: जी हेलो
2: जी
3: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आप हमारी बात सुन पा रहे
1: हेलो,
3: हैं? हेलो जी, नाम बताइए अपना।
1: नमस्ते, हम
3: नमस्ते
1: विपिन कुमार बोल रहे हैं सोनी जी।
3: जी विपिन जी,
1: हम ये पूछना चाह रहे हैं छोटे बच्चों का आहार कैसे बढ़िया बनाएं।
2: जी
3: जी
2: डॉक्टर साहब, जी विपिन जी, कृपया स्पष्ट करें, आपका बच्चा कितनी आयु का है?
3: इनसे संपर्क टूट गया है, आप
2: कोई बात
3: जल्दी
2: नहीं, मैं
3: बच्चे के लिए
2: आपको
3: कर
2: बताती
3: दीजिए।
2: हूँ। जन्म से लेकर 6 महीने तक केवल माँ का आहार, माँ का स्तनपान दें, वो सर्वश्रेष्ठ है, विदाउट किसी इन्फेक्शन है। जब बच्चा हमारा 6 माह का हो जाता है तो हमें धीरे धीरे तरल पदार्थ जैसे चावल का माड़, दाल का गाढ़ा पानी, फिर उसके बाद हमें सूजी का खीर, उबला हुआ आलू या घिया वगैरह मैश करके, बॉईल
3: अच्छा
2: करके बनाना चाहिए।
3: जी
2: फिर हमें धीरे धीरे आहार को बढ़ाते रहना चाहिए, दूध पे हमें कम फोकस करना है, बच्चे चाय, बिस्किट, चुरी, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। 1 वर्ष तक बच्चा माँ जितना खाना खा ले, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, हर 2-2 घंटे में खाना खिलाना है। बच्चा जो भी खाना चाहे आप उसको घर पे बनाकर दे सकते हैं, जिसमें मैदा का उपयोग नाम मात्र का, चीनी और सॉल्ट मिनिमम होना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रही थी कि डेंगू और मलेरिया जो होती हैं ये परेशानी बहुत खतरनाक हो जाती हैं कभी कभी, है ना? मलेरिया का तो चलिए हो जाता है मैनेज, लेकिन डेंगू बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर
2: जी
3: देता है, कभी कभी जान तक पे बनाती है उनकी,
2: बिल्कुल
3: तो
2: बिल्कुल।
3: डेंगू से किस तरह से बचाव रखना चाहिए हमें?
2: देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाने हैं बच्चों को,
3: जी
2: कीटनाशक का प्रयोग करना है घर में, आसपास में ठहरा हुआ पानी नहीं रहने देना है। अगर हमें लगता है कि डेंगू के लक्षण ये हैं कि बच्चे को तेज बुखार है,
3: जी
2: आंखों के पीछे दर्द है, एंड कभी कभी जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो पेट में दर्द, साथ में त्वचा पे लाल लाल चकते, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द रहता है,
3: जी
2: पेशाब भी कम आता है, इस स्थिति में हमको उसको केवल पैरासीटामोल की डोज जो डॉक्टर ने बताई है वो देनी
3: देनी
2: है,
3: है।
2: पानी बहुत सारा देना है,
3: जी जी
2: पानी एंड तरल पदार्थ, फ्रूट्स, इनसे काफ़ी रिकवरी हो जाती है, और
3: फ्रूट
2: रेस्ट
3: जूस,
2: कराना
3: जूस
2: है।
3: वगैरह जो भी
2: जूस
3: लिक्विड।
2: को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते,
3: जी
2: लेट इट बी स्मूदी, स्मूदी मतलब पका हुआ हल्का सा होना चाहिए, है ना?
3: जी जी
2: हाँ, प्लेन जूसेस आर नॉट प्रेफर्ड।

0: हेलो
1: जी
0: हेलो
2: हेलो,
0: जी हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मैम, डॉक्टर
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: साहब आपको भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार नमस्कार।
2: मैं जितेंद्र दोसार से बोल रहा हूँ, ग्राम मऊ तहसील खैर जिला हरिगढ़ यूपी से।
1: जी योगेंद्र जी
2: मेरे 3 सवाल हैं।
1: जी बताएं।
2: पहला सवाल तो मेरा यह है, जैसे किसी का स्तन का कैंसर है,
1: जी
2: क्या वो माता बच्चे को दूध पिला सकते हैं या नहीं पिला सकते, पहला। और दूसरा सवाल मेरा यह है, एक भ्रांति है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाती है माता, क्या उनकी खूबसूरती पे असर पड़ता है? आप बाल विशेषज्ञ, आपसे बढ़िया कौन बता सकता है।
1: जी बिल्कुल।
2: और तीसरा सवाल मेरा यह है, जैसे बच्चे पानी में बारिश का मौसम का आनंद लेते हैं, फिर कपड़े भीग गए, फिर सूख गए, ऐसे करते हैं, एक बार नहीं दो दो चार चार बार नहाते रहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? फिर उल्टी दस्त लगते हैं या डायरिया हो गया या निमोनिया हो गया, इसके क्या उपाय किया जाए? इन पर प्रकाश डालें मैम, नमस्कार।
1: हाँ योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ों पे हमारा नज़र करी। पहली चीज़, अगर माता को स्तन का कैंसर है तो ऐसा नहीं है, जो दूध है वो तो अंदर डक्ट्स में बनता है। तो अगर डॉक्टर राय देते हैं इनिशियल स्टेजेस में, जब माँ कंफर्टेबल है तब वो बच्चे को दूध पिला सकती है। दूसरी चीज़, माता जो है दूध पिलाती है अगर बच्चे को, आपने बिल्कुल सही कहा, समाज में बहुत भ्रांतियाँ हैं, बच्चे को तो जो फायदा होगा सो होगा, लेकिन माँ को क्या फायदा होगा? एक तो कोई प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती, केवल अपना साफ सफाई का ध्यान रखो, बच्चे को कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप दूध पिला सकते हैं, दूध एक संपूर्ण आहार है। पहली चीज़ माँ को कंफर्टेबल, सेकंड जो है माँ को जो है एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन नहीं होगा। ये देखा गया है कि जितना भी वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, वो ऐसी माताओं में कम होते हैं जो बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं।
3: हाँ, क्योंकि
1: हाँ
3: वेट बढ़ जाता है डिलीवरी के
1: एग्जैक्टली
3: बाद में, तो वो उसके लॉस
1: हाँ
3: करता है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: ब्रेस्ट फीडिंग।
1: माताओं को इस चीज़ से बचाने के लिए मैं कहूँगी कि हमें समाज में इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम्स लगाने चाहिए और माताओं को हेल्प करना चाहिए, मेंटल लेवल पे भी उन्हें सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो बच्चे को अपनाने से झिझके नहीं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल। तीसरी चीज़ है बारिश का मौसम। देखिए ये तो हमारे नन्हे मुन्नों का हक है, बारिश में खेलना मज़े लेना, हम ये कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, योगेंद्र जी को बताया था कि बच्चे को तुरंत फ्रेश वाटर से नहलाएं, एंड उसके बाद चाहें तो उसको कोई गर्म तेल लगा दें, सरसों का तेल या तिल का तेल, एंड फुल बॉडी पे क्लोथ्स पहना दें और थोड़ा गुनगुना
0: गुनगुना पानी
1: खाना।
0: पिला दे,
1: बिल्कुल
0: पानी।
1: हाँ, थोड़ा भुना बादाम वगैरह। एंड अगर उल्टी दस्त होता है तो थोड़े बहुत जो मैंने अभी होम रेमेडीज बताई उनसे हो जाएगा। अगर निमोनिया जैसा लगता है, हर सर्दी निमोनिया नहीं होती, हम गर्म पानी का भाप और हॉट सूप से इसको मैनेज कर सकते हैं।
0: जी
1: हेलो जी
4: हेलो।
0: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: हाँ राधे राधे।
0: राधे राधे
4: हाँ, मैं ये कह रही थी, मेरा बेटा है
0: जी
4: 14 साल का, तो
0: जी प्रश्न पूछिए।
4: उसको ना मैम हमेशा ना कफ निकलते रहता है।
3: कफ
0: अच्छा।
3: आता रहता है उसको, 14 साल की
4: और ना
3: उम्र है। जी डॉक्टर साहब।
4: उसकी वजह से नाक वगैरह भी चलती रहती है, और ना वो स्विमिंग करता है मैम।
3: अच्छा अच्छा जी।
4: हाँ
1: देखिए अच्छी बात है, स्विमिंग इज वेरी गुड स्पोर्ट्स, लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को ज़्यादा सर्दी जुकाम के इन्फेक्शंस होते हैं, तो क्या ताकि स्विमिंग पूल की हाइजीन को आप प्रॉपरली इंश्योर करें, प्रॉपर क्वालिटी चेक्स होते रहें वहाँ पे।
3: क्योंकि सब बच्चे उसमें करते हैं
1: बिल्कुल
3: स्विमिंग, और फिर वो
1: बिल्कुल
3: केमिकल भी डालते हैं
1: हाँ,
3: उसमें, तो
1: एक
3: नहीं
1: बार
3: सूट
1: आप
3: करता
1: डॉक्टर
3: है।
1: से बच्चे का स्टेथोस्कोप के द्वारा एग्जामिनेशन जरूर करवाएं, नाक का और छाती का चेकअप जरूर कराएं, और बाकी जो घरेलू उपचार है उनको करें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल पूछा।
0: डॉक्टर साहब, एक अनुराधा सेहाना से मथुरा से हमारे पास प्रश्न आया है व्हाट्सएप
1: हाँ।
0: संदेश के माध्यम से।
1: जी जी
0: बच्चे के पहले दांत निकले हैं तो क्या करना चाहिए?
1: अच्छा चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, सबसे पहले तो मिठाई बांटे है ना अनुराधा जी। अभी बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है, तो कोशिश करें कि उसके हाथ एंड जितनी भी आसपास उसके टॉयज़ हैं वो सब अच्छे से साफ हों। फिर हमारे बच्चे को ना ये बार बार हाथ डालने से दस्त हो जाते हैं,
0: वो इन्फेक्शन का ही कारण है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय हमारे बच्चे को कम से कम दिन में 2-3 बार अच्छे से खाना खिलाएं, केवल दूध पे फोकस ना रखें।
0: जी, इनका
1: जी
0: एक और प्रश्न है।
1: हाँ
0: 6 मंथ का ही बेबी है इनका, दूध के अलावा खाने में क्या क्या दे सकते
1: जी,
0: हैं?
1: मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, दाल का गाढ़ा पानी, सब तरह की दालें प्रयोग करें, खाना इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच पलटने पर आसानी से गिरे नहीं, साथ में चावल का माड़, किसी भी चीज़ का आप हलवा बना सकते हैं दूध में,

0: या काशी फल, ये रेनी सीजन के हिसाब से भी बहुत अच्छी सब्जियां हैं। इनको मैश करके बॉईल करके दें एंड कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं।
1: ठीक है मैम, 6 मंथ के बच्चे को पानी कितना दिया जाए?
0: अगर मैम आपको लगता है कि उसने अच्छे से खा लिया है तो हम उसको 1-2 चम्मच अलग से पानी दे सकते हैं, क्योंकि वो दूध पी रहा है माँ का, प्लस खाने में भी हम पानी दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं पिलाना है।
1: जी हेलो,
0: जी
1: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्ते, हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए।
2: सर मैं सर पालीखेड़ा से सियाराम बोल रहा हूँ सर।
1: जी
2: तो सर ये जो है हमारी एक बच्ची है नातनी 11-12 महीने की, उसको दांत निकाल रही है तो उसे सर फुंसी सी है शरीर में, खुजली सी।
3: अच्छा, मतलब 11-12 महीने की बच्ची है आपकी, उसके शरीर पर दांत निकलते समय फुंसियाँ सी हो रही हैं?
2: जी हाँ, दांत भी निकाल रही है सर वो।
3: जी जी डॉक्टर साहब,
0: कितने समय से तो है फुंसियाँ सियाराम जी बिटिया को?
2: तो फुंसी तो सर करीब अभी हमारे पास तो अभी 1 माह होने जा रहा है, इससे पहले भी थी उनसे खुजली टाइप। अच्छा। की माँ को भी है और बच्ची को भी है सर।
0: अच्छा, माँ को भी है। देखिए भाई साहब, अगर ये जो रैशेज हो रहे हैं ना, इनका दांतों से कोई संबंध नहीं है, ये एक बीमारी होती है। जैसे बालों में जुएं हो जाते हैं, वैसे माँ और बिटिया को दोनों को शरीर के जुएं हो गए हैं। ये दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है, लेकिन हो जाते हैं। आप डॉक्टर को दिखाएं।
2: ठीक है सर।
0: जी जी,
1: आपने फोन किया, आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में बच्चों को बचाए रखें, सही सलामत रखें, इसके लिए कोई वैक्सीनेशन होती है क्या?
0: जी बिल्कुल, हमारा जो मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। 12 बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। गलघोंटू, काली खांसी, ये जो बीमारियां हैं, फ्लू, वैक्स फ्लू।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, उम्र क्या होनी चाहिए मतलब बच्चों की?
0: देखिए टीके तो शुरू हो जाते हैं जन्म से ही।
3: जी जी।
0: फिर उसके बाद ये DPT वाला पेंटावैक का जो टीका होता है वो लगता है 6 हफ्ते पे।
3: जी।
0: अगर कोई टीका छूट जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई टीका छूट जाता है तो वो आगे भी कैचअप वैक्सीनेशन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें रोटा वायरस, प्लीज आप कार्ड्स में चेक कर लीजिए माताएं, बच्चे को रोटा वायरस का टीका, निमोनिया का टीका और पेंटावैक के टीके, खसरे का टीका लगे हुए हैं कि नहीं, और नहीं लगे तो आप लगवाएं, बिल्कुल लगवाएं।
3: जैसे डॉक्टर साहब किसी का छूट गया, बच्चा बड़ा हो गया, 14-15 साल का, फिर उसमें हम कुछ कर सकते हैं?
0: हाँ, देखिए उस टाइम जो टीकों का प्रोफाइल थोड़ा बदल जाता है, लेकिन डेफिनेटली उस वक्त जो टीके लग सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, बूस्ट्रिक्स, ये सब टीके भी लग जाते हैं मैम।
3: अच्छा, जैसे आपने अभी बताया मिशन इंद्रधनुष, उसमें कितनी उम्र तक के बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाता है?
0: उसमें 14 से 16 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन है।
3: जी,
0: साथ में माताओं का भी है ना, प्रेगनेंसी वाला, वो एक अलग एरिया आ जाता है।
1: हेलो
0: जी,
4: हेलो,
1: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार मैम
1: जी, अपना परिचय दे दीजिए।
4: मैं मोहम्मद सलीम, औरंगाबाद मथुरा।
1: जी प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से अपना।
4: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: जी नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मेरी एक नातनी है।
0: जी जी।
4: जो करीब करीब 6 साल की है।
0: जी।
4: उसके ऊपर के 3 दांत टूट गए।
0: अच्छा।
4: और वो कम से कम 6 महीने हो चुके और दांत नहीं आ रहे उसके।
0: एक तो देखिए कैल्शियम की कमी हो सकती है, दूसरा एक बार आप एक दंत रोग चिकित्सक को दिखा के प्रॉपर तरीके से राय लें।
1: हाँ,
0: दंत रोग चिकित्सक को दिखा के प्रॉपर तरीके से राय लें, दांत ना आने का कोई कारण स्पेसिफिक होगा तो वो जांच करके बता पाएंगे बेहतर से।
3: डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी बता रही थी कि बच्चों को नहला देना चाहिए बारिश के पानी में भीगने के बाद, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एलर्जी टाइप की हो जाती है छोटे बच्चों में, जैसे कि गए उठते ही छींक आना, बार बार बहुत पानी, नोज से बहुत ज़्यादा पानी आना, तो ये किस वजह से होता है कि सुबह सुबह उठते ही? मैंने देखा है, मतलब मेरे घर में बहुत से बच्चों को, 2-3 बच्चे हैं, उनको ये समस्या है, तो ये कोई एलर्जी है या शरीर में कोई दिक्कत है?
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एलर्जी है मैम, आपने सही पहचाना। ऐसी स्थिति में हम रात को और सुबह में बच्चे को भाप दे सकते हैं, नमक के गागल्स कराते हैं, सिंपल थोड़ा सा पानी गुनगुना दे देंगे, उससे भी बहुत लाभ होता है। साथ में आप होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। हेलो,
5: हेलो,
1: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
3: जी कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, साहब सिंह, डॉक्टर साहब से बातें करिए।
0: जी बताइए साहब सिंह जी।
5: हमारे बच्चे छोटे छोटे, फुंसियाँ हो गई।
1: फुंसियाँ हो गई हैं।
0: अच्छा साहिब सिंह जी, पूरा प्रश्न नहीं कर पाए आप, लेकिन फुंसियों जो है बारिश के मौसम में आम है, उनमें एक लगाने की दवाई और खाने की

0: दवाई दी जाती है, बेहतर होगा नजदीकी चिकित्सक को दिखा के एक बार राय लें।
1: मतलब चिकित्सक फिजिशियन या
0: पीडियाट्रिशियन हो तो
1: स्किन?
0: बेहतर है।
1: जी अच्छा। हेलो
2: हेलो
1: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए। हेलो,
2: हेलो
1: आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: जी
1: जी अपना परिचय दे दीजिए।

0: नजदीकी चिकित्सक को दिखा के एक बार राय ले।
1: मतलब चिकित्सक फिजिशियन या
0: पीडियाट्रिशियन हो तो बेहतर है
1: जी। अच्छा
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए।
2: हेलो
0: हेलो आप हमें सुन पा रहे हैं जी, अपना परिचय दे दीजिए।
1: हेलो
0: डॉक्टर साहब संपर्क नहीं हो पा रहा
1: जी। एक परेशानी होती है डॉक्टर साहब, बच्चों की इन दिनों में आई फ्लू हो जाना है ना, आंखों का आ जाना जिसमें बहुत दर्द होता है, बच्चा बहुत परेशान रहता है, तो इस चीज से कैसे बचा जाए?
0: हैंड वॉशिंग, बार बार हैंड्स वॉश कराएं एंड बच्चों को बार बार मना करें कि आंखों पे हाथ नहीं लगाना है
1: जी,
0: ठीक है तब भी नहीं लगाना है। एंड हाथ तो आंखों को आप बार बार धो भी सकते हैं लेकिन पानी साफ होना चाहिए
1: जी, मतलब जैसे बॉइल्ड पानी से इस तरह से यूज करके।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा और ऐसे में कुछ खाने पीने का या कोई दवाई डाल सकते हैं आंखों में?
0: दवाई तो मैं
1: डॉक्टर
0: इस समय नहीं, फोन पे सही नहीं है बताना, लेकिन आई डॉक्टर या फिर पीडियाट्रिशियन को आप दिखा सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब वंदना कुवेरपुरा आगरा से आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं।
0: बताएं,
3: बच्चा अगर अपना अंगूठा पीता है, जो मोस्टली बच्चे पीते हैं बचपन में, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं या ये स्वाभाविक है?
0: ये स्वाभाविक है, बच्चा जब 4 से 6 महीने का होता है तो वो अपना पैर का अंगूठा फिर उसके बाद हाथ का अंगूठा पीने लगता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने आप छोड़ देते हैं, चिंता ना करिए
3: जी। मैडम समय हो चला है हमारे प्रोग्राम का
0: जी
3: अंत की ओर,
0: जी
3: तो आप हमारी बहनों को क्या एक सलाह देना चाहेंगी जो अपने बच्चों की इस बरसात के मौसम में सही से उचित से देखभाल कर सके?
0: देखिए माताएं जो है वो कोई भी छोड़ती नहीं है कुछ भी, बच्चों के लिए सब कुछ करती हैं। एक सलाह मैं दूंगी टीकाकरण से संबंधित
3: जी,
0: थोड़ा सा इस विषय से अलग है लेकिन मैं, आजकल आपने सुना होगा मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण
3: जी,
0: वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 से 14 वर्ष की हमारी बिटिया, इनको हम आगे चल के गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर यानी कि बच्चादानी के मुंह के कैंसर से हम बचा सकते हैं। कैसे? केवल एक डोज,
3: वैक्सीनेशन से,
0: मात्र एक डोज। अगर आपकी बिटिया स्कूल जाती है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, बस एक कंसेंट फॉर्म, अनुमति पत्र देना है, उससे वो टीका लग जाएगा स्कूल में ही। एंड अगर बिटिया किसी कारणवश स्कूल नहीं जाती है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी सामुदायिक केंद्र, आरोग्य मंदिर में जाकर बच्चे का एक प्रमाण पत्र ले जाइए जो जन्म का है, जैसे आधार कार्ड या स्कूल का आईडी कार्ड
3: जी,
0: तो उससे वो टीका लग जाएगा। आगे चल के 90-100% रोकथाम हो जाती है इसकी
3: जी। और बरसात में कुछ?
0: हाँ बिल्कुल, हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है, शौच के पहले एंड शौच के बाद में और खाना खाने से पहले और बाद में हमें करीब 20 सेकंड तक हाथ धोना है
3: साबुन से।
0: मैं बच्चों का देखती हूँ नाखून बड़े होते हैं, मम्मियों के भी कई बार नाखून बड़े होते हैं, तो उनको साफ रखना है। एंड जितने भी टीके हैं, फ्लू वैक्सीन जैसे अभी मैंने बताया, कार्ड की जाँच करनी है, ताज़ा भोजन खाना है, पानी का विशेष ध्यान रखना है
3: जी।
1: तो इसी के साथ दुर्गेश हमारा समय हो चुका है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दें
3: जी। उम्मीद है बहनों ने काफी जानकारी हमारी डॉक्टर साहिबा से प्राप्त की है,
1: बच्चों से संबंधित कैसे उनकी देखभाल करें, कैसे उनका वैक्सीनेशन वगैरह कराएं।
3: बारिश के मौसम को परेशानी में ना समझें, बच्चे अगर एंजॉय करते हैं तो उन्हें नहाने दें बारिश की बूंदों में, क्योंकि ये मौसम बार बार नहीं आता है और बचपन भी दोबारा
1: नहीं
3: आता है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को, हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आप सभी को, हमारे श्रोताओं के साथ आप सभी को और साथ में आप डॉक्टर साहब, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चों को गर्म पानी देते रहें अगर वो नहा कर आए तो
0: जी,
3: बारिश में नहाने के बाद गुनगुना पानी पिला ही दें, और बच्चों को कभी भी उनके सर के बालों को गीला ना छोड़ें।
0: हाँ
3: जैसे मैडम ने बताया था, गीले बालों को कस के कॉटन के टॉवल से सुखा लें, और या हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं
0: जी, बिल्कुल कर सकते हैं।
3: और जब इस तरह से हम अगर बच्चों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे अच्छे से एंजॉय करेंगे और किसी भी बीमारी का सामना करने से हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे।
0: बिल्कुल
3: जी, ठीक है मैम
0: जी,
3: आप हमारे स्टूडियो में आए
0: जी, धन्यवाद,
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम था फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय था बरसात के मौसम में बच्चों की उचित देखभाल। विशेषज्ञ थी डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे इंदिवर का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाज़ मुकेश की थी और फिल्म का नाम था दूल्हा दुल्हन। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दुनिया। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है और इस गीत को धुन से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, मुकेश और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है 10 नंबरी। शब्द रचना मजरू की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 2 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India's scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार

0: कर रही है।
1: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कही मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है?
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
2: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 3 जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश

0: कि लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है, राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
3: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में

0: तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं एक सुंदर सुविचार जिसे हमें भेजा है प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, इसलिए सुख में विनम्र रहें और दुख में धैर्य रखें, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो श्रोताओं, पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। उन्होंने लिखा है,
0: नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में आप जिस विषय की जानकारी को समाहित करते हैं उसका पूरा इतिहास अच्छे से सरल शब्दों में समझाकर बताते हैं, जिसे बच्चों को भी समझ में आ सके। 13 से 17 जुलाई वाले सप्ताह में आपने पुस्तकों के उद्भव और विकास की कहानी को व्यापक जानकारी देकर बताया। इसी सप्ताह आपने मानसून, अरावली की कहानी और हिमालय की उत्पत्ति पर संग्रहणीय भौगोलिक जानकारी दी। पूरी उमंग टीम को हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। संग संकारा सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास कृष्ण कुमार यादव और बल्लू निषाद।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
0: आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि संदेश भेजते रहिए और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से।
2: जी, ये भी जानिए श्रृंखला की इस कड़ी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम या भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए कुछ ऐसे लोगों की,
0: जिन्हें महात्मा गांधी और अन्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की तरह नाम और प्रसिद्धि तो नहीं मिली, लेकिन उनका योगदान भारत को स्वतंत्र कराने में किसी से कम न था।
2: उन गुमनाम और कम चर्चित लोगों में से आज हम जिनकी चर्चा करेंगे उनका नाम है पिंगली वेंकैया। बहुत कम हैं जो इस नाम को जानते हैं। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि वो पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था।
0: श्रोताओं, उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कृषि वैज्ञानिक, भाषा विद्वान और भूविज्ञानी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया और महात्मा गांधी के संपर्क में आए।
2: वे ब्रिटिश भारतीय सेना में थे और उन्हें बहुत बुरा लगता था जब ब्रिटेन के झंडे को एक भारतीय सैनिक की हैसियत से उन्हें सलामी देनी होती थी। उन्हीं दिनों में उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई कि

0: भारत का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज हो। समय बीता, वे गांधी जी के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए।
1: जब राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात आई तो इसके लिए पिंगली वेंकैया जी को ही चुना गया। लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने दुनिया भर के झंडों का गहरा अध्ययन किया और करीब 30 डिजाइन संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। उनमें से आज का हमारा प्यारा तिरंगा चुना गया। श्रोताओ, वेंकैया जी का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ। उन्हें हमारा शत शत नमन।
0: श्रोताओ, तिरंगा हमारी जान है, आन है और शान है
1: जी।
0: लेकिन बहुत जरूरी है ये जानना कि हम इसका सम्मान कैसे करें। आइए कुछ प्रमुख नियमों को जानते हैं।
1: श्रोताओ, पहली बात, राष्ट्र ध्वज हमेशा सम्मान पूर्वक फहराया जाना चाहिए। कभी भी इसे जमीन, पानी या फर्श को छूने नहीं देना चाहिए।
0: कभी भी फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। ध्वज का उपयोग किसी अन्य प्रकार से कभी नहीं होना चाहिए, जैसे मेजपोश, पर्दे, कुशन या सजावट की वस्तु के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
1: श्रोताओं, तिरंगे पर कुछ भी लिखना, चित्र बनाना या इसके वास्तविक रूप से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: और हाँ, यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या अधिक सम्मानजनक स्थान पर नहीं लगाया जा सकता।
0: जी हाँ श्रोताओ, तिरंगा हमें केवल अधिकारों की याद नहीं दिलाता बल्कि हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। जब भी हम तिरंगे को देखें तो अवश्य उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करें जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली।
1: तो आइए श्रोताओ, हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का सदैव सम्मान करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे
0: जी। और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया जी ने झंडों के कुल कितने डिजाइन तैयार किए थे।
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब करते हैं रुख आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर और सुनते हैं कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस।
0: इस कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की चर्चा की गई है।
2: तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बता सकते हो ये बात किसने कही थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतवासियों से खून की मांग करने वाले इस देशभक्त का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जमकर टक्कर ली। देश के लिए जान न्योछावर करने वाले इस वीर का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक के एक प्रतिष्ठित वकील थे। सुभाष की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई और कॉलेज की पढ़ाई कलकत्ता में। जब वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA के छात्र थे तभी एक दिन
3: अरे दिलीप।
4: हाँ सुभाष।
3: अरे उधर कहाँ जा रहे हो भाई, कक्षा में नहीं चलना क्या? वो प्रोफेसर ओटन का पीरियड है ना?
4: हाँ है तो सुभाष, लेकिन कक्षा में मैं नहीं जाऊँगा। प्रोफेसर ओटन जिस तरह हम भारतीयों को गाली देते रहते हैं, मुझे उससे सख्त नफरत है।
3: अरे तो तुम क्या समझते हो, मुझे गालियाँ खाने का शौक है, मगर इस तरह कक्षा में ना जाने से क्या होगा भाई?
4: कक्षा में नहीं जाएंगे तो अंग्रेज के मुंह से अपने देश के बारे में अपमानजनक बातें तो नहीं सुनेंगे ना?
3: अरे इस तरह कहां कहां से बचोगे? प्रोफेसर ओटन कोई अकेला अभिमानी अंग्रेज तो है नहीं इस देश में। स्कूल, कॉलेज, घर, दफ्तर, हाट बाजार, सभी जगह तो ये लोग हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों को लांछित और अपमानित करते रहते हैं।
4: तो फिर?
3: और हमारा दोष ये है कि हम विरोध करने की बजाय पीठ फेर कर चले जाते हैं। जिस दिन हमने सामने खड़े होकर इनका विरोध करना शुरू कर दिया ना, उसी दिन से इनका गाली देना भी बंद हो जाएगा।
4: कहना आसान है सुभाष, इन गोरों के आगे विरोध कर...

0: सुनने के लिए खड़ा कौन होगा?
1: हमारे तुम्हारे जैसे लोग ही खड़े होंगे बंधु, जिनका ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर दिन रात अपमान करते रहते हैं।
0: सुभाष, प्रोफेसर रूटन आ रहे हैं।
2: Hey, you idiots! क्लास का टाइम में इधर खड़ा होकर क्या करता तुम?
1: आप ही के बारे में बात कर रहे थे प्रोफेसर रूटन।
2: Is that right? You black monkey?
0: जी सर, वो ऐसा था जी कि सर।
2: वाह जी जी, बोलता क्यों नहीं, क्या बात करता था?
1: हम ये कह रहे थे कि आप टीचर हैं, आपके मुंह से बात बेबात गाली शोभा नहीं देती।
2: You bloody rascal! You are telling me what to do? तुम्हारा यह हिम्मत?
1: हिम्मत की बात ना कीजिए प्रोफेसर, हिम्मत तो इससे भी ज्यादा है।
2: तो क्या करेगा? क्या करेगा तुम? मारेगा हमको? You scoundrel! You bloody

0: कथम मारेगा हमको इस खांड यू ब्लडी स्वाइन, बोलो क्या करेगा तुम? हम तुमको गाली देगा, तुम्हारा बाप को गाली देगा।
1: बस प्रोफेसर बस, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं।
0: ठीक है, हम तुमको देख लेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
1: मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है मिस्टर ओटन, आइंदा याद रखिएगा।
2: अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये सुभाष की पहली जंग थी। परिणाम ये निकला कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन सुभाष को कोई अफसोस नहीं हुआ। बाद में दूसरे कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि आईसीएस के बंधन में बंधकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना असंभव है। इसलिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वदेश लौट आए। बंबई आते ही वे महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के शांतिपूर्ण सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम उन्हें पसंद नहीं आए। गांधी जी ने उनकी परेशानी को समझा और उन्हें सलाह दी कि वे कलकत्ता जाकर देशबंधु चितरंजन दास से मिलें। देशबंधु के विचार सुभाष के जोशीले स्वभाव के अनुकूल थे। बस फिर क्या था, देशबंधु के नेतृत्व में सुभाष ने बंगाल के युवकों को संगठित करना शुरू किया। उन्हीं दिनों इंग्लैंड के युवराज भारत की यात्रा पर आए। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया कि युवराज के दौरे का पूर्ण बहिष्कार हो और हड़ताल की जाए। बंगाल में यह हड़ताल अभूतपूर्व रूप से सफल हुई। सभी बड़े नेता बंदी बनाए गए।
3: क्या कहते हो, सभी नेता पकड़े गए?
4: अरे ये महात्मा जी का आंदोलन है भाई, यहाँ नेता लोग जनता के आगे खड़े होते हैं, पहली लाठी गोली खुद खाते हैं, पहले जेल खुद जाते हैं।
3: तो क्या देशबंधु भी पकड़े गए?
4: हाँ, सबसे पहले तो उन्हीं को पकड़ा।
3: और अपने सुभाष बाबू?
4: वो भी आते ही होंगे। जब पुलिस हम लोगों को गाड़ी में भर रही थी, तब भी वे बचे हुए लोगों को आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे। लो, ये एक और दल आ गया, और शायद सुभाष बाबू भी साथ ही है। क्यों सुभाष दा,
1: कितनी सजा हुई? नालायक कहीं के, सजा भी ठीक से नहीं दे सकते, उसमें भी कंजूसी कर गए।
3: क्या हुआ सुभाष बाबू?
1: अरे होगा क्या, इतनी बड़ी हड़ताल हुई और सजा दे रहे हैं सिर्फ 6 महीने की। मैं देशभक्त हूं कि कोई मुर्गी चोर?
2: लेकिन इसके बाद से जेल यात्राओं का ऐसा दौर शुरू हुआ कि 1921 से 1940 के बीच सुभाष लगभग 16 बार जेल गए। जब जेल में रहते तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता, लेकिन जैसे ही जेल से छूटते फिर आंदोलन में जुट जाते। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि उन्हें टीबी हो गई। जब भोवाली सेनेटोरियम में भी स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो उन्हें स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति दी गई। वहां पहुंचकर वे यूरोपीय देशों में भारत के प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में लग गए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 में वे फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक प्रगतिवादी दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर सुभाष और गांधी जी का मतभेद सामने आया। गांधी जी अंग्रेजों पर आई विपत्ति का फायदा नहीं उठाना चाहते थे, जबकि सुभाष का कहना था कि इस समय अंग्रेज दूसरे मोर्चों पर फंसे हुए हैं, उनकी पकड़ हिंदुस्तान पर से ढीली हो रही है, यही सही वक्त है जब हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। सुभाष के ऐसे वक्तव्यों से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1940 में उन्हें फिर बंदी बना लिया। सुभाष ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इस पर सरकार ने उन्हें जेल से तो छोड़ दिया,

0: लेकिन उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया।
1: कौन? शिशिर?
2: हाँ सुभाष काका, मैं हूँ। दरवाजा खोलिए।
1: आओ अंदर आ जाओ। क्या खबर है?
2: सब तैयारी हो गई है। पीछे वाली गली में गाड़ी खड़ी है। कलकत्ता में आपका दिखाई देना ठीक नहीं है काका। ये सोचकर हम लोगों ने योजना बनाई है कि आप बिहार में गोमो से ट्रेन में बैठेंगे। मैं स्वयं गाड़ी चलाकर ले चलूंगा।
1: ठीक है चलो, लेकिन मेरे ये कपड़े?
2: उसका भी प्रबंध हो गया है। आपके लिए तंग पैजामा, शेरवानी और तुर्की टोपी आ गई है। आप रास्ते में कहीं बदल लीजिएगा।
1: ठीक है।
2: उस वेशभूषा में आपकी ये दाढ़ी बिल्कुल ठीक लगेगी। किसी को शक नहीं होगा कि आप सचमुच मौलवी जियाउद्दीन नहीं है।
1: तो फिर ठीक है, आओ चले।
2: चलिए।

0: 16 जनवरी की रात वे पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। इसमें उनके भतीजे शिशिर बोस ने उनकी मदद की।
1: दरवाजा खोलिए साहब, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। इन मौलवी साहब का रिजर्वेशन है यहाँ से।
2: खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ, अभी खोल देता हूँ। आदाब अर्ज़ है मौलवी साहब।
3: आदाब, ये सामान यहाँ रख दीजिए।
2: लाओ लाओ।
3: शुक्रिया शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गार्ड साहब।
4: नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है।
3: अच्छा, खुदा हाफिज।
4: खुदा हाफिज साहब। लो भाई, यहां तक तो आसानी से आ गए, अब कल न जाने क्या हो। ये अखबार कहां गया? हाँ, ये रहा। कल दिन भर पढ़ने के साथ साथ चेहरा छिपाने के भी काम आएगा।
5: अब थोड़ी देर आराम कर लूं।
0: ट्रेन से पेशावर पहुंचने पर सुभाष को कुछ विश्वस्त साथी मिले, जिन्होंने सीमा पार करने में उनकी मदद की। इस तरह कभी पैदल, कभी खच्चरों पर, तो कभी ट्रक वालों से मुफ्त सवारी मांगते हुए सुभाष काबुल पहुंचे। काबुल में उन्होंने कई विदेशी दूतावासों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और आखिर इटालियन दूतावास के जरिए यूरोप जा पहुंचे। उन्होंने जर्मनी में हिटलर से भेंट की। सुभाष ने बर्लिन में रहकर वहां रहने वाले भारतीयों को इकट्ठा करके फ्री इंडिया लीग की स्थापना की। जर्मनी की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण आरंभ किया। स्वयं सुभाष भी इस पर अपने विचार व्यक्त करते थे। उधर जापान में भी एक पुराने भारतीय क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस भारत को स्वतंत्र कराने के प्रयत्नों में लगे हुए थे। इन लोगों की योजना थी कि युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे जिन भारतीय सैनिकों को जापान और जर्मनी में बंदी बना लिया है, उनकी एक सशस्त्र सेना संगठित की जाए। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए सुभाष को सिंगापुर बुलाया गया। 5 जुलाई 1943 को उन्होंने सुप्रीम कमांडर की हैसियत से आजाद हिंद फौज के विधिवत गठन की घोषणा की। यहीं उन्होंने एक नया नारा बुलंद किया।
6: जय हिंद,
7: जय

0: यद्यपि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता यही मानते थे कि एक साम्राज्यवादी शक्ति को हटाने के लिए दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर नेताजी का कहना था कि शत्रु का शत्रु अपना मित्र होता है और उससे मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। उधर युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। आजाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने भी कई मोर्चों पर युद्ध किया। खराब मौसम, कम रसद और बीमारियों के बावजूद नेताजी के सैनिकों के हौसले बुलंद थे। बर्मा की ओर बढ़ती हुई आजाद हिंद फौज कोहिमा तक पहुंच गई। भारत भूमि पर आजाद हिंद का झंडा फहराया गया, मगर इस बीच बहुत से सैनिक हताहत हुए। आजाद हिंद फौज को और अधिक बलिदानी वीरों की आवश्यकता थी। 22 सितंबर 1944 को रंगून का जुबली हॉल खचाखच भरा हुआ था। शहीद जतीन दास का स्मृति समारोह था। जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे गूंज रहे थे।
1: मेरे बहादुर साथियों, तुम लोगों ने आजादी के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है। मैं भारत की स्वतंत्रता को स्पष्ट देख रहा हूं, वो अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी उसे खून की जरूरत है। उसे ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने हाथों अपना सर काटकर उसके चरणों पर न्योछावर कर सके, जो उसके लिए अपना खून बहा सके। बोलो साथियों, क्या तुम लोग तैयार हो?
2: हम तैयार हैं।
1: तो फिर ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
3: नेताजी, मेरे खून की एक एक बूंद ले लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, इस तरह बातें बनाने से कुछ नहीं होता। मुझे इस प्रतिज्ञा पत्र पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए।
4: मुझे दीजिए एक कागज, पहले मैं हस्ताक्षर करूंगी।
1: ठहरिए ठहरिए ठहरिए, ये आजादी का परवाना है, इस पर सादी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते, इस पर खून से हस्ताक्षर होते हैं। जिसकी नसों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिसे अपने प्राणों का मोह ना हो, वो आगे बढ़े और इस पर हस्ताक्षर करे।
5: मैं करूंगी हस्ताक्षर, कागज मुझे दीजिए।

और उस दिन नेताजी के आह्वान पर सैकड़ों हजारों लोगों ने आगे बढ़कर आजादी के उस परवाने पर अपने खून से हस्ताक्षर किए। पता नहीं उनमें से कितने आजादी की सुबह देखने को जिंदा रहे और कितने आजादी की राह में शहीद हो गए।

0: खुद नेताजी का विमान 18 अगस्त 1945 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 15 अगस्त 1947 की सुबह देखने के लिए नेताजी जीवित नहीं रहे, मगर जैसा उन्होंने खुद कहा था,
1: ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हम में से कौन भारत को आजाद देखने के लिए जीवित रहेगा। यही काफी है कि भारत आजाद होगा और उसे आजाद करने के लिए हम अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष गीत जिसने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान असंख्य युवाओं को प्रेरणा दी और उन्हें क्रांति पथ पर अग्रसर होने के लिए आह्वान किया। शीर्षक है जवानों उठो।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा देश के जवानों को संदेश दिया गया कि वे देश के लिए पूरे समर्पण और दृढ़ निश्चय के साथ काम करें और इसे विकास की दिशा में आगे ले जाएं।

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जवानो उठो, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराहन के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज भारत के चौथे राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी वराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी की जयंती है, जो हर साल 10 अगस्त को मनाई जाती है। उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के ब्रह्मपुर में हुआ था। उन्होंने देश के श्रमिक आंदोलनों और ट्रेड यूनियन में अपने अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाता है। उनका पूरा नाम वराहगिरी वेंकट गिरी था, जिन्हें हम वीवी गिरी के नाम से जानते हैं। उनका निधन 24 जून 1980 को हुआ था। वे भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहा। वर्ष 1975 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वीवी गिरी ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने आयरलैंड में रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वे देश के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. नए सपने, नई मंजिलें.
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
2: आराम से मैडम.
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन.
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
4: और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं सुरचित कहानी जिसका शीर्षक है चांदनी रात की यादें. कथाकार हैं रेखा रानी चौधरी.
5: बाबूजी, आज बहन जी ने आपको जरूर बुलाया है. कौन बहन जी? ताहिरा बेगम. आनंद का सारा शरीर झन्ना उठा, दिल में अजीब सी गुदगुदी होने लगी व चेहरे पर मंद मुस्कान दौड़ गई. उच्च लिपिक आनंद ने अपनी नजरें आगंतुक पर टिका दी. वह उसका ही जाना पहचाना आगंतुक मुरलीधर था. तो तुम कल गांव गए थे? जी हाँ, तभी कहा था और वह भी बहुत आग्रह पूर्वक. इस बार आनंद मना न कर सका और बोला, जाऊंगा. इस उत्तर के साथ ही उसके शरीर में उन्माद सा छा गया. मन ने एक बार तो उड़ान भरी, वह अभी उड़कर चला जाए. वह आग्रह पूर्वक बुला रही है और मैं जा नहीं रहा हूँ. आगे प्रश्न उठा, वह मुझे वहां बुलाकर क्या कहेगी? वह स्वयं

क्या बात करेगा। दिन पहाड़ सा लगने लगा। आज वह मिलने के लिए आतुर हो उठा। कभी कभी जब हम जिससे मिलना चाहते हैं उन्हीं से आखिरी बार मिलने को तड़प उठते हैं, शायद यही कारण हो। आखिर शाम आई। 5 बजे वाली बस से आनंद व मुरलीधर चपरासी दोनों ही खरौल गांव की तरफ चल पड़े, जहां ताहिरा अध्यापिका थी। रास्ता काफी लंबा था। आनंद को कांटे खा रहा था। वह बेताबी से बार बार सीट से उठने की कोशिश करता और अंत में अपने पर नियंत्रण पाने के लिए आंखें मूंद कर बैठ गया। मस्तिष्क फिर भी खाली न रहा। अतीत की स्मृतियां जमा हो उठी। 2 साल पहले की ही बात है, जब वह पंचायत समिति में कैशियर था। जनवरी मास की 2 तारीख को पंचायत समिति

अहिरा अध्यापिका थी। रास्ता काफी लंबा था। आनंद को कांटे खा रहा था। वह बेताबी से बार बार सीट से उठने की कोशिश करता और अंत में अपने पर नियंत्रण पाने के लिए आंखें मूंद कर बैठ गया। मस्तिष्क फिर भी खाली न रहा। अतीत की स्मृतियां जमा हो उठी। 2 साल पहले की ही बात है, जब वह पंचायत समिति में कैशियर था। जनवरी मास की 2 तारीख को पंचायत समिति कार्यालय पर ही शिक्षक वर्ग का सेमिनार हुआ और वहीं पर अध्यापक अध्यापिकाओं को वेतन भी दिया गया। वेतन चुकता करते करते शाम के 5 बज गए और सब के अंत में ताहिरा बेगम वेतन लेने कैशियर के कमरे में आईं। तनख्वाह लेने के बाद ताहिरा बिना किसी भूमिका के बोली, आनंद जी, मैं आज रात सेमिनार समाप्ति पर आपके साथ चलूंगी। आनंद के सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। वह अवाक रह गया। आज से पहले किसी औरत ने ऐसा प्रस्ताव नहीं किया था। उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, अकेली? हाँ, अकेली। एक बार को तो ऐसा लगा जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगा। अंधेरी अर्धरात्रि में कोई औरत अकेले साथ चलने को कहे, इसका क्या अर्थ? ठीक है आनंद, इतना ही कह पाया। वह चली गई, किंतु उसके दिलो दिमाग में तूफान उठा गई। अवश्य वह मेरे गांव में अध्यापिका है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वह मुझ पर इतना विश्वास करे। आनंद नोट गिनना भूल गया और उसी के विचारों का ताना बाना बुनने लगा। रात्रि के 11 बजे सेमिनार समाप्त हुआ। कैशियर तब तक अपने कक्ष में बैठा कैश बुक व कैश मिलान करता रहा। आज का अत्यधिक भुगतान तो कष्टदायक था ही, इसके साथ गहरी चोट करने वाली बात ताहिरा की थी। उसके शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। एक विचार आया, मना कर दे। फिर सोचा, न मालूम किस भावना से उसने ये सहारा मांगा है। एक औरत को इतना भरोसा। सेमिनार की समाप्ति पर तपाक से ताहिरा आई और बोली, तैयार हैं? हाँ। आनंद ने मशीन की तरह आदेश का पालन किया और तिजोरी बंद कर एवं गैलरी से साइकिल निकालकर चुपचाप भूत की तरह चल पड़ा। पंचायत समिति से आनंद का गांव 3 मील पड़ता था। दोनों चुपचाप सड़क की तरफ जा रहे थे कि कार्यालय पर ही विकास अधिकारी व उनका कोई साथी बातें करते मिल गए। वे क्या सोचेंगे, अवश्य इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तभी विकास अधिकारी श्रीवास्तव ने प्रश्न किया, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? अनायास ही मुंह से निकल गया, इनकी अम्मा जान यहाँ सड़क पर खड़ी हैं, उनके साथ ये गांव जाएंगी। ये कहकर फिर दोनों चुपचाप अपने गंतव्य की ओर चल दिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चांद धरती पर अपनी चांदनी बिखेर कर वातावरण को और शरद कर रहा था। ठंडी हवा का झोंका कभी कभी शरीर में कंपकंपी पैदा कर देता था। ताहिरा ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उस पर काला शॉल ऐसा लग रहा था जैसे सफेद चांदनी को काली बदली ढक रही हो। तभी ताहिरा ने मुझसे पूछा, आपकी शादी हो गई क्या? अनायास ही किए गए सवाल ने मुझे झकझोर दिया। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं अपने माता पिता के साथ ही रहता हूँ। और तुम्हारी शादी हो गई क्या? हाँ, मेरी शादी हो गई। क्या करते हैं तुम्हारे शौहर? वो आर्मी में हैं। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप शादीशुदा होकर भी नौकरी करती हैं। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और दोनों के रास्ते अलग अलग होने का वक्त आ गया। इसके बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिले और मेरा स्थानांतरण हो गया। कई बार ताहिरा ने बुलावा जरूर भेजा, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज वो उससे एक बार मिलना चाहता है, किंतु वो समझ नहीं पा रहा था कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि अब उसने भी शादी कर ली थी और वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। अचानक बस रुकी और मुरलीधर ने मुझे झकझोर कर उठा दिया। चलिए बाबूजी, गांव आ गया। तभी आनंद तेज आवाज में बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुरलीधर, ताहिरा के यहाँ नहीं चलेंगे। क्यों? बस ऐसे ही। लेकिन बाबूजी, आपका बेताबी से इंतजार कर रही होगी। अगर उसे ये मालूम हो गया कि आप यहाँ आए थे और उससे नहीं मिले तो उसे बुरा लगेगा। पर इस तरह मिलना सही है? नहीं बाबूजी। आनंद की बात बीच में ही कट गई। ये तीसरा नारी स्वर था। आनंद ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी में लिपटी ताहिरा खड़ी थी। आनंद ने अनुभव किया वह हर्ष में दीवानी हो रही है, मगर आनंद को उसका इस प्रकार प्रफुल्लित होना अच्छा नहीं लगा। वह गैर पुरुष जो है।
तभी ताहिरा बोली,

0: चलिए घर चलिए, क्या बीच बाजार में खड़े होकर तमाशा बनाने का ख्याल है? तीनों घर पहुंचे। दुआ सलाम के बाद ताहिरा की माँ घर के बाहर चली गईं। उसका ये व्यवहार आनंद को अखरा। उसकी माँ आखिर कहाँ गईं? जी वह बाजार गई हैं। आपके शौहर का कोई समाचार आया? जी शौहर? हाँ, बात ये है कि बाबूजी, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने उस दिन झूठ बोला था। कुंवारी? ये क्या कह रही हैं आप? हकीकत तो यही है बाबूजी, दुनिया से राज छुपा सकती हूँ लेकिन आपसे नहीं। दुनिया की नज़र में अपने को छुपाने के लिए मैंने अपने आप को शादीशुदा कहा, ताकि लोगों की बुरी नज़र मुझ पर ना पड़े। आनंद के चेहरे पर एक भाव आता और एक जाता था। तुम्हारी इस हरकत ने जिंदगी को किरकिरा कर दिया और मुँह से अनायास ही निकल गया, क्षमा करो ताहिरा, मैंने इस वर्ष शादी कर ली है। ताहिरा पत्थर की बूंद बनी एक टक से आनंद को निहार रही थी। आनंद अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा था। मैं जानती हूँ, मुझे मुरलीधर ने बताया था और समझाया भी, लेकिन मैं तो अपने महबूब के साफ दिल को देखना चाहती थी। सच पूछो तो ये सुनकर तुमसे नफरत नहीं, श्रद्धा हो गई है। क्या इस धोखे और फरेब के युग में कोई सत्यवादी हो सकता है? आनंद बूंद बना सुनता रहा। फरेब के युग में कोई सत्यवादी हो सकता है? आनंद बूंद बना सुनता रहा।
1: साथियों, अभी अपने सुनी सुरक्षित कहानी चांदनी रात की यादें। कथाकार थीं रेखा रानी चौधरी। और अब कार्यक्रम में आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।

संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। सदन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से

0: अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 9:30 पर होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

संध्या 6:15 पर होगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम, ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज वार्ता बैरिन बरसात। वार्ताकार होंगे कोमल प्रसाद शर्मा। संध्या 6:30 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

संध्या 6:50 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी पशु पोषण में खनिज लवण। इसी कार्यक्रम में एक और चर्चा होगी खेतों में वर्षा जल संरक्षण। चर्चा करेंगी मृणालिनी दीक्षित। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंटवार्ता जिसका विषय होगा घर तथा फार्म पर कैसे बनाएं गोबर गैस प्लांट। विशेषज्ञ होंगे गोपाल सिंह। साथ ही हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोक गीतों का।

संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। देशगान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:15 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। आज की फिल्म होगी मृत्यु दंड।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने। रात्रि 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे राग बिहाग में सारंगी वादन। वादक कलाकार होंगे हरिबाबू कौशिक। तबले पर इनके साथ संगत करेंगे गुलाम साबिर। रात 11:00 होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.

0: चलो मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम या कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज वार्ता बैरिन बरसात, वार्ताकार हैं कोमल प्रसाद शर्मा।
1: भैया, प्रचंड गर्मी के पाछे कजरारे बदरान को दुपट्टा ओढ़ के आयो महीना सावन को। जी महीना कितेक सुहावनो मन भावनो हुए है। सावन में प्रकृति फिरते मुखरित हो उठे है। धरती हरी चुंदरिया ओढ़े नई नवेली दुल्हन सी लगे है। जाकू देख के पशु पक्षी तलक आत्म विभोर रह जाए हैं। तो फिर मांस मती को का कहबो। सावन के कारे कजरारे अत प्यारे बजरा आकाश में उमड़वे लगे हैं। और धरती पे ठंडी ठंडी बूंद वाके करे जाकू शांति पहुँचावे हैं। और ऐसे में कोकिलाओं की तरियां ग्राम बालाएं कूकने लगे हैं। बदरा आयो मधुर सुहावनो एजी कोई घटा उठिए घन घोर। कारे कारे बादर बिजली चमके झिंगुर मचावत शोर। रिम झिम रिम झिम मेहा बरसे वन में नाचत मोर। पर भैयाओ हमारे ताही तो जी बरसात बैरन है गई ही। हम तो अपवीति सुनाए रहे हैं त्यारी चुम जानो बात दिनारी है गई है। ब्याह गौने ते दूसरी तीसरी साल की होगी। ज्योताओं को बाली बच्चा उनाओ अब तो भगत्ती में पानी है। ऐसा भय हो कि सावन लगते घरवारी के पीहरते द्व लपका आ गई। बिनकू देख के घरवारी को पाम छटंकी उठवे लगे और मोहड़ो फूल की तरियां खिल गयो। चौंके बाकू लेवे के ताई आए है। भैयाओ अब अगारी की सुनो। बिन के ताई फूली फूली पूड़ी खस्ता कचौड़ी दो सब्जी एक सूखी और एक पतरी अचार बूंदी को रायतो और कटे माँ दही फसे माँ भूरो। बिन के तो आनंद आए गई। और हमारे ताई टिकरा भये सो देख तकेम हमें तो जूड़ी चढ़ आई। पर कहें कौन थे वो तो बाके माजाए भैयाए। कहो करे हैं कि पीहर को तो कुत्ता हु प्यारो लगे है। भैयाओ अब अगारी के अहवाल सुनो। हमारी घरवारी गल भैया डारते भये बड़े प्यारते हमसे बोली कि देखो जी बहुत दिना है गए भेज देव सावन सगुन मनाऊंगी। और भैया आएगो मोए लेवाए वे मैं पीहर कूं जाऊंगी। भैयाओ तुम सांची मानियो इतेक सुन तकेम मेरा तो नीचे को दम नीचे रह गयो ऊपर ले गो राम उड़ाए। कछु देर पाछे हमने थूक ली लियो और उतर दियो कि बरसात को मौसम प्यार का मौसम हुई है। सो हमें अकेलो मत छोड़े तेरे बिना कैसे भगत कटेगो। भैयाओ बाने तो मेरी बात जा कांते सुन के और वा कांते निकास दी। और कहवे लगी कि सावन को आमन भयो मोर मचा में शोर। घटा उठी घन घोर सो बोले पपिया मोर। अब घटा उठी घन घोर।

मोई भेज देव दिन चारे, पियाजी मोई भेज देव। मैं हूँ दासी नाथ तिहारी, पेणो देखेगी सास तिहारी। अरे सावन को हल्ला भारी, पीहर में तो जाऊंगी। भैया जी सुन के हमारी हालत सांप छछूंदर जैसी है गई। न लीलवे के न थूकवे के, चूंकि ना ही करते हैं तो खटपाटी लेके पड़ जाएगी और मोहड़ो ऐसो बना लेगी मानो जब भूवर डार दई हो। और हामी भर देते हैं तो चौबे जी छब्बे के चक्कर में दुबे नाए रहेंगे। पर जे सोच के कि बाल हट और त्रिया हट के समूही अच्छे अच्छे दिग्गज घोंटू नवाए जाए, हम कुन से खेत की मूली हैं। सो भैया हाँ कर दई, पर मन ही मन सुमिरन करवे लगे। ले तुम सुनो के गहरे गहरे के बरसों मेहा और बहुत दिना अरु रहना, ऐसे बरसों उमर घुमर के जे घरवारी जाए सके ना। और तड़क तड़क बीजुरिया चमके, पवन चले झक झारी और ऐसो घिरे अंधेरो चहुदिस निकस न पावे घरवारी। पर भैया ऐसो कछु न भयो, कहो करें कि मेरे मन कचोर है करता के कचोर। सुबह तो कील कांटे थे झंड है के बिंदा लगाए के मोकू सिंगट्टा दिखाए के अपने पियर को सटक गई। भैया हम पे कहा बीतना बीती ही बाकू सुन लियो। बरसात का मौसम हो जब बिजुरी चमके और तड़के तो रात कोरी निकस जाए, नींद ही ना आवे। रात भर छत की सोटिन को गिनते रहते और सोचते है कब हमारी घरवारी अपनी सहेली न के संग झूला झूलती भई मौज ले रही होगी। और हम ऐसे सुन्न परे जैसे सियाप सूंगे हुए, ऐसी बरसात थे तो हमको कहाँ मिलो। ऐसो मन कर तो कि ऐसी बरसात में तो दिया सराई थे आँच दे दियो, इतकू घरवारी के वियोग में याद आवे और बितकू बादर घोर गर्ज ना करे तो डर के मारे हमारी तो कप कप ही छूट जाती ही। भैया महाकवि तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य श्री रामचरित मानस में जानकी जी के वियोग में मेघ गर्जन से भयभीत होते हुए श्री राम के मुख से कहलवाए हुए, घन घमंड नभ गरजत घोरा और प्रियाहीन डरपत मन मोरा। सो भैया वो तो भगवान है, बिन को नाम ही जीवन नैया पाल लगावे है। हम तो तुच्छ प्राणी हैं माया के आवरण में, हमारे कितने टका उठते हैं। सांची मानो बरसात को आनंद ऐसे लुप्त है गयो जैसे गधा के सिरते सींग। कैसी विचित्र बात ही कि मेघ गर्जन के समय घरवारी अपने ढिंगा हो तो डर ना ही लागे और बाकी ढिंगा रहवे पे डरू नौ दो ग्यारह है जाए। चाहे किते को बादर गर्जना करें हमारे मन पे रिजवा भरी असर ना पड़ो, पर बाके बिना हम अकेले में घर आंगन की ऐसी पड़ताल कर रहे जैसे पटवारी खेतन की पड़ताल की हो करे। भैया कहवे सुनवे की सब बातें, पर हमें तो अपनी घरवारी के वियोग में जे बरसात को मौसम फीको फीको लग रहे हो। रेडियो पे बरसात के गीत बज रहे, एक नायिका ऐसे में गाय रही, कारे बदरा तू न जा न जा, बैरी विदे सन जा, घनन घनन मेघ मलार सुना। भैया हमने रेडियो को बंद कर दियो, चूंकि बाके गीत हमारी याद को इतेक बढ़ावा दे रहे कि जी देखी तब हिलकी बंदी भी आ रही है। अपनी घरवारी की जा बरसात के मौसम में हमें कितेक याद आई रही जाकू हमारा हियरा ही जाने। भैया जीहू

0: विचार आयो कि तोर वो अकेलो छोड़ के चली गई है, तो दरवाजे पर लम्बो पर जा और चौखट से मूड़े फूल ले और तन के सिगरे कपड़ा लत्ता फाड़ के सूदो थाने पहुँच जा और कोतवाल के समूही बिरहा के गीत गामत भयो कह दीजो कि हम तो मजनू हैं, घरवारी चली गई है मायके, अब हम कहा करेंगे घर जाए के। सो भैयाओ हमारे ताई तो ऐसी आई बैरन बरसात।
1: अब आपने ये ब्रज वार्ता सुनी बैरन बरसात, वार्ताकार है कोमल प्रसाद शर्मा। और अब यही के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है।

0: FM 102.0 मतलब दो मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।
1: शिवाष्टक। श्रीमद् शंकराचार्य ने मानव के दुख और कष्टों के निवारण के लिए शिव के 8 श्लोकों को शिवाष्टक रूप में रचा है। इसका श्रवण, मनन और पाठ करने से मनुष्य सब कष्टों से मुक्त होकर सहज ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संसार के गहन दुखों के विनाश के लिए शिवाष्टक एक उत्तम औषधि है।

0: शिवाष्टक। श्रीमद् शंकराचार्य ने मानव के दुख और कष्टों के निवारण के लिए शिव के 8 श्लोकों को शिवाष्टक रूप में रचा है।
1: ये थे पंडित जसराज, और आइए अब सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र को। फिल्म है सुर संगम।

ये थे हरिहरन और साथी फिल्म थी चार धाम। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

ब्रजग्रामीण कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनान को मृणालिनी बहन की राम राम। भैया देखो संज्ञा को हम किसान भैयान के काजे अपना खेती से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करे हैं और बहुत नई नई जानकारी भी दिवा में विशेषज्ञ द्वारा भी दिवा में और आपस में बातचीत भी करे हैं। चाहे समय परिवर्तन हैगा हुए संजय 6:15 की जगह पर अब 6:50 पर हमारे किसान भैया बहन सुन सकेंगे। भैया आज हम चर्चा करेंगे पशु पोषण में खनिज लवण को एक कहा महत्व है। पशुओं के शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर विकास दूध उत्पादन के काजे खनिज लवण को बहुत ही महत्व है और आवश्यक भी है। पशुओं के शरीर के कुल वजन को लगभग 3-4% हिस्सा खनिज पदार्थों से बनो रहे हुए हैं। भैया देखो पशुओं के काजे का महत्व रह जावे है जो खनिज लवण को हड्डियों और दांतों को विकास हुए कैल्शियम फास्फोरस जैसे प्रमुख खनिज पशुओं की हड्डी दांत और कंकाल को मजबूत बनावे हैं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि मिले सही मात्रा में खनिज लवण मिलवे से पशुओं के दूध देवे की जो क्षमता है और दूध की गुणवत्ता दोनों में सुधार हो जावे है। सोडियम और क्लोरीन जैसे लवण पेट में पाचक रस और एसिड को संतुलन बनाए रखें जैसे चारा आसानी से पशुओं को पच जावे है। खनिजों की कमी से पशुओं को प्रजनन तंत्र प्रभावित हो जावे। यदि सही पोषण समय पर गर्भधारण और स्वस्थ बच्चे में जन्म में मदद करे अगर हम खनिज लवण की मात्रा सही रखें। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायक हुए जिंक मैग्नीशियम आयरन जैसे सूक्ष्म खनिज लवण पशुओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता में मजबूत करे हैं जिससे वे बीमारियों से बचे रह में हैं। तो भैया जाइले पशुओं में खनिज लवण को एक अलग ही महत्व है और इन्हें जरूर देना चाहिए जैसे कि हम पशुपालन को कार्य अच्छे तरीके से कर सकें और लाभ अधिक ले सकें। ये तो रही आज की चर्चा। लेकिन भैया आप समझ रहे होंगे चौमासो शुरू है गए और श्रावण मास चल रहा है और आज तो भाई सोमवार है हम भोले की सवारी है आनंद है ब्रज में और ब्रज में जब सावन आए तो एक अलग ही बहार

0: भैया आप आनंद ले रहे मेघ श्याम के स्वर में जा सावरण लोकगीत को कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको जानकारी दिलवाएंगे घर तथा फार्म हाउस पर कैसे बनाएं गोबर गैस प्लांट। जानकारी देंगे गोपाल सिंह, इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भैयाओं, आज हमने अपनी चौपाल में आमंत्रित करे हुए एक प्रगतिशील किसान थे और जा किसान ऐसा है जो अपने फार्म पे जो हम देखें कहें कि आजकल जो किल्लत है रही है, खास तौर पे भूमि की दशा खराब है रही है और संग ही संग जो है कि जो हम गोबर की उपलब्धता है वह एक कंडा बना के खराब कर दें, जलाईवे के काम में ले लें। लेकिन जो हमारे जो आज को प्रगतिशील किसान है वाने अपने फार्म पे एक गोबर गैस प्लांट की स्थापना करी है, जाते न सिर्फ वो खाना बनाए के काम में ले रहे हैं बाकी जो दूसरी खेती बाड़ी की जो जरूरतें हैं जैसे कि डीजल पंप सेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, समरसिबल चला रहे हैं और संग ही संग अपने घर में जो है वो बल्ब जलाए के उजालू कर रहे हैं। तो ऐसे किसान थे आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे जी जानेंगे कि भैया अपने खेत में अपने घर पे गोबर गैस प्लांट की स्थापना कैसे करें, वहाँ को रख रखाव कैसे करें। सबसे पहले स्वागत करें किसान भैया आपको, गोपाल सिंह जी राम राम।
2: राम राम जी, राम राम सब किसान बहन भैया को मेरी राम राम।
1: तो गोपाल सिंह जी सबसे पहली बात तो ये है कि भैया आपने अपने फार्म पे एक गोबर गैस प्लांट की स्थापना करी है, तो जाको सबसे पहले विचार कैसे आयो? भैया आदमी यूँ सोचे कि काउ चीजें देखे वा के बाद वा को विचार आवे, पहली बार विचार कैसे आयो कि भैया मुझे गोबर गैस प्लांट बनाना चाहिए?
2: पहली बार ऐसा हो साहब, हमारे गुरु भगवान के यहाँ हम जाते आते रहते तो वहाँ एक पुस्तक मिली हमें सन 86 में।
1: अच्छा,
2: सन 86 में वो पुस्तक में जाके बारे में दियो गयो सब कछु लिखो भयो काउ विद्वान ने, लेखक को तो वो नाम याद ना रहो दिना बहुत है, पर बामे जो लिखो गयो बामे सबते बड़ो या में भूमि को उपचार जो हमारी ई धरा खराब कर ली है हमने, DAP यूरिया ने दे दे कि नहीं, तो या तो अब बाकी उर्वरक जो ये जितने दिए मिलने बाकी उपज बे की जो शक्ति बीज उगवे की, पहले हम 2 किलो बीज ज्वार को डाल रहे हैं या 20 किलो डाल रहे हैं।
1: अच्छा,
2: बाहुते हमारी पूर्ति ना है रही, तो ई जब ते हमें गुरुजी के यहाँ से ही मिली तो ताकि बाद में फिर हमें ये योजना खोज करते रहे, तो ये हमारे सेवर भरतपुर में एक सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर पे है।
1: अच्छा,
2: उसके डॉक्टर श्री अशोक शर्मा जी उनने हमारे गाँव में एक टीम लेके आए, तो वे इनते हमें संपर्क करो तो उनने हमें बताया हो कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज है, तुम यह गोबर गैस को प्लांट एक लगा ले हो। तो हमें समस्या ही धरती माता बचावे की, जो बीमार कर दी है हमने ये केमिकल दे दे के उर्वरक अंते खातन ते होड़ पर रही है, एक की जगह पे 2 कट्टा दे रहे हैं ज्यादा पैदा लेवे के काज, बात चक्कर में हमारी धरती बीमार रह गई, अब ये अपनी बस शक्ति खोती जा रही है। तो मैं बड़ा चिंतित था इसके बारे में, क्योंकि चारों दानों सब किसान के घर में पैदा हुए तो पशु यही थे पर है, तो बाको गोबर जो इतनो कीमती है, तो ये हमको बिनने बताई और राय दई डॉक्टर दवास जी हैं, ये यहाँ दिल्ली पूसा से हैं, नंबर दिया हमने उनसे संपर्क किया, संपर्क में उन्होंने हमारे फोन से ही बहुत सहायता करी, 15-17 महीने के बाद में हमको उन्होंने मिस्त्री अवेलेबल कराए, बाहर से कहीं से मिस्त्री बुलाए पटना से या कहाँ से, तो उन्होंने वो मिस्त्री बुला के हमारा प्लांट बनवा दियो, फोन पे ही हमारा इनको संपर्क हो तो रहो। आखिरकार हमने वो 1.5 महीना प्लांट चला लियो, बात मिस्त्री जब उसको बना रहा था तो उसने बताया था कि बाबा ये खाद ही खाद नहीं है, इससे इंजन भी चल सकता है, ट्रैक्टर भी चल सकता है और इससे खाने पकाने की गैस तो है ही। तो उसके जाने के बाद हमने जैसा उसने बताया मिस्त्री ने जो बनाने वाला था उसके हिसाब से हमने वही प्रैक्टिकल करना चालू कर दिया, जैसे वो बताया उसने उसी हिसाब से हम चलते रहे बनाते रहे उसको। तो हमने अपने अंजनों चला लिए, बात बोरिंग पे अंजनों चल लो और ट्रैक्टर है अपने बार बोर पे धर दें और वहां में गैस लगा दें, तो वो 10% डीजल पे 90% गैस लेके ट्रैक्टर और इंजन दोनों हमारे वहां में

0: बोरिंग पे काम आ रहे हैं।
1: तो देखो कहवे वाली बात ये है कि भैया वाते जो खेती बाड़ी करवे वाले जो हमारे किसान भैया हैं, इंजनू चलाए सकें, पानी खींच सकें, घर में लाइट जलाए सकें, संग संग रोटी पानी की समस्या का ये जो धुआं धक्कड़ होता का है तो वाते का है, खाना बनवाने को उचित एक ईंधन प्राप्त कर सकें, और संग की संग सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भैया वहा गोबर गैस थे तो जो हमारा खाद बने का है वो जो हमारी धरती मैया है जा का जे फसल उत्पादन का जे वो वरदान है, और वहां में लगभग लगभग सब पोषक तत्व तो जो फसल का जे जरूरी है वो सब मिल जाए। तो भैया कहवे वाली बात ये है कि लाभ ही लाभ है, हानि तो कौन दिखाई दे रही ना।
0: अरे राम, हानि ना है। हमारे ये बिल्डिंग बन रही है, भूकंप आ जाएगा बिल्डिंग गिर जाएंगी। ये जमीन के ही अंदर बनाई गई है, ऐसो एक उपक्रम है, ऐसो टैंक है कि 5,000 साल चला के अब आप बंद कर दो, फिर उसके बाद बंद करने के 100 साल बाद फिर चालू कर लो। या को जी ना है कि जैसे टैंक है ये हमारा मिस है, वो खराब है, वो कोई ऐसी बात है गई, हमें हानि तो कोई है ही नहीं।
1: तो गोपाल सिंह जी ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई कि भैया जे ऐसी चीज है जाते कोई हानि ना आती। अब न चर्चा कर लेते हैं कि भैया जी बनवाई कैसे जावे, तो जाका जे ने हमारे किसान भैया जो सुनने का है जिनकी सहायता का जिनने बताओ कि भैया जाके कहा जरूरत होते और कैसे बनवाई जाए,
0: यहाँ में देखो लागत तो सबसे कम है।
1: कितनी लगभग।
0: यहाँ में लागत है 2 घन मीटर की, 4 घन मीटर की बनाओगे तुम, 2-4 ई पशुओं के आधार पे बनाई जाए।
1: हाँ जैसे काऊ
0: काऊ
1: घना।
0: पे 4 पशु, काऊ पे 24 है, तो 4 बाजे को 4 की सी, तो 4 पशुओं के ई जो हमारा गोबर गैस को टैंक है, ई प्लांट है अपनो, ई 4 पशुओं को प्लांट, 10 आदमी को खानो पानी प्यार से बना देव।
1: अच्छा।
0: हाँ, 4 भैंस हो बड़ी, तो भैंसिन के पीछे 1-2 लवारो बने ही रहे, तो बात ये 4 भैंसिन थे हमारा, 4 थे और 6 घन मीटर को टैंक चल जाए, तो वो 10 आदमी को और वो पशु समेत वो खानो पीनो बना के नाई बड़े प्यार से दे दे।
1: अच्छा।
0: हाँ, और जैसे गोबर हमारे पास ज्यादा उपलब्ध है, जैसे मैं 20-25 गऊ है मेरे पास, तो 2-3 कुंटल गोबर मेरे हो जाए, तो मेरे पास 2-3 कुंटल गोबर ते ही अपनी खेती है उसी चलू और खान पान हो चल रो, मेरो लाइट को संसाधन में कुटी बाई ते कर लू, आटो दानो मेरो सब बाई ते दलो जाए, गायन को पानी, छोटे मोटे पानी के काम है, स्प्रिंगलर जैसे हमें चलाने, जैसे बारी बुलर करें अपने खावे पीवे को, इनमें ये सब काम अन्य। और अगर ये आपको बड़ो रूप देना चाहें, जैसे हमारे 8 हॉर्स पावर को अंदर हो, बापे हम 24 हॉर्स पावर के हमारे आयसर ट्रैक्टर में हमने लगा के प्रैक्टिकल करे हुए, तो बातें हम 3 फेस बिजली 6 घंटा आराम से एक टैंक ते ले सके।
1: अच्छा ऐसा तो करेगा, ऐसा तो भैया के मान लो काऊ किसान भैया पे चार चार पशु हैं और चार पांच किसान भैया इकट्ठे मिल जाए तो उन पे पशुओं की संख्या ज्यादा है जावे वाते कछु बड़ा प्लांट बना सके।
0: देखो ये आपकी सोच बहुत ही बढ़िया है, हमारे पूर्वजन की सोच है ये कि भैया मिलके चलो मुट्ठी बांध के। आज मैंने किसान को देखे हो, मेरी 63-64 साल की आयु है, आते 20-25 साल पहले में और अब में इतने फर्क पड़ गया है कि एक भैया मेरे के सारे ज्वार बो रहे हो, तो वे सब भैया इकट्ठे के भैया ज्वार ही करेंगे, रखते हो जाएगी। अब मेरी बगल में अगर आपने ज्वार कर दी तो मैं वहां में धुआं बोंगो, मोया की ज्वार जाननी है। तो या को सबसे बड़ो मतलब जी भयो भैया जी के, जैसे हमारे भीतर जो भाव का आओ भैया बंदी को, जो अपनी महानताई मानवताई बायम खोगे, तो किसान अगर ऐसा कर ले तो गांव में एक टैंक बहुत है, 1,000 घर की बस्ती को अगर एक टैंक बना लिया जाए और सब भैया वहां में गोबर डालें, तो बिन्ने बिजली को बिल देवे की जरूरत ना है, हमारा खेत नहीं सूखेगा। जब हमें बिजली 24 घंटा देगो हमें, जब हमें खेत की जरूरत पड़ रही है खेत में चलाओ, आटो पीसनो आटो पीसो, जो कछु करनो सब गांव प्यार ते वा काम कर सके, पर आज हमें एकता ना आए।
1: अच्छा चलो जी बात है, एक संभावना तो होती है कि भैया अगर ऐसा करना चाहे, या काऊ पे बड़ो परिवार है 10-15 घर हैं बड़ो का और जो इकट्ठे रहें तक आए सब लोग, तो वहां में ऐसे हिसाब से काम करे हो जा सके। अच्छा
0: बड़े ही जोर को शख्स है
1: तो सब सबसे पहले वहां में करना कहां पर तो है।
0: बामे जी एक गड्ढा खोदवाया जाए आपको, जैसो आप जितने बड़ो टैंक बनवा रहे हैं, जितने आपके पास उनको खानो गोबर उपलब्ध है, बाकी आधार पे गड्ढा खोद के वो जैसे हमारो अपनो घड़ा हो या घड़ा के साइज ते ही बन के आवे नहीं।

0: चेते। तो यहां में कोई पत्थर को या लोहे को वैसो कोई काम ना आए, ईंट और जैसे हम मकान चले का ऐसे मसालों बना के ना ऐसे ही गोल बनाया जाए या कि घन मीटर में नाप हो।
1: अच्छा,
0: तो गड्ढा बना के तो या इस जगह जो या जगह पे ये प्लांट हमारो बनाए हो जाए बा जगह हम खूब यूज कर सके।
1: अच्छा,
0: प्लांट के ऊपर तुम कमरा बना ले हो, कोई बिल्डिंग बना ले हो, या बापे पशु बांध ले हो, चारा कुट्टी की मशीन है, आटा चक्की है या इंजन है, कोई ऐसी चीज बा टैंक के ऊपर चलाओ, वो सुरक्षित है, बाको कबो कछु ना बिगड़े।
1: तो जानी कहवे वाली बात जी है कि भैया जी स्थान ज्यादा ना घेरे, कमती जमीन है तो वह ऊपर बना सके।
0: हाँ।
1: अच्छा साहब, और वहां के बाद का करना पड़े?
0: या फिर बना के ना या गोबर की जरूरत पड़े यार, क्योंकि या को मोस्ट खानो गोबर। गोबर जब हमारे पास किसान को और पशु को मेल है, गोबर जो हमारे जोरे आते है, तो वह गोबर ते हम सब कछु कर सके। आज मैं किसान भाइयों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कछु होते है जो हमारे यहाँ गोबर में ही है, कहूं मत डोलो मत काऊ। किसान पैसा जोड़े एक एक नोट इकट्ठो करके कह तो पेट्रोल पंप वाले के डीजल के ड्रामे भरवा दे दरिया वे, एक एक रुपया जोड़ के गड्डी बनी और चलो ड्राम भरवा ला में बाय बाकू दिया में, और क्या जोड़ेंगे कहां ले जाएंगे भाई, सरसों बोंगे डीएपी लांगे, गेहूं बोंगे डीएपी लांगे, वह खाद वाले की दुकान पर धरिया में। ये एक ऐसी चीज है भैया, अगर या यूज करेंगे तो याते का है कि पैसा अपनो अपने जोड़ देगो और डॉक्टर के जोड़ ना जानो पड़ेगा, क्योंकि खान पान या को शुद्ध है, जैविक खानों मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक खानों मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े।
1: अच्छा साहब, जैसे हमने टैंक बनवाए लोग, तो और अगर चूंकि अब जा बात है कह के बताए वो थोड़ा सा वैसा लगा तो है, पर जो भैया जा प्लांट लगावे में जिनकी रुचि है रही का है, वो जाके जो क्रिया प्रणाली है कि भैया जी कैसे बनाया जाके कर सकते हैं और जानकार किसान से मदद ले सकते हैं, बस केवे वाली बात ये है कि भैया अगर तुम्हें जाके जरूरत महसूस है रही है और तुम्हें जी ऐसा लगत है कि भाई अगर हम गोबर गैस प्लांट लगा लें तो जाते हमारी बहुत सी समस्याओं को समाधान है जावे हो। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि साहब अब हम पे जो है खेती बाड़ी का जे जो हमारी जो विधि बन गई है कि भैया हमें जैविक खेती की तरह बढ़ना चाहिए, आकार बढ़ना चाहिए, तो वह काजे भैया जरूरी है कि हम खाद जो है देसी खाद, और जहां जो खाद बनते का है गोपाल सिंह जी को बहुत बहुत बढ़िया किस्म की होते हैं
0: पूरे तत्व हमारे जितने कृषि वाले ये डॉक्टर वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग हैं, जितने 16-17 तत्व बतामे भी आमे बराबर मात्रा में मौजूद हैं, दूसरी चीज कोई देवे की जरूरत ना है। और या तो एक डबल फायदा जी हो रहा है, हमें पानी कम देना पड़े।
1: अच्छा,
0: बातें चार पानी में गेहूं पकेंगे या तो दो पानी में गेहूं पक जाएगा।
1: तो तुम पे खेती बाड़ी कितनी है सर?
0: खेती मोपे साहब 51 बीघे जमीन है।
1: अच्छा, 51 बीघे, तो तुम वहां में जो खाद डालो का हो तो यही खाद डाल दे।
0: हाँ, 3 साल ते में या ये यूज कर रहा हूँ डीएपी यूरिया, बागवानी को शौक है, वो बगीचा में ये कीटनाशकन को ये कीटनाशक दे हम ये और आ गए जो जहर जिनते बोले हम देसी भाषा में, तो भी जहरन के छुटकारो मिल गो है। मेरी खेती फले जितने मेरे बेर अमरूद आम नींबू अनार जो कछु लग रहे हैं वे सब ऑर्गेनिक हैं, जो ऑर्गेनिक हैं हम तो बात है देसी के हैं। जैसे हमारे वहां खाने में वहां में हमारी सब्जी में जायका अलग है, स्वाद अलग है, डॉक्टर के हम 20 कैंडिडेट हैं, साल भर में 3-4 हजार रुपया तो ज्यादा हमारो डॉक्टर को खर्चा ना है। 20 यूनिट है, हम 20 घर वाले हैं छोटे बड़े सब, कोई उंगरिया कट जाए खेती के काम करवे में, कोई जुखाम बुखार कोई तातो सीरो काऊ कह जाए बाई की दवाई भली डॉक्टर ते ले, न कि हमारे बूढ़े ते बच्चा तक काऊ की कोई ऐसी घातक बीमारी ना है जाको हमें रोज कोई गोली या दवाई इंजेक्शन लेनो पड़े।
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया बात बताई। देखो स्वास्थ्य जो हमारा खराब है रखा है वो ज्यादातर ऐसी है कि जो हम खानों खा रहे हैं, जो हम अनाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जहर की मात्रा इतनी ज्यादा हमने डाल दी है, और साथ ही साथ जो डीएपी या यूरिया ते जो अनाज पैदा होगा वो हमें वो ताकत वो स्वाद ना है जो जैविक खेती के अंदर जो पाए मिलेगा। और अगर कौए ऐसो प्लांट लगानो है अपने खेत पे या अपने घर पे लगानो है तो भैया आप तो सलाह ले सके वो?
0: मैं साहब देखो हमारे अजमेर ते लेके नाई और इतको नेपाल के बॉर्डर तक यहाँ तक मैं टैंक बनावे और उनकी सहायता करवे, किसान निःशुल्क सेवा है मेरी, किसी पैसे दोने पैसे किराया नहीं लेता हूँ, बढ़िया से बढ़िया इंटरनेशनल मिस्त्री मेरे अंडर कमांड दे रखे हैं भारत सरकार ने, दिल्ली पूसा ने, तो मैं उनको वहां से वहां तक मैं करीब 60 टैंक बनवा चुका हूँ।

0: अच्छा, तो यानी काफी काम करे हुए आपने, और हम तो उम्मीद जी करेंगे कि भैया ऐसी फायदेमंद चीज का जाए, हमारे जो किसान भैया हैं वो नागार आना चाहिए और अपने खेत पे ऐसा गोबर गैस प्लांट लगाना चाहिए, जाते वो खेती बाड़ी में खाद को इस्तेमाल कर सके, जैविक खेती की तरफ जा सकें और भैया अपना खर्चा बचा सकें। तो भैया गोपाल सिंह जी आज हमारे स्टूडियो में आप आए और बड़ी अच्छी जानकारी दी, जाकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भैया अभी आप जानकारी ले रहे गोपाल सिंह थे घर तथा फार्म पर कैसे बनाएं गोबर गैस प्लांट, और इनसे बातचीत कर रहे विजय सिंह नौलखा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप आनंद लें संबे स्वर में जालो गीत को।

भैया वो अभी आप आनंद ले रहे संबे स्वर में जा झूला झूला लोक गीत को जय गीत के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आइए
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात। कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ। राज्य में 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का तय किया लक्ष्य। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू। ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट, करदाताओं को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा। और सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। वाराणसी, बागपत, गाजियाबाद में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की गरिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत अस्मिता डे से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने वाराणसी में खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर होता है।
1: वाराणसी में खेल की तो प्रैक्टिस कर रही थी ना?
2: जी सर, बहुत।
1: कैसा बना है स्टेडियम?
2: सर अच्छा बना है। वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए ट्रेनिंग करने गई थी, क्योंकि मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे ही ट्रेनिंग।

0: करके आई थी, और मैं वहाँ पे मतलब सेटल भी होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे काशी विश्वनाथ बहुत अच्छा लगता है सर। साई ने भी सर बहुत सपोर्ट किया है मुझे,
1: हाँ,
0: इसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। और मैं खेलो इंडिया स्कीम में भी थी।
1: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात, लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों, आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं।
2: भारत ने 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। पदक विजेताओं में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक और गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ करने से पहले उन्होंने नगर निगम परिसर में स्थापित महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य तय किया है। यह कार्य राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।
3: राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा भारत के क्रांतिकारियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बलिदान की अमिट गाथा का नाम है, उस अमिट गाथा की प्रेरणा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे, और तिरंगा के प्रति जागरूकता के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
2: वहीं जालौन, बलरामपुर, अयोध्या समेत कई अन्य जिलों में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। श्रावस्ती में राप्ती नदी में एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी ने बोट से तिरंगा रैली निकाली। उधर वाराणसी में हर घर तिरंगा अभियान में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी करीब 800 महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। ये महिला एक मुश्त समाधान योजना की अवधि 4 माह निर्धारित की गई है और इसका क्रियान्वयन 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। सरकार ने ओटीएस के अंतर्गत बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम 3 किस्तों की सुविधा भी प्रदान की है। करदाता को योजना लागू होने की तिथि से 30 दिन के भीतर कुल बकाए की 1/3 धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष 2/3 धनराशि अगले 2 माह में 2 मासिक किस्तों के माध्यम से जमा की जा सकेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बागपत में भी पुलिस टीम ने बरनावा कांवड़ मार्ग पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की। रामनगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के व्यापक इंतजाम किए हैं। सर्किल ऑफिसर आशुतोष तिवारी ने बताया कि पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटा गया है और कांवड़ियों के आने जाने वाले इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।
4: सावन के दूसरे सोमवार दृष्टिगत भारी संख्या में जो है कांवड़ी और श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई है। उनकी सुरक्षा के लिए जो संपूर्ण क्षेत्र है नागेश्वरनाथ वगैरह पे सेक्टर और जोन वाइज ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से सभी जगहों पे सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही जो भी आपका कांवड़ियों का क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित करके उसे हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करा रहे हैं।
2: गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार को पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सावन के सोमवार के मौके पर मंदिर में विशेष सजावट और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रियों पर पुलिस प्रशासन और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने विभिन्न स्थलों पर पुष्प वर्षा भी की। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मानदंड ने बताया कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

0: हैं।
1: ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल हैं, पीए सिस्टम के माध्यम से लोगों को भी लगातार सूचित किया जा रहा है, और हमारे जितने ऐसे क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर कोइंसाइडिंग होती है वहां पे पुलिस का और सिविल डिफेंस का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने किया है। अलग अलग कांवड़ शिविर हैं 300 से ऊपर जो लगातार भोजन पानी और विश्राम की व्यवस्था कर रहे हैं। 26 से ऊपर चिकित्सा शिविर हैं जो चिकित्सा सहायता हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहे हैं, और 4,000 से ऊपर पुलिसकर्मी हैं जो इस पूरी व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं।
0: उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। छात्र 25 अगस्त 2026 तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि वर्ष 2026-27 सत्र के नए छात्र 11 अगस्त से 21 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है। राजधानी लखनऊ समेत कई जनपदों में आज हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा, और अयोध्या व बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के गुलवीर सिंह और अस्मिता डे समेत राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से की मुलाकात, कहा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी यह कामयाबी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ, राज्य में 5 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का तय किया लक्ष्य। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू, ब्याज और सरचार्ज पर 100% छूट, करदाताओं को 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा। और सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, वाराणसी बागपत गाजियाबाद में कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे।
4: कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं आपके संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया, फरुक्काबादी और उनके मित्रगण। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर और जियाहुलक डाबर। भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले, सुजाता हिबराले, प्रतीक हिबराले और उनके परिवारीजन। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण संस्कृति और पौरुष। रामगण कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और उनके परिवारीजन। ये संदेश हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनवाला सुरलकर और आरती गौरी और उनके परिवारीजन ओम कुमार और साथी। गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठलाल सारस्वत, नेहा नीरज निकेता और उनके माता पिता। गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, रामानुज, राधिका, पवन, करण, नमन, भोला, डुग्गू और उनके परिवार के सभी सदस्य।

गांव नौघरा से कोमल मास्टर, यशोदा, लाखन, सूरज, रोहित, चंचल, संजना और इनके माता पिता। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अजीत, अमित, शिवांश, शिवांगी, चुन्ना और इनके माता पिता। गणेशपुर गंज डुंडवारा इट्टा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार और उनके परिवारीजन। सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से दीपक सैनी, प्रमिला और अनुश्री सैनी। महादेवपारा से मीरा सिमरन और योगेश कुमार राजवाड़े। कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शहना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया इब्राहिम और सद्दाम। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना और निवान शर्मा। कुमार गली श्रामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और रोहिणी दले। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल और प्रथमेश पाटिल। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डीकेश साहू। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आइए सुनते हैं आप सबके लिए जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों को। फिल्म है सावन को आने दो, गीत गोहर कानपुरी का है, संगीत निर्देशक हैं राजकमल।

सावन को आने दो। इस फिल्म में अभी आपने जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों को सुना, और अब आप सुनेंगे किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म है जानी दुश्मन। गीतकार वर्मा मलिक, संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पसंद भेजने वाले श्रोता हैं नाज मंजिल महसूल सीतामणि से, अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन, मेघा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। आप हैं नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये संदेश हमें भेजा है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बूढ़ा गाशी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने।

जानी दुश्मन फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल को सुना, और अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और किशोर कुमार के ही स्वर में एक और फिल्मी गीत। फिल्म का नाम है सौतन की बेटी, गीत सावन कुमार का, संगीत निर्देशक वेदपाल। पसंद भेजने वाले श्रोता महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, गुरु महाराज और नीरेंद्र राजपूत। छत्रपति शिवाजीनगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षय सेन और उनके परिवारीजन। आप हैं मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार देवी का रानी, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। भावी निमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोंधली, उषा, पूनम, वैष्णवी, युवराज गोंधली और उनके परिवार के सभी सदस्य। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।

ये थे मना रोदास और अनुराधा पौडवाल। फिल्म थी आग और शोला। गीतानंद बख्शी कथा, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत परेलाल। हमारे जो संदेश मिले उनके नाम हैं शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा,

जैन मंदिर वाली गली कोरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, पूर्णा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, ये संदेश में भेजा है गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी और उनके परिवारी जनों ने, इन्होंने अपना स्थान नहीं लिखा है कि ये संदेश उन्होंने कहाँ से भेजा है। गांव लोगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपान तायडे, मोहन करांगले, जी गांव विदर्भ से वसंतराव भोजने और पी एस नवानकर, अशोता वसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, रात्रि के 8 बजने को है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अदालती बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबिदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादेव

एक बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया।
अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा।

लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में तीन अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी

0: इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: This is Akash.
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं देश गान।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है मृत्यु दंड। इस फिल्म में गीत लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशक हैं आनंद मिलिंद। पहले सुनिए इस फिल्म में हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में गाया ये गीत।

0: ये थे कुमार सानू और साधना सरगम। इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की फिल्म थी मृत्यु दंड। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत निर्देशक आनंद मिलिंद। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।
1: से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-4-4-1-6 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
3: The bill, among various other things that it wants to do.
4: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
3: Permits authentication through manual, digital and electronic signatures.
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
5: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
6: एंड टू मेक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनएक्टमेंट।

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
3: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
4: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह भी बताना चाहूंगा और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
5: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह

0: का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध

1942 ए लव स्टोरी, यह था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में सुना। गीत जावेद अख्तर का था, संगीत निर्देशक थे राहुल देव बर्मन। राइव सुनते हैं आनंद बख्शी की शब्द रचना, संगीत निर्देशक शिव हरि, गायक स्वर लता मंगेशकर, एला अरुण और साथियों के। फिल्म का नाम है लम्हे।

थे शंकर जयकिशन। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा, एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
2: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज़ भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यूज़ जैसे कॉर्निया

0: स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंग दान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
1: जी, तो आपने 2 तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है, तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ डॉक्टर अनिल, कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
0: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए, या तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का, जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
3: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो, या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
1: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
4: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते या न दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
1: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
0: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है, तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
1: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर

0: चुके हैं, तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही ख़ास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
1: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके, एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं, और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-11-4770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है। कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे, तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर, की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है, तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा कर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हों। तो
0: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार,
3: नमस्कार।
2: जी जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंग दान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंग दान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंग दान नहीं हो सकता है।
0: जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार सानी। जी विजय जी, कहिए। जी प्रश्न पूछिए। हाँ, विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
0: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
0: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार, नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा सवाल यह है कि मैं अंग दान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
0: अंग दान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं।
1: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंग दान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं।

सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, notto.mohfw.gov.in, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना

0: आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकड़े जी। श्रीकांत जी क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: हेलो
1: जी। जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार श्रीकांत।
2: मैं श्रीकांत जो चाकड़े बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, मेरा रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है।
1: जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
3: जी ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं हमारे स्टूडियो की फ़ोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331081 और 2371711 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब बताइए क्या है आपका सवाल।
4: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्र दान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
3: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
5: कैसे खबर करें,
3: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था वहाँ कर सकते हैं, और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी

0: दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल।
2: जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो प्रोसीजर के बारे में पूछना था, जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
3: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं ज़रूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770, 2400 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
1: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
4: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
4: मेरा सवाल दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर धन की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटिड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी,
0: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफ्थैल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थैल्मस में पुतली भी ख़राब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी, शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
5: नमस्ते सर।
1: नमस्कार। नमस्कार।
5: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी।
1: आपको भी।
5: जी, मतलब दो छोटे छोटे सवाल। एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए।
1: जी, हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं। और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
3: जी, जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लीवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की जरूरत है, तो लिवर का आमतौर

0: पे एक पार्ट दिया जाता है, एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30 से 40% और राइट होता है 50 से 70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
0: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान के इस नेक मुहिम के लिए आगे आने।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
0: धन्यवाद
1: शर्मा को। नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ
4: रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
5: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
6: क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
4: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
6: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
7: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप

0: Chief of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure, leading to increasing electricity demands, sir, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
1: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
2: Sabhapati Mahoday, National Electricity Policy 2026, isko tayar karne mein distributed renewable energy, battery energy storage aur smart distribution system ko badhawa dene ke liye distribution utilities ki financial sustainability mazboot karne ke liye kai pradhan shamil kiye gaye hain aur jo pradhan banaye gaye hain wo sare desh bhar ke liye lagu honge और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है. को लोकेटेड स्टोरेज, अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है. और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है. इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है. अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है. वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है. उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब से हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं. धन्यवाद. स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है. और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया. डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है. डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे, तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे. और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है. इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है।

0: डिमांड शिफ्ट की जाए तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था। इसको समझौते के तहत किया जाता था लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है। लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के सोल्यूशन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लागू किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है। स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरंग सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सभापति महोदय, ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रख करके बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है, आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्ण सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें दिक्कत नहीं।
1: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी,
2: धन्यवाद धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the honorable minister if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility, and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion. Sir,
0: Honourable Minister, Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो उन्होंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम आरओडब्ल्यू का जो एक फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइंस, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे
1: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहां लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहां लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई

0: से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर, आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है। और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका हम जवाब देंगे।
2: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

ये थे अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो। फिल्म थी माशूका। संगीत निर्देशक थे साजिद वाजिद। और आइए सुनते हैं समीर की शब्द रचना, संगीत निर्देशक नदीम श्रवण, गायक स्वर अलका याग्निक और कुमार सानू के। फिल्म का नाम बरसात।

जीतू कुमार सानू और अलका याग्निक फिल्म थी बरसात। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग बिहाग में सारंगी वादन। वादक कलाकार हैं हरिबाबू कौशिक। तबले पर इनके साथ संगत की है गुलाम साबिर ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग बिहाग में सारंगी वादन। वादक कलाकार थे हरिबाबू कौशिक, तबले पर इनके साथ संगत की गुलाम साबिर ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम

0: से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
5: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so,